0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: South
1: 103.5,
0: East, West
1: 96.4,
0: Center
1: 99.4.
2: RM2
1: Radio Masti.
2: Radio Masti, the latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Masti,
2: feel the Masti.
3: गुरुवार 4 जून की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: हमने भी देखा एक सपना कल रात की आपसे बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, नंबर दे रही हूँ 5499-1294. तो हमने सोचा क्यों ना इस सपने को वंस अगेन साकार बनाने की कोशिश किया जाए. और देखिए आपसे मिलने आ गए, बातें करने आ गए हैं और आपको बताने भी आ गए हैं कि नंबर अभी तक वही है जो सपने में देखा था, 5499-1294. सुबह के 5:06 हो रही हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इस थर्सडे मॉर्निंग की शुरुआत हमारे गुड या फिर शुड आई से बेस्ट मिस ऑफ म्यूजिक के साथ आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है. सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल ट्यून्ड, 7 बजे तक ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ आगे चलते रहेंगे.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: म्यूजिक के दीवाने हैं तो बस आपके जैसा कोई और नहीं है. यार है चार जून और आज बॉलीवुड की जो लेजेंडरी एक्ट्रेसेस एक्टर्स या फिर सिंगर्स अपना बर्थडे या फिर बरसी हैं उनकी और उनमें से ही एक है नूतन. जी हाँ आज नूतन लेट वेटरन एक्ट्रेस नूतन का बर्थडे है. मोनिश बैल की मम्मी नूतन यानी कि काजोल की मासी और इन्होंने 80 फिल्मों से ज़्यादा काम किया है. रेसिपिएंट ऑफ 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस पद्मश्री से नवाजी गई हैं और कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ में उन्होंने काम किया. सुजाता बंदिनी मिलन याद आया आपको, मैं तुलसी तेरे आंगन की या फिर अनाड़ी छलियाँ तेरे घर के सामने खानदान सरस्वती चंद्र अनुराग सौदागर और जो कैरेक्टर रोज भी निभाती गई मेरी जंग साजन की सहेली नाम ऐसी ऐसी अच्छी मूवीज़ में उन्होंने काम किया. और आज ये जो लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं हम हमेशा कहते हूँ एक बात कहती हूँ भले ही शरीर ना रहा हो लेकिन उनकी कलाओं का काम हमेशा याद रहती है. तो आज इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Lovely evergreen song from the movie, of course, Saudagar, Ravindra Jain ka sangeet. Good morning aapko, aapko kaun? Avesh Sukhan wishing a great birthday to you. From Mama Sita, Papa Danan, aapke bhai Ashwin. Saath mein hai Avinash, Nisha, सिद्धि आपके नीस नेफ्यूज पृथ्वीलाज से एंड पूरे परिवार एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से ढेर सारा प्यार. और यहाँ पर हैं प्लेंदे पपाय से पति रंजीत के नाम आपके लिए प्रेमिला जी और आपके पूरे परिवार को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. साथ में 86 बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है मामा, आपको ढेर सारा प्यार बेस्ट विशेष. बेटी आरती की तरफ से आपके दामाद हैं हरीश, ग्रांड डॉटर अनुष्का, साथ में अवनी, राम रतन परिवार आंसो जोशे से. ही इज विशिंग हैप्पी बर्थडे मामा कुशमावती, आपको भी हैप्पी बर्थडे. आप ही 86 इयर्स की हो गई हैं. तो कुशमावती किसना जी, आपको बेस्ट विशेष. बेटी ललिता, इंद्रानी, चंद्रानी, सलोनी, गीता, आरती, काजल, धीरज, सतीश, विकास एंड यानी कि मैसेज अधूरा है यहाँ पर, तो पूरे परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. नेक्स्ट मैसेज की ओर बढ़ती है ऑन व्हाट्सअप 5499124. हे गुड मॉर्निंग धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, साथ में है ज्योति, हरक परिवार मौदाबे से. गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग हेमलता फ्रॉम पॉइंट ऑफ पिमो. और अगला गाना आप कहती है पूरे परिवार, खास भाई विक्रम बीपन के लिए जो अभी काम कर रहे हैं, सो शुभ दिन और बो को आज. नेक्स्ट गाना गुजार टू होम, वेल मिसेज फुलमती बिखारी और बर्थडे टू यू, आज बर्थडे विशेस फ्रॉम आरती, लुबिन, साधना, मुकेश, इमरित और बहू है ममता, अर्जुन, बिखारी परिवार लालमाची से. Good morning, Ritu and Radio Musti team. Good morning, aapko Abdul and Sara Banu. Have a nice day ahead. Point de Lascaux se mere twin babies janam liya hai. Unke naam aur sweetie hai mama, papa bhi, Sarojni, Mukesh, Rishi, Sita, Nijal, Nishti aur Jash, Naksh, Giana, Shavi, Shivani, sabhi badhu, Gohiram parivar ko bahut sari shubhkamnaye. Aur bhi messages hain, bas thodi der mein.

बात सुना, मिट्टी से बनी है, मिट्टी में ही चले जाएंगे, बस दो दिन की जिंदगी है, दो दिन की ये खुशी के पल बिता देते हैं अपनों के साथ, गिले शिकवे भुला दीजिए, और क्योंकि जाएंगे खाली हाथ, आए थे खाली हाथ, सो लेकर चलेंगे हम जितने भी हमारे कर्म हैं, जो भी हम करते हैं वही तो लेकर जाएंगे। 5499-1294 पर विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। खुद हूँ, मस्त रहिएगा, बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक के साथ जुड़े रहिएगा। कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन 5499-1294 अपनों के लिए सैकत नफ नफ दूस नफ कर पर, एंड देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है।

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: बड़े प्यार से आपके मैसेजेस आ रहे हैं ऑन साइड कात नफ नफ दोस्त नफ का तो बड़े प्यार से लेट मी विश यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं

करें दोस्त, बोको आज आप कह रहे हैं तो बस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. गुड मॉर्निंग अबाउट फैमिली खुशनुआ से. नेक्स्ट गाना प्लीज मेरी नीस परमिनी जेंसन लीना कूपन, और आज आपको इनवाइट कर रही है.

उनके गाने आप सुन पाएंगे इन रेट्रो रिदम। आपके नाम सरोज, राजन, पूनम, मोनिका, पल्लवी, विशाल, उमेश, हर्षि, पूरे परिवार कैथो बोन से वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम आपको रेडियो मस्ती, आपको भी जय शन साहब, जीवन उमीरा नंगोटिया, आकाश शर्वन, रामदेव, मेविन एंड थैंक यू सो मच, हम आपको कहेंगे दोस्त हमारे हम सफर बनने के लिए। इंदिरा जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, नमस्कार आप सभी को। रेशमा, बीमल, अंजू, कृषा, केशव, नील, मायशा, तानिया, मोता ब्लॉश से सब परिवार गुड मॉर्निंग जी। कैसी हैं आप? शीला जी फ्रॉम लेस्पेरांस ट्रेबुशे। बस कुछ पॉजिटिव बातों के साथ इस मॉर्निंग की शुरुआत, हर मॉर्निंग की शुरुआत किया जाए तो दिन भी अच्छा रहता है, मूड भी टकाटक रहता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको बॉम्बू से धनेश्वर जी, पत्नी सुनीता, संजीव, निशा, देव, रेखा, दावेद परिवार, थैंक यू, हम आपको कहेंगे कि आप हमारे हम सफर बने हुए हैं। कुमार एंड देवीचंद फैमिली, गुड मॉर्निंग, जॉगिंग एंड गाना सुनिंग, वेरी गुड कॉम्बिनेशन।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: जमाना क्या कहता है वो तो कहता ही रहेगा, लेकिन आपका दिल आपका दिमाग क्या कहता है वो सबसे जरूरी है. 5:40 going to work, already पहुंच गए हैं या फिर रास्ते पर होंगे. बोंकुराज, ड्राइव सेफली. इस गीत के बाद आपका हॉरोस्कोप.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: सावन आए, फुहार आए, बहार आए, जैसा भी मौसम आए, हम तो आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज का दिन आपको सिखाएगा कि रिश्तों को संभालने में शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है. बापरे, आपकी एक मुस्कान और शांत व्यवहार घर के माहौल को पूरी तरह बदल सकता है. कामों में जल्दबाजी या फिर लापरवाही करने के बाद में उलझने बढ़ सकती हैं. दैट्स व्हाई हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएं.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज आपको अपने पैसों और फैसलों दोनों खास पर उन पर नजर रखने की जरूरत है. निवेश करने से पहले हर पहलू को अच्छे से समझ लें, क्योंकि छोटी सी गलती आगे परेशानी बढ़ा सकती है. प्रॉपर्टी या लोन से जुड़े मामलों में सकारात्मक खबर मिल सकती है और आज प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भी हो सकती है, जो आपके फ्यूचर में आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: वेल, आज परिवार और अपनों के साथ आपको मानसिक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी. लंबे समय से मन में चल रही कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा. घर में मेहमानों की आवाजाही से माहौल खुशियों से भरा रहेगा. लाइफ पार्टनर हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे, लेकिन निजी बातें हर किसी से साझा करने से आपको बचना होगा.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आपको ना बेवजह के विवादों और बहस से दूरी बनाकर रखनी होगी. सरकारी मामलों में कामों में फायदा मिलने के योग हैं, इसलिए जरूरी कागजात और योजनाओं पर ध्यान दें. यात्रा या किसी मुलाकात के दौरान ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है जो भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.
2: लियो सिंह राशि.
1: आर्थिक मामलों में राहत और खुशी दोनों मिलने के संकेत हैं, अब तो खुश हो जाओ. व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे, रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर मन हल्का महसूस करेगा. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिल को खुश कर देगी. और हालांकि संतान की पढ़ाई या भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, और पैसों के लेन देन में किसी अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा ना करें.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: Alright, आज आपका मन दूसरों की मदद करने और अच्छे कार्यों में लगेगा. समाज में आपकी छवि मजबूत रहेगी, लोग आपकी सराहना करेंगे. पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. हेल्थ को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें, खान पान पर नियंत्रण रखें.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. लव रिलेशंस में मधुरता बनी रहेगी, साथ ही रिश्तों के पहले जो यानी कि पहले से ज्यादा मजबूत आप महसूस करेंगे. किसी रुके हुए काम में देरी होने के यानी कि निराशाजनक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. नए डील या अनुभव अनुबंध भविष्य में अच्छा लाभ दे सकते हैं.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: वेल, आज धैर्य और समझदारी आपके सबसे बड़े हथियार साबित होंगे. खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा, अदरवाइज बजट बिगड़ सकता है. फैमिली में खुशखबरी या किसी नए सदस्य के आने से माहौल उत्साहित रहेगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें प्लीज. किसी दोस्त या सहयोगी की मदद से आर्थिक समस्या का हल निकल सकता है.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
1: आज का दिन उत्साह और नई योजनाओं से भरा रहेगा. जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा. भविष्य को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत हो सकती है. बड़ों के आशीर्वाद से लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है. वैसे कामों को योजना बनाकर रखेंगे तो दिन बेहद सफल रहेगा. कोई सहकर्मी आपको परेशान करने की कोशिश कर

0: सकता है, लेकिन आपकी समझदारी परिस्थिति संभालेगी।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: वेल आज आपको हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल देने से बचें। आपके अंदर भरपूर एनर्जी ऊर्जा रहेगी और आप अपने काम तेजी से पूरे करेंगे। नई प्रॉपर्टी, वाहन या जमीन खरीदने के लिए दिन एकदम शुभ माना जा सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद आपके रुके हुए काम पूरे करवा सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर बहस करना अवॉइड करें।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज भाई बहनों और करीबी दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर सकती हैं। बिजनेस और नौकरी में किसी अनजान व्यक्ति की सलाह मानने से बचें। विद्यार्थी जो है स्टूडेंट्स के लिए दिन खास रहेगा, विशेषकर जो विदेश में पढ़ाई की का जो सपना है वो देख रही है और पुरानी गलतियों को लेकर खुद को दोष देने के बजाय उनसे सीख ले और आगे बढ़े।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज का दिन खुशियों और राहत से भरा रहेगा। फैमिली की में यदि कुछ समय से तनाव चल रहा था तो बातचीत के जरिए स्थितियां सुधर सकती हैं। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में अच्छे अवसर लेकर आ सकती है। सरकारी में कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना वो भी जरूरी है। और बड़ों की किसी बात को लेकर आपको बुरा लग सकता है तो उसे दिल पर लगाने के बजाय शांत मन से समझने की कोशिश करें। ध्यान एंड मेडिटेशन आज आपके मन को काफी शांति देंगे। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड ए वेरी गुड डे अहेड।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio.

स्ट्रोक ये मुलाकात जो है वो तो एक बहाना है ही, और प्यार का सिलसिला कभी पुराना था अगर कह सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। 5:56 छः बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, आपके मैसेजेस ऑन 5499129400 सोनम भोला, गाना आपके नाम, और बस संगीत ना हो तो लाइफ में कुछ ना हो, दैट्स ट्रू। तो बस म्यूज़िक हमेशा उसको अपना साथी बनाकर चले। एंड लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग, यहाँ पर व्हाट अ लवली पिक्चर मेरे सामने है, गोज़ आउट टू माय फ्रेंड करुणा दाहू ऑफ कोटेज, आज उनकी शादी की सालगिरह है, सो बेस्ट विशेस आपकी तरफ से करुणा। एंड पॉइंट साबले से है प्यारी सी अमृता, साथ निभाते चलिएगा 6 बजे के बाद, और भी बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ओनली फॉर यू।

0: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे याचना। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ओलिविये बॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव जारी है। एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया है कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। बयान में यह भी कहा गया कि एक वीडियो और एक फोटो प्रसारित की जा रही है जिसका उपयोग प्रतिनिधिमंडल के अनुसार यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविये बॉकुल्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया है या शगस के मुद्दे से विश्वासघात किया है। हालांकि इस चरण पर ये आरोप केवल प्रतिनिधिमंडल के प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए दावे हैं। करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर फ्री और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर बाद 1:30 बजे उनके अपने कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दी थीं। हालांकि बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्रों के लीक होने की घोषणा की। MES यानी मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को पुनर्परीक्षा के बारे में पोस्ट द्वारा सूचित किया गया तथा मीडिया के जरिए भी। MES के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इन परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि उसकी परीक्षा प्रणाली की अखंडता बनी रहे और उसकी योग्यताओं को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में मान्यता मिलती रहे। पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। विदेश समाचारों में, भारत के कई राज्यों में आज मॉनसून की अवधि दस्तक देने वाली है। 24 घंटों के अंदर अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी यूपी और महाराष्ट्र में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इन सभी राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी, कहीं कहीं पर बादलों के गरजने की भी संभावना है। दोपहर बाद ये बादल अन्य जगहों तक फैल जाएंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 और अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात दक्षिण पूर्वी इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और बारिश की भी संभावना बनी हुई है। हवा तेज होगी और प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पूर्व में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह सूर्योदय 6:39 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty. Musty. Musty. Musty.

ये मौसम का जादू तो है ही, लेकिन ये आपका भी जादू है जो आप तक पहुंच जाते हैं. थैंक यू सो मच. 6:09, वेलकम बैक. इट्स योर राइज एंड शाइन. और आज ना सिर्फ वेटरन लेट एक्ट्रेस नूतन, लेकिन लेट एसपी बाला सुब्रमण्यम द ग्रेट, आज इनका भी बर्थडे है. एंड 4 June 1946 को उनका जन्म हुआ था. एंड ना सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर, टीवी प्रेजेंटर, एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, डबिंग आर्टिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर भी रहे और कई मूवीज, बहुत बहुत सारी मूवीज, मोर इन दैन 16 लैंग्वेजेस, तेलुगू, तमिल, कन्नडा, मलयालम, हिंदी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए, अनगिनत गाने गाए. एंड ही हेल्ड द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड. और सबसे ज़्यादा ओवर 50,000 बाप रे बाप गाने इन्होंने गाए हैं इतने सारे लैंग्वेजेस में. आज आप भी याद आ रहे हैं ग्रेट लेट एस पी बाला सुब्रमण्यम, और आपके गाने, आपकी आवाज़ हमेशा दिल में गूंजती रहेंगी.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: वीमा हूँ मैं थोदुदु से गुड मॉर्निंग आपको. आपके भाई रोशन दुर्गा का आज बर्थडे है. सो बेस्ट विशेज आपके तरफ से वीमा. आपके मामा और पापा हैं, भाई किरण, वाइफ अरुणा, बेटियां, सब परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय लव शमीम. ये हैं आपकी तरफ से वर्षा, मिस्टर राकेश शर्मा मिसा, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम वंदना, यो वन यो मन एंड आपके पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू ललिता एंड जीतन फैमिली. बबीता एज यूजुअल पूना कैसे एंड हेमा कहती हैं प्लीज नीतू नेक्स्ट गाना टू माय स्वीट पारुषी परिधि पृथ्वी प्रिया निशिका नितिन विशाल यानिश एंड आपके पूरे परिवार के नाम.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: 6:23 already and 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. चांद आनंद चिंगादू, गुड मॉर्निंग गाना आपके नाम. 55th वेडिंग एनिवर्सरी, क्या बात है. मिस्टर देवेंद्र और पुष्पा नहीं झुकेगी वो. आप नगाजू फैमिली शुभ ग्रहणी से आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं. जोड़ी सलामत रहे. यह देव आशा रविश प्रिशा लवशा सब परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. 26th वेडिंग एनिवर्सरी आप ही सेलिब्रेट कर रही है. कौन? आरती. पति है सुदेश लक्ष्मण और आपके पेरेंट्स, आपका बेटा, सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं. इंदिरा उसनी पिसी वैश्य से मेघा के जन्मदिन पर आप बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रही हैं. साथ में हैं त्यानंद, प्रयक्षा, निधीश, राजीव, यह तो पूरी लिस्ट भरी है. पूनम, संजिनी, खुशी, ईशा, प्रीशा, कृष्ण, किरण, सुनीता, जस्मी, आदि, गीता, युवेश, आरवी, रोशन, दवेश, वर्षा, आकाश, चेष्टा, पवन, सूरज, सभी उसनी परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको. यह अगला गाना गा गुजारती हूँ. जीवन कुपन 64 इयर्स के हुए हैं. शुभकामनाएं फ्रॉम रुदीश, एलिना, देसागेन, बासेन, माइवन एंड सब की तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार. 6:30 के समाचारों के बाद विदिता आपके साथ इन मॉर्निंग बीट, यानी कि 7 बजे के बाद. टेक केयर.

धीरे-धीरे आप इस महफिल के मेहमान बनती चली जा रही हैं. थैंक यू सो मच कविता एंड रघुजना परिवार खास आपके नाम प्यारी सी दूती का. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू.

0: नमस्कार, स्वागत इस बुलेटिन में। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। ओलिविया बॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव। एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले एक समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। करीब 450 मॉर्शन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर 3 और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। पेपर लीक होने की खबर के बाद ये फैसला लिया गया। भरी हुई वेटिंग रूम। दबाव में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग एसोसिएशन के अनुसार नर्स की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक बनी हुई है। विदेश की खबरों में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जिससे ईरान में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चलाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। ओलिविया बॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव है। एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले एक समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई। बयान में यह भी कहा गया कि एक वीडियो और एक फोटो प्रसारित की जा रही है जिनका उपयोग प्रतिनिधिमंडल के अनुसार यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविया बॉकुल्ट उस मुद्दे के खिलाफ हैं। हालांकि इस चरण पर ये आरोप केवल प्रतिनिधिमंडल के प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए दावे हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: ओलिविया बॉकुल्ट के डेलीगेशन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार लंदन में हुई यह मिशन केवल कूटनीतिक ढांचे तक सीमित नहीं रही। बयान में कहा गया है कि डेलीगेशन के कुछ सदस्यों का कथित रूप से पीछा किया गया, उन्हें फिल्माया गया और वेस्टमिंस्टर के ब्रिटिश संसद के गलियारों में एक विरोधी दल का सामना उन्हें करना पड़ा। डेलीगेशन ने एक वीडियो और एक तस्वीर के उपयोग पर भी आपत्ति जताई है जिसमें ब्रिटिश लेबर सांसद एलेक्स ओबेल के साथ एक मुलाकात दिखाई गई है जो शग सब मुद्दे पर गठित संसदीय समूह के उपाध्यक्ष हैं। डेलीगेशन के अनुसार इन तस्वीरों का उपयोग विरोधी पक्ष द्वारा ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविया बॉकुल्ट ने शागुस मुद्दे पर समझौता कर लिया है या अपने रुख से पीछे हट गए हैं। हालांकि ओलिविया बॉकुल्ट और उनके समर्थकों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात करना एक सामान्य और लोकतांत्रिक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस विवाद ने शागुस मुद्दे को लेकर जारी तनाव को एक बार फिर सामने ला दिया है जिसमें समुदाय के भीतर मतभेद भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
0: करीब 450 मॉर्शन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर 3 और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर बाद 1:30 बजे उनके अपनी कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दी थी। हालांकि बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्रों के लीक होने की घोषणा की। मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को इस पुनर्परीक्षा के बारे में पोस्ट और मीडिया के जरिए सूचित किया गया है। एमईएस के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख अशोक गुलजर को सुनते हैं।
2: दुख की बात है कि कैम्ब्रिज ने हमें इस लीकेज के बारे में सूचित किया है जिसकी तहकीकात के वास्ते कैम्ब्रिज जरूरी कदम उठा रहा है तथा ये पता लगाया जा सके कि ये लीकेज कहां और किस देश में हुआ और इसके आधार पर सख्त दंड भी निर्धारित है। गौरतलब है कि कैम्ब्रिज के सख्त प्रोटोकॉल हैं और वह विश्व भर में अपनी सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर रहा है और यदि ये निर्णय लिया जा रहा है तो ये भली भांति उन्हें ज्ञात है और ये आसान नहीं है, विशेषकर यदि एक छात्र को पुनः परीक्षा देनी होगी। वे ये भी अच्छी तरह समझते हैं पर दुख की बात है कि एक रिप्लेसमेंट पेपर निकाला जाएगा जिससे प्राप्त क्वालिफिकेशन को दुनिया भर में मान्यता मिले और सभी यूनिवर्सिटियां भी इसको मान्यता दें।
0: और पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इस प्रश्न पत्र के लिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने बताया कि संबंधित उम्मीदवारों को असेस्ड मार्क्स प्रदान किए जाएंगे।

करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन में लगातार अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस संदर्भ में आज लर्न एआई स्कूल प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण आयोजित

0: ने अपने स्मार्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट के साथ जीत हासिल की, जबकि ग्रेड 12 की कैटेगरी में कल लंदन कॉलेज ने अपनी पब्लिक सर्विस एफिशिएंसी परियोजना के साथ विशेष पहचान बनाई। ये प्रतियोगिता कल आयोजित की गई। भरी हुई वेटिंग रूम्स, दबाव में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ और कभी कभी ऐसे मरीज जो खफा और नाराज हैं, ये दृश्य अब आम है। नर्सिंग एसोसिएशन के अनुसार नर्स की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक बनी हुई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राम नाओजादेक का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ की कमी सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल को प्रभावित करती है। उनको सुनते हैं।
1: सभी इलाकों में ट्रोमा यूनिट की स्थापना करने की बात की जा रही है, पर ये है क्या? मतलब ये है कि एक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट को हटाकर उसको ट्रोमा यूनिट बनाया जा रहा है। सभी स्टाफ वही है, प्रणाली भी वही है, और विज्ञापन में बताया जा रहा है कि इसको एक वन स्टॉप शॉप बनाया जा रहा है। जैसे जैसे ही मरीज वहां पर आएंगे, उन्हें एक ही जगह पर सभी सेवाएं प्राप्त होंगी तथा विशेषज्ञ भी उन्हें देखेंगे, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। अस्पतालों में विशेषज्ञ और नर्सेज की कमी है। कैजुअल्टी में जहां 10 नर्स होने चाहिए, वहां केवल 2 इधर उधर भागते हुए काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रणाली की स्थिति इतनी दयनीय देखकर सब मायूस हो रहे हैं। मेडिकल स्टाफ पर बहुत दबाव बना हुआ है, सेवाएं धीमी हो रही हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट करने की मांग करते हैं।
0: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन द्वारा कल एक प्रेस सम्मेलन लगाया गया, जिस दौरान सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजा तथा अयोध्या रामायण प्रतियोगिता और अन्य जानकारियां दी गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में। सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के लिए भूमि पूजा 21 जून को होगी। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान इसका ऐलान किया गया।
2: 21 जून को यानी कि सनातन वाटिका में, यहाँ पर सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के शुभ आरंभ के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक भूमि पूजा का आयोजन किया है। सवेरे 9:30 यहाँ पर भूमि पूजा होगी।
0: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की पहल पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है।
2: पहली जो है रामायण गायन प्रतियोगिता, जो मॉडर्न वर्जन में होगी, और ये हमारे जो नौजवान हैं जो कॉलेज में हैं उन लोगों के लिए है। दूसरी पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल नॉर्मल वर्जन और ट्रेडिशनल चौताल वर्जन, तीसरी मॉडर्न क्लासिकल वर्जन पर होगी। चौथा जो है गीत गवाय प्रतियोगिता, पांचवी है इलोकेशन कंपटीशन कहते हैं, चौथा है चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी जो हम कहते हैं क्विज कंपटीशन, इसमें भी ये यंगस्टर्स के लिए हैं।
0: मॉरिशस के लिए अगले हिंदू कैलेंडर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा गंगातलाव स्पिरिचुअल सेंचुरी को लेकर कुछ निर्देशों पर भी फेडरेशन द्वारा काम किया जा रहा है। विदेश की खबरों में, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जिससे ईरान में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चलाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके। फरवरी में शुरू ही इस युद्ध के खिलाफ खड़े होने की 3 नाकामयाब कोशिशें की जा चुकी हैं। इस बार आखिरकार 208 के मुकाबले 215 वोटों के साथ ये बिल पारित हो पा रहा है, फिर भी इसके अमल में लाए जाने पर अभी भी आशंका जताई जा रही है। जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिराएंगे, कहीं कहीं पर बादलों के गरजने की भी संभावना है, और रात को भी दक्षिण पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो पर मौसम बरसाती रहेगा। प्रवाली खाके पर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:39 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग तथा तकनीकी पर यूसुफ का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल में, नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती रामचंद, श्रीमती धनवंती रामचंद पैराशी नाम पैम और जो रेखा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को, अर्थी शुक्रवार को उनके मकान, उनके बेटे रजनीश और अविनाश रामचंद के मकान नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन फ्राइडे एट 1:30 PM। स्वीट ला रुई पावे दामो कोरोमंडल में, ला रुई पावे दामो कोरोमंडल में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती श्वेता देवी रामदेन, श्रीमती श्वेता देवी रामदेन पैदाशी नाम देवी और जो बाबुन गीता के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान लाहुइपा वेदामो कोहोमोडेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। कमलन लेन नोवेल फ्रांस में, कमलन लेन नोवेल फ्रांस में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद ज्योत, श्री परमानंद ज्योत जो परमानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान कमलन लेन नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिजानी रोसबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। ब्रांच रोड पिची व्याजे में, ब्रांच रोड पिची व्याजे में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री महादुआ, श्रीमती सावित्री महादुआ जो दादी सुकून के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके बेटे देवराज महादुआ के मकान ब्रांच रोड पिची व्याजे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। गंगू लेन लिस्कालिये में, गंगू लेन लिस्कालिये में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती हरिप्रसाद, श्रीमती लीलावती हरिप्रसाद पैदाशी नाम दुखित और जो सुया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रामेश्वर हरिप्रसाद के मकान गंगू लेन लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। रॉय रोड रोजबेल में, रॉय रोड रोजबेल में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रदुमन सिंह सिवलाल, श्री प्रदुमन सिंह सिवलाल जो विकास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान रॉय रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। कालीमाई रोड ब्रामस्थान में, कालीमाई रोड ब्रामस्थान में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम दत्त बिहारी, श्री प्रेम दत्त बिहारी की मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 9 बजे उनके बेटे कोमल बिहारी के मकान कालीमाई रोड ब्रामस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडमास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। फर्स्ट रोड पोंजुसाक में, फर्स्ट रोड पोंजुसाक में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री सुखराम गोबिन, श्री सुखराम गोबिन जो विद्यानंद मौशंकोको के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे रविन्द्र सत्यराम गोबिन के मकान फर्स्ट रोड फोंजुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि दे जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। कौन लीला शमय घोइनिये में, कौन लीला शमय घोइनिये में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवी

0: Renuka, Tailam, Shrimati Devi, Renuka, Tailamei, Pedashinam Lachuman, और जो रेनू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पिता रामनूप लक्ष्मण के मकान कौलीला शुमय घोइने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंप गोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। श्री शंभुनाथ रोड कास्टेल फिनिक्स में, श्री शंभुनाथ रोड कास्टेल फिनिक्स में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती स्वांति जगतपाल, श्रीमती स्वांति जगतपाल पैदाशी नाम सियोनत और जो फिन के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे कृष्ण जगतपाल के मकान श्री शंभुनाथ रोड कास्टेल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भी कहा क्योंकि की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। यूके में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराज जीबन जो अनिल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले टैगोर रोड फोन जो सक रहा करते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को दिन के 3 बजे यूके के समय अनुसार यूके में उठाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन फ्राइडे एट 3 PM इन यूके। काना एवेन्यू काटकोको में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिप्रसाद रामहित जो महाश तायुय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके बेटे जयदत्त रामहित के मकान कानावेन्यू काटकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। गांधी रोड एनएस फ्लोहां बेलिया में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवयानी लक्ष्मण पैदाशी नाम जहाजिया और जो बबीता के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11:30 बजे उनके पति विनोद श्याम के मकान गांधी रोड यानी स्लोहों बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। हुई गालिया कास्टेल में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री उत्तम दत्त सामनाथ जो प्रीतम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके मकान हुई गालिया कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। रारोड कॉची मिलितिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदत्त सिंह सांधुराम जो जग के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बायरन कॉलेज तथा बॉम्बू SSS में पूर्व एजुकेटर थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके मकान रारोड कॉची मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11:30 AM। रागुलेन लोशे त्यागूज में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री राजमन रागु जो राजमन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके बेटे परमानंद रागु के मकान रागुलेन लोशे त्यागूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्तिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: जवानी।
1: ये तालियां आपकी हैं। हाँ, आपने इतने प्यार से हमारा साथ निभाया। 6:54 अब नीतो के जाने का टाइम आ गया है। कल वापस मिलेंगे आपको और आपसे वो भी यानी कि 5 से 7 बजे के बीच सेम टाइम। हाँ, अभी के लिए तो विदिता आ रही है आपसे ढेर सारी बातें बताने के लिए, सुनाने के लिए। इन मॉर्निंग बीट हैव अ नाइस डे अहेड। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: A very good morning. सुबह के 7:07 हुए हैं और हम साथ हैं और 7 दिन आ गए हैं. कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स? मॉर्निंग में बड़ा मज़ा आता है ना. अभी देर तक सोना, गर्मा गर्म चाय पीना, फिर उसके बाद गर्म कपड़े पहनना और बस मूड भी थोड़ा गर्म हो जाता है. कभी कभी होता है लेकिन नो वरी, उसको ठंडा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं आपके लिए. तो चलिए, अभी वेदिता आ गई है साथ देने की आपके मॉर्निंग को और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए. This is your morning beat on Radio Masti. और Radio Masti पर मस्ती नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं, you tell me क्या होगा? तो ऐसा करें, आप भी अगर हमारे मस्ती में शामिल होना चाहते हैं तो do send me your messages on 5499-1294.
0: Morning beat, a good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सात बजकर 17 मिनट और वेदिता आपके साथ हैं। जानती हूँ मॉर्निंग में आप लोग काफ़ी बिजी रहते हैं कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम हमेशा कहते हैं अपने पास ड्राई फ्रूट्स रखा करो। मॉर्निंग में एक ग्लास गर्म दूध, जिसमें हो सकता है कि मम्मी जो है कभी कभी क्या करती हैं उसमें हल्दी भी मिला देती है, और रात को पीने के लिए अच्छा होता है, लेकिन मॉर्निंग में एक ग्लास दूध अगर पी कर आप निकलती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो अगर आप एक फ्रूट खा सकते हैं इन द मॉर्निंग, एक बनाना खा सकते, ये भी आपको फुल रखेगा। फिर इसके बाद क्या होता है ना, इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि इंसान को जब भूख लगती है तो बहुत इरिटेट हो जाती है। पता नहीं, मेरे साथ तो होता है जब मुझे भूख लगती है और मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता तो मैं बड़ी इरिटेट हो जाती हूँ। सो इसीलिए हमेशा अपने पास ड्राई फ्रूट्स रखा करो, फ्रूट्स रखा करो, और मूड बनाने के लिए म्यूजिक तो हमारे पास है ही। डोंट फॉरगेट टू सेंड मी योर मैसेज 5499-1294। जी हाँ, 5499-1294 पे वेटिंग फॉर यू गाइस। म्यूजिक का डोज जारी है आपके लिए आपके अपने रेडियो मस्ती पर।
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. La bouteille de champ d'or Sparkling Drink à 209,95 roupies et le micro-ondes de 20 litres Midea à 2299,95 roupies. Pas oublié, ex-can to pay, gagne plus points Weave à tous les moments. Et papa, merci.
4: On est tous winners.
5: La vie, c'est ou PC Saint-Yr, c'est le marque de c'est Nol Shop. Refill ban produits ménagers, révis-nous bien moins. C'est et complice ou Péranen Grand, c'est vis la natire. Amenou galon, vin refill ban produits ménagers Ecclésienne, donne-nous 4 Nol Shops. Triolet, Paille, Petite Rivière et Floréal.
6: Économique, écologique. Passez au refill, c'est logique.
7: Cernol, le signe de confiance.
0: RM2
1: Radio Musti. RM2 Radio Musti.
0: Hit music only.
8: Radio Musti feels a musti.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी गाने वही हैं, बस बीट थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन गाना अभी भी सुनने में बड़ा मजा आता है ना। सुबह के 7:22 हुए हैं। एक बार फिर से सभी हमारे फ्रेंड्स का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मॉर्निंग बीट में विनीता के साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मस्ती। और चलो एक नया दिन है, कुछ नई उम्मीदें, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आज आपके सामने आ जाए। तो बस इतना कहेंगे कि आज का दिन है, अगर सुबह सुबह आपके पास मिलता है टाइम 5 मिनट का, तो फोन स्क्रॉल करने की बजाय अगर आप उस 5 मिनट में थोड़ा सा वॉक कर ले, या 5 मिनट थोड़ा गर्म पानी पीकर उसको यानी बैठ जाएं कहीं पे। कुछ लोग क्या करते हैं, भागते भागते पानी पीते हैं। पानी पीना है तो कम से कम 2 मिनट के लिए आप बैठ तो जाओ। ये क्या हमेशा भागते रहते हो, जब फोन हाथ में होता है तब तो आप बैठे रहते हो। तो वही कहना चाहते हैं हम कि आप 5 मिनट बिना फोन के अगर बैठे मॉर्निंग में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना कुछ लोग तो अपने मॉर्निंग टेक्स्ट मैसेजेस के साथ ही मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। अरे भाई, लाइफ में और भी बहुत कुछ है फोन के अलावा। ये बात अलग है कि फोन पे आजकल सारा काम होता है, लेकिन फिर भी सुबह जैसे ही उठे तो कम से कम आंखें बंद करके कुछ अच्छा सोचो, प्लान करो कि आज क्या करना है। या तो फिर ग्रैटिट्यूड भी कभी बहुत अच्छा होता है, यू नो, टू बी थैंकफुल कि आज एक बहुत ही अच्छा दिन हमें मिला है और इसे कैसे और बेटर बनाना है ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। चलिए तो इसी के साथ मॉर्निंग में हम हमारे इस प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। मैं विनीता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, घर में है, गाड़ी में है, ऑफिस में, जहाँ से भी सुन रही हैं। Good morning and welcome to Morning Beat.
0: Morning Beat. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: मॉर्निंग मॉर्निंग में हंसना बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी को हंसाना और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पता है, किसी और को खुश करके हमारी जो खुशी होती है वो दुगनी हो जाती है। मेबी मोर देन दैट। अभी क्या करना है आपको, आप किसी के लाइफ में अगर खुशियां लाना चाहते हैं, स्माइल लाना चाहते हैं, तो ऐसा करें, अगर किसी का बर्थडे है आज और उनको अगर आप खुश करना चाहते हैं, सेंड मी देयर नेम एंड फ़ोन नंबर। यानी कि अभी समय हो गया है कि हमारा बर्थडे ऑफ द डे है वो सेलिब्रेट करें लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से। और आपको पता है, लोलो हाइपरमार्केट रोज़ हमारे साथ मॉर्निंग मॉर्निंग में रेडी हो जाते हैं। बोलो किसका बर्थडे है, किसको खुश करना है, तो वाउचर आपको मिल सकता है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से। अगर आप लकी हो सकते हो आज, तो जिनका भी आज बर्थडे है, रिमेंबर बर्थडे आज होना चाहिए, और आपको चाहिए कि आप उनका नाम और फ़ोन नंबर हमें भेजें ऑन 5499912 94।
0: Morning beat, a good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

RM2, Radio Musty, in the mix.

0: 7:35 वेरी गुड मॉर्निंग. आप लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: और चलिए यहाँ पर मिलते हैं उनसे जिनका आज बर्थडे है. वैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर फ़ोन जैसे बजता है सब पहचान जाते हैं. वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो हैप्पी कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनका

0: प्यार हमें मिलता है और वो कहते हैं कि उनकी मॉर्निंग हमारे बिना तो शुरू होती नहीं है. सो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए. आशना हरचंद नमस्कार.
1: नमस्ते.
0: कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ.
0: अच्छा जी, तो बताइए आज का प्लान क्या है?
1: आज कुछ नहीं, काम कर जा रही हूँ.
0: काम पर जा रही हो? देखो भाई, आपका प्लान काम करना है और हमारा प्लान है ये.

0: चलो भाई रेडियो मस्ती टीम आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रही है। लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है एक वाउचर एंड आई होप कि आप खुश हैं कि हमें मौका मिला है कि आपका बर्थडे जो है मॉर्निंग में हम सेलिब्रेट कर सके आपके साथ।
1: थैंक यू।
0: क्या हुआ वैसे आपको पता ही है आप तो रेडियो सुनते ही आपको पता है इस टाइम पे बर्थडे होता है जब फोन बजता है हेलो हाँ रेडियो मस्ती है ना हाँ भाई हम ही है और कौन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच आपको कहेंगे हम आशना जी एंड बहुत बहुत प्यार आपके लिए। भूलिएगा नहीं कि लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपका जो बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से एक वाउचर है जो आपको आज नहीं तो कल अपने आईडी कार्ड के साथ कलेक्ट करना पड़ेगा @MBC। तो हैप्पी बर्थडे एंड हैव अ गुड डे। बहुत सारा प्यार बहुत बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिले आज। इसी के साथ कहूंगी थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू
0: बाय बाय
1: बाय।
2: RM2 Radio Musti
3: Mieux connaître la taxe avec la MRE.
4: Une compagnie bizet paye corporate income tax le profit qu'il y fait. Sa corporate tax là, li applicable le chargeable income en compagnie. Chargeable income, c'est profit déduit ban dépenses qui est autorisé par la loi fiscale. Quand une compagnie in fait la perte, li pou capable carry forward sa la perte là pour un maximum de 5 ans. Si une compagnie pas soumettre son return et pas paye ce taxe dans délai qui bizin pour ena pénalité pour non soumission, paiement en retard et l'intérêt. Nous faire un appel à toute bonne compagnie, respecter la date de soumission de votre return income tax et faire li à travers le site web de la MRE www.mre.mu. Pour plus de renseignements le soumission return compagnie, visite site web de la MRE www.mre.mu ou bien téléphone-nous le 207-6000. Merci et à bientôt.
5: Que tout pays TVA, pas oublié, exige ou reçu.
6: La vie, c'est ou PC, Saint-Yves, c'est le marque de c'est Nol Shop. Refil ban produits ménagers, revenu bien moins, c'est. Et complice, ou péranen grand, c'est vis la nature. Amenou galon, vin refil ban produits ménagers et clésiennes, donne-nous 4 Nol Shops. Triolet, Paille, Petite Rivière et Floréal.
7: Économique, écologique, passez au refil, c'est logique.
8: Cernol, le signe de confiance.
2: RM2 Radio Musti. RM2 Radio Musti.

0: इना मीना डी का तो हो गया। चलो भाई घड़ी भी इशारा करिए कि अब समय हो गया है, बढ़ते हैं।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: Sports news, latest updates.
3: Sports news.
4: Radio Musti in the mix.
0: And yes, चलिए time हो गया है। Welcome करते हैं अरविंद का। जानते हैं क्या चल रहा है sports world में। Good morning, Arvind.
5: Good morning, आपको. Good morning, RM2 listeners. Let's check out the latest from the sports world. इसके साथ आज के sports bulletin को शुरू करेंगे। फ्रेंच ओपन में टाइटल फेवरेट वर्ल्ड नंबर वन अरीना साबालेंका बाहर हो गई।

0: क्वार्टरफाइनल में सबालेंका को हराया जाना श्नाइडे ने 3-6, 7-5, 6-0 से। वीमेन्स सिंगल में ही क्वालिफायर श्वालिंस्का सेमीफाइनल में पहुंची कालिंस्काया को हराकर। लड़कों में कुबोली ने उग अलियासिमे को हराया और नाल्दी भी क्वालिफाई हुआ अपने हमवतन बेरेचिनी को हराकर। आज लड़कियों का सेमीफाइनल कोस्ट्रिक खेलेगी अंद्रीवा के खिलाफ श्नाइडर श्वालिंस्का। कल लड़कों का सेमीफाइनल मेंसिच बेरेव और नाल्दी कुबोली, ये कल के लिए है। ट्रांसफर न्यूज, ट्रांसफर बाजार का गरम माल है नॉटिंघम फॉरेस्ट का इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन। मैनचेस्टर सिटी का पहला प्रस्ताव, उसका पहला ऑफर स्वीकार नहीं किया गया। फॉरेस्ट अपने जवान शेर को सस्ते में नहीं बेचेगा, उसके लिए एक ब्रिटिश प्लेयर रिकॉर्ड फी चाहिए। अभी ये रिकॉर्ड 105 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का है जो डेक्लन राइस के लिए दिया गया था। सो सस्ते में नहीं बेचा जाएगा एलियट एंडरसन। इसे मैनचेस्टर सिटी की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के सांड्रो टोनाली पर भी है। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज कल खेले गए, नेदरलैंड्स की हार हुई, अल्जीरिया ने उसे 1-0 से हराया। पोलैंड 2, नाइजीरिया 2, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 0, डेनमार्क 0, अल्बेनिया 0, इजराइल 1 और इटली की जीत लुक्जमबर्ग पर 1-0 से। आज भी अनेक मैच खेले जाएंगे, इनमें फ्रांस आइवोरी कोस्ट के खिलाफ खेलेगा, फिर स्पेन इराक, स्वीडन ग्रीस। वर्ल्ड कप के दौरान डेविड बेकहम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिलने वाला है। यह अवार्ड उन्हें 12 जून को लॉस एंजेलिस में दिया जाएगा। ये स्टार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है। अमेरिका में फुटबॉल का क्रेज बढ़ाने और ग्लोबल कल्चर पर उसके असर के लिए डेविड बेकहम को सम्मानित किया जाएगा। टेनिस ITF CAT 14 एंड अंडर सर्किट में अलेक्जेंडर टेवे ने डबल चैंपियन बना। सिंगल्स और डबल जीतकर फाइनल में अलेक्जेंडर ने एडविन सनासी को हराया। और साइकिलिंग में टूर डी लाइल साइक्लिस्ट के दूसरे चरण सेकंड स्टेज में साउथ अफ्रीका के चानो सिल्वा की जीत हुई। येलो जर्सी अभी फ्रांस के साइक्लिस्ट गियोम जरवेलिया के पास है। कल के एटाप में अलेक्जेंडर मेयर चौथा स्थान ले पाया। राज तीसरा स्टेज ये होगा कास्कावेल से बुआशेरी तक 125 किलोमीटर की रेस, थर्ड स्टेज। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वैसे बता दें आपको, हमारी मुलाकात फिर से होगी 8:30 विद द वर्ल्ड कप मैगजीन, द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप 2026। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती। बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert. RM2. Radio Westin.

0: माँ का लाडला बिगड़ गया, लेकिन माँ के लाडले को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा माँ का ही हाथ होता है।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: It's 7:56 and चलिए भाई 4 जून, जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसी के साथ अब हम बढ़ने जा रहे हैं अगले गाने की ओर, जो हमें लेकर जा रहा है 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर। वैसे मम्मी की बात करें तो मम्मी बेस्ट होती है, मम्मी बेस्ट होती है। और दुनिया का सबसे बेस्ट अलार्म पता है क्या है? वो होती है हमारी माँ। आप मम्मी को बस बोल दो, अरे मम्मी कल सुबह 6 बजे

0: उठा देना। मम्मी आपको सुबह 5 बजे उठाएगी और बोलेगी क्या कर रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो, 7 बज गए। ऐसा होता है ना, आपके साथ हुआ है ना जान दीदी। चलो मिलते हैं समझ आ रोगे बाद।
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2. Radio 1.

फजर के 8 बजल बा चल संक्षिप्त समाचार सुना जा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ई खबर बाटे, देश में एमपॉक्स के एगो संदिग्ध मामला के पता चल बाटे। मरीज के एसएसआरएन अस्पताल में आइसोलेशन पर ही रखल गल ह। 64 बरिस के ई मरीज विदेश के हवन जा। सैंपल लेवल गल ह आरी विक्टोरिया अस्पताल के लेबोरेटोरी में। टेस्ट के बाद पता चली कि ई एमपॉक्स वायरस ह कि नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फासिल कुलाबकस के अनुसार आज सांझ लेक नतीजा मिल जाए। ओलिविये बॉन्कुल्ट के लंदन मिशन के लिए के तनाव बाटे। एगो प्रेस कम्युनिके में उनकर प्रतिनिधिमंडल दावा कर ले बाटे कि बरतानी संसद में उनकर पहल के विरोध करे होला। एगो ग्रुप बगल से उ लोग

0: के डरावल गल है। बयान में ई बोलल गल है कि एगो वीडियो अरे एगो फोटो प्रसारित करल जात बा जिनकर उपयोग प्रतिनिधिमंडल के अनुसार ई दिखाई खातिर करल जात बा कि ओलिविए बोंकुल्ट शागुस के मुद्दा से विश्वासघात करत हवन। बखेर ई चरण पर ई आरोप खाली प्रतिनिधिमंडल के प्रेस विज्ञप्ति में लगावल गल एगो दावा बतावल जात बा। करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थी लोग के जून महीना में कैम्ब्रिज ए लेवल के खातिर मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर फ्री आरी पेपर 12 फेनो से दे के पड़ी। ई परीक्षा लेंडी 8 जून आरी मंगल 9 जून के सांझ के 1:30 पड़ी। वो लोग के अपन कॉलेज में जाए के दे के पड़ी। ई उम्मीदवार लोग मूल रूप से ई जुन परीक्षा बाटे 29 अप्रैल आरी 15 मई के दे दिले रहन सब। अखेर बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही गणित के 3 प्रश्न पत्र के लीक हो के घोषणा करलक। एमईएस के ओर से प्रभावित विद्यार्थी लोग के कर सूचना अक्ते से दे देवल गल है पोस्ट आरी मीडिया के माध्यम से। एमईएस के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ई परीक्षा के फेनों से आयोजित करे के प्रस्ताव रख लेबा। पेपर 5 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी खातिर कोनो नवा परीक्षा नहीं लगावल जाए। विदेश के खबर में जुन सुर्खी में बाऊ में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एगो एसन विधेयक पारित कर ले बा जुन से ईरान में कोनो प्रकार के सैन्य कार्रवाई चलाए से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोकल जा सकी। फरवरी में शुरू भेल युद्ध के खिलाफ खड़ा हो के 3 कोशिश नाकामयाब रहल। एकर बाद अब जाके 208 के मुकाबला 215 वोट संगे ई बिल पारित हो सकी। फिर भी एकर अमल में आनल जाए परी हभिलेख आशंका जतावल जात बाटे। तई रहल संक्षिप्त समाचार। तुहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Morning Beat.
2: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती, ये है आपका मॉर्निंग बीट विदिता के साथ। कैसे हैं जी, कहाँ तक पहुँचे, पहुँच गए होंगे ऑलमोस्ट, सुबह के 8:10 हो गए हैं। और चलिए यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं, तो मिलते हैं याचना के साथ।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
3: ओनली टू विनर्स।
4: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी, कहीं कहीं पर बादलों के गरजने की भी संभावना है। दोपहर बाद ये बादल अन्य जगहों तक फैल जाएंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 और अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात दक्षिण पूर्वी इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और बारिश की भी संभावना बनी हुई है। हवा तेज होगी और प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पूर्व में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह सूर्योदय 6:39 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।
0: Your weather forecast on RM2
1: Radio Musti.
5: Faites fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners.

0: commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा घर खरीद सकता है, आप खरीद सकते हैं पैसे से घर, पर सुकून नहीं खरीद पाते। महंगी गाड़ी ला सकते हैं पर वक्त नहीं। लोगों को पास ला सकते हैं पर सच्चे रिश्ते नहीं। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा होता है, आपके पास रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, लोग होते हैं। जिस दिन ये पैसा ख़त्म हो जाता है, सब अपने गले निकल जाते हैं। कहने का मतलब तो यही है कि ज़िंदगी में पैसा कंफर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन असली खुशी अक्सर उन चीज़ों से आती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि प्यार, दोस्ती, सेहत, सम्मान और मन की शांति। अगर सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में हम इन चीज़ों को खो दें, तो अमीर होकर भी अंदर से हम गरीब ही महसूस करेंगे। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा कमाते हुए जिंदगी जीना उससे भी बड़ी कला कहलाती है।
2: Avant tout défi, tout long shift, tout premier pas qui capable sans tout aujourd'hui, il a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé First. Après tout fait une différence. Il peint sa tasse, il un nouveau départ, un nouveau énergie, une nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift, commence par une bonne décision. Nescafé.
3: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat. RM2.
4: Radio.

0: The title track from the movie Sayyara for you on Radio Masti. ये कैसा गाना है जिसे आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, बस मूड ही अलग हो जाता है इस गाने को सुनने के बाद. I don't know, you feel अंदर से जैसे कोई पीस, लाइक कोई खुशी है ना.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Masti.
0: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग. एकदम मस्त वाला वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग बीट में जो आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर. मैं वेदिता आपका स्वागत करती हूं. उम्मीद करती हूं कि आज की सुबह आपके लिए नए सपने, नई एनर्जी और ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आए. चाहे आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो, या तो फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हो, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, या तो बस अपना बॉडी बना रहे हो कहीं जिम में. दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए स्माइल ज़रूरी होता है. तो जब तक आप खुद को नहीं बोलोगे कि सुनो आज का दिन बहुत अच्छा है और स्माइल नहीं करोगे, तो आपको बॉडी जो है ना रिएक्ट नहीं करेगी. अगर आप बोलोगे अगर यार देर होगी, आज मुझे देर होगी, तो सच में देर हो जाती है. और आप बोलोगे पता नहीं यार डांट पड़ेगी, तो सच में डांट पड़ती है. इसीलिए सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचो. ओके, हमेशा कहती हूँ मॉर्निंग जो है उसकी शुरुआत आप एक ग्लास पानी के साथ ज़रूर करें. अब अगर मॉर्निंग में आपको अभी ठंडा पानी नहीं पीना है तो गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, अच्छा रहता है. और बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू नो, आप मॉर्निंग में उठकर जब एक ग्लास पानी पीते हैं तो अपने बॉडी को क्या कहते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करती हैं और दिन भर आपको फील जो आती है ना वो एकदम फ्रेश वाली होती है. चलो जी, अब बॉडी अगर आपकी हेल्दी है तो माइंड भी आपका हेल्दी होगा, तो आपकी सोच भी हेल्दी हो जाती है. वेदिता का साथ है रेडियो मस्ती पर और हम आपके साथ एकदम तैयार है. अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी ट्रैफिक में फंसे हैं, वेदिता प्लीज़ एक और प्यारा सा कोई रोमांटिक गाना सुना दो यार, तो आई थिंक ये वाला बेस्ट रहेगा. बिल्कुल मन आपका तितली के जैसा उड़ते वाला है. लेकिन ये भी सोच रही हूँ कि अगर थोड़ी सी धूप आप तक अगर मैं पहुँचा दूँ तो यस. चलो भाई, इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, धूप खिली हुई है तो आपका चेहरा भी तो खिलना चाहिए. थोड़ी देर में वर्ल्ड कप की चंद डिटेल के साथ मिलते हैं अरविंद के साथ. एंजॉय करिए गाना.

0: ये साज ब्लू है पानी, दिन भी सनी है, तो ऐसा करते हैं ना, वर्ल्ड कप के बारे में कुछ और जानते हैं। वैसे भी अभी ओपनिंग बहुत जल्द होने वाली है।
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर। आज जून 4 यानी अगले हफ्ते सेम डे मेक्सिको में वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, और पहला मैच ये होगा मेक्सिको, होस्ट नेशन मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच। सो ओनली 1 week लेफ्ट, इंतजार करेंगे। वैसे ये भी बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया डायरेक्ट नहीं खेल रहा है, लेकिन इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग देशों की नेशनल टीम से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें है सरप्रीत सिंह, न्यूजीलैंड के लिए खेलता है, ये एक अटैकिंग मिडफील्डर है और वेलिंगटन फिनिक्स के लिए खेलता है। उसके पेरेंट्स जलंधर पंजाब से हैं। सरप्रीत न्यूजीलैंड से पहले साउथ एशियन प्लेयर बनेंगे जो वर्ल्ड कप स्टेज

0: पर खेलेंगे। फिर है तहसीन मोहम्मद जमशेद जो कतर के लिए खेलता है। ये 19 साल का विंगर कतर की टीम को रिप्रेजेंट करेगा। उनके पेरेंट्स कनूर केरला से बिलोंग करते हैं। वो अल दुहाल क्लब के लिए खेलता है। निशान वेलुपिले ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। मेलबोर्न विक्ट्री के ये डायनामिक 25-year-old विंगर ऑस्ट्रेलिया की 26 खिलाड़ियों की लिस्ट में है। उनका परिवार तमिलनाडु मूल के हैं। फिर है सैमुअल मुटुसामी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के लिए खेलता है। ये मिडफील्डर है जो कोंगो की नेशनल टीम से वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया है। फिर कतर में ही है नियाल मेसन। इंग्लैंड में पढ़े हुए इस डिफेंडर की मां इंडियन है। उन्हें कतर की प्रीलिमिनरी टीम में जगह मिली है। सो इतने हैं। तो भारतीय टीम कभी तो कभी जाएगी। दे आर गेटिंग रेडी। और खबरें आपको देते रहेंगे। इस बीच कल इस ऑफिशियल स्क्वाड लिस्ट लॉक कर ली गई है। इनमें मैसिव लाइनअप अनाउंसमेंट, इंजरी कंसर्न केवल 7 दिन रह चुके हैं। सो 1248 खिलाड़ी लॉक्ड इन। फीफा ने ऑफिशियली अनाउंस किया 48 नेशन फॉर्मेट। हिस्टोरिक 6 कैंपेन है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गुयमो ओचोआ के लिए। वे लोग अपनी अपनी टीम में खेलेंगे। रोनाल्डो कैंप में आया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर चुका है और कैप्टन फिटनेस क्राइसिस है। आइवरी कोस्ट के कप्तान फ्रांक केसी, उसके साथ साथ कालिदू कुलीबाली, अशरफ हकीमी और मोहम्मद सलाह भी फुल फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं। सो सब कुछ सेटअप है ओपनिंग मैच सेट के लिए। और ये मेक्सिको साउथ अफ्रीका के बीच मैच होगा स्टाडियो अस्तेका मेक्सिको सिटी में। सो गेट रेडी, ओनली 1 week लेफ्ट फॉर द ग्रैंड मेला ऑफ फुटबॉल, द फीफा वर्ल्ड कप 2026.
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: And yes, my dear friends, you're listening to Radio Musti. और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मॉर्निंग बीट विजिता के साथ. चलो भाई, आज बात करते हैं एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने साबित कर दिया कि टैलेंट और डिटर्मिनेशन की कोई एज लिमिट नहीं होती. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नीना गुप्ता. नीना गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और टेलीविजन से की थी और अपने नेचुरल एक्टिंग से लोगों के दिल को जीत लिया. लेकिन उनकी जर्नी हमेशा आसान नहीं थी. कई सालों तक उन्होंने चैलेंजिंग रोल का इंतजार करना पड़ा. फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, आई फिल्म बधाई हो, जिसमें उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और फिर क्या, स्पॉटलाइट उन पे आ पड़ा. इस रोल के लिए उन्होंने उनको बहुत खूब सराहना मिला और उन्होंने प्रूव कर दिया कि टैलेंट कभी पुराना नहीं होती है. और आज नीना गुप्ता सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि बहुत कॉन्फिडेंस है उनमें और बहुत ही खूबसूरत लगने लगी हैं आजकल वो. जिस तरह से उनकी बेटी मसाबा है, उनको वो तो वैसे भी फैशन डिज़ाइनर है, अपनी मम्मी के सारे कपड़े वही डिज़ाइन करती है. तो उन्होंने बता दिया कि भाई अगर खुद में विश्वास है तो इंसान आगे बढ़ सकता है और एज जो है ना उसके हिसाब से अपने आप को लिमिट मत किया करो. कभी भी अपने सपनों को एज या सर्कमस्टेंसेस की वजह से छोड़ना मत. सही वक्त आने पर मेहनत ज़रूर रंग लाती है और ये हमें इनसे सीखना चाहिए. तो आज उनका बर्थडे है. जितने भी उनके फैंस हैं उन सब की ओर से नीना जी को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ उनके जन्मदिन पर. हैप्पी बर्थडे. चलिए भाई, जब बधाई हो कहाँ है तो उसी फिल्म का गाना भी. तो जो सपने आपके पूरे नहीं हुए, इनसे सीखिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए. गुड मॉर्निंग.

0: just wanted to tell you, since the very first day I saw you, I love you.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
3: थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. जी हाँ, रेडियो मस्ती आपके लिए हम लेकर आते हैं आपका मॉर्निंग बीट. यहाँ पर गाने कुछ ऐसे लेकर आते हैं ताकि मूड आपका एकदम टगाटग हो जाए. चलिए जी, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब हम याद करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज़ को जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को छुआ है. SP बाला सुब्रमण्यम, कह लीजिए SPB या बाला, इनको हम इसी प्यार से नाम प्यार के नाम से बुलाते थे. आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उनकी सुरीली यादों को सलाम करते हैं. SP बाला सुब्रमण्यम जी ने अपने करियर में हज़ारों गाने गाए हैं और कई भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा. उनकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास थी, चाहे रोमांटिक गाने हो, डिवोशनल गाने हो या एक एनर्जेटिक मेलोडी, हर गीत में वो जान डाल देते थे. उन्होंने कई पीढ़ियों को अपने संगीत से जोड़ा है और उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी पहली बार सुनने पर लगी थी. उनका सफ़र हमें ये सिखाता है कि सच्ची लगन और मेहनत इंसान को अमर बना देती है. आज के दिन उनके लिए एक छोटा सा सलाम. कुछ आवाज़ें कहते हैं ना कि सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और SP बालासुब्रमण्यम जी की आवाज़ उनमें से एक थी. तो चलिए आज उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हैं और यही अगला गाना उन्हीं की आवाज़ में सभी लिसनर्स सभी उनके फैंस के नाम.
2: RM2 Radio Musty in the mix. Radio

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चेन्नई एक्सप्रेस ले, जी हाँ, अभी हम लेकर निकलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा भी प्रोग्राम समाप्त होने को, लेकिन जाने से पहले एक और एक्टर के बारे में हम बात करना चाहेंगे जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उनको याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नूतन जी की। नूतन जी ने अपनी नेचुरल एक्टिंग, सादगी और दमदार परफॉर्मेंस से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने हर किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि वो आज भी सिनेमा प्रेमी के दिलों में जिंदा है। चाहे सुजाता हो, बंदनी हो या मिलन, उनकी अधिक जो अदाकारी है, हर फिल्म को उन्होंने यादगार बनाया है। नूतन जी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एलिगेंस, टैलेंट और डेडिकेशन की मिसाल थी। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने उनको जो पहला ब्रेक मिला था वाज इन 1955 मूवी थी सीमा, जिसके लिए उनको मिला था, शी वॉन हर फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। और फिर उसके बाद कई सारी और फिल्में आई थी, पेइंग गेस्ट, जहां पर उन्होंने देवान के साथ काम किया था, चाहे राज कपूर के साथ अनाड़ी हो या सुनील दत्त के साथ सुजाता हो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनके लिए उनको याद किया जाता है। वैसे 1952 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मिस इंडिया के लिए, जहां पर शी वाज क्राउन मिस मसूरी बिफोर बीइंग सेंट टू स्विट्जरलैंड फॉर फर्दर स्टडीज ड्यू टू हर वेट लॉस एंड फ्रेल अपीयरेंस। तो बस उनके कई सारी फिल्में आती रही, और उन्होंने हमारे लिए कई सारी ऐसी फिल्में छोड़ी हैं जिनको हम आज भी देखते हैं। और चलिए भाई, हम घड़ी भी देख रहे हैं, विकास भी आ गए हैं, उनका साथ देने के लिए भी आप तैयार हो जाइए। और जहां तक हमारा सवाल है, तो हम आ जाएंगे मंडे को। जी हाँ बिल्कुल, मंडे मॉर्निंग में आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए, और प्रोग्राम वही होगा मॉर्निंग बीट। तब तक के लिए बस प्यार के साथ, रेडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये है रेडियो मस्ती।

0: 9 बज चुके हैं, वक्त हो गया है संक्षिप्त समाचार का।
1: अब आप याशना मिश्रा से समाचार सुनेंगे। नमस्कार याशना।
2: नमस्कार अनुराधा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये खबर, देश में एमपॉक्स के एक संदिग्ध मामले का पता चला है। मरीज को SSRN अस्पताल में आइसोलेशन पर रखा गया है। 64 साल का मरीज विदेशी है और सैंपल्स दिए गए हैं। विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी में ये टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी पाई जा रही है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फाजिल कुदाबकस के अनुसार आज दोपहर बाद तक नतीजे प्राप्त हो जाएंगे। ओलिविए मॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव। एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया है कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले एक समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। बयान में यह भी कहा गया कि एक वीडियो और एक फोटो प्रसारित की जा रही है, जिनका उपयोग प्रतिनिधि मंडल के अनुसार यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविए मॉकुल्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया है या शग उसके मुद्दे से विश्वासघात किया है। हालांकि इस चरण पर ये आरोप केवल प्रतिनिधि मंडल के प्रेस विज्ञप्ति में ही लगाए गए दावे हैं। अब बच्चों के लिए ये खबर। करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर फ्री और पेपर

0: 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर 1:30 बजे उनके अपने कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दे दी हैं, लेकिन इसके बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्र के लीक हो जाने की खबर की। मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट MES की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को इसके बारे में पहले से ही सूचित कर दिया गया है। तब तक के लिए बच्चों को ये भी कहा जा रहा है कि पेपर 5 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इस प्रश्न पत्र के लिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने बताया कि संबंधित उम्मीदवारों को असेस्ड मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन द्वारा कल एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कई घोषणाएं की गई। 21 जून को सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजा की जाएगी। इसके अलावा 29 जुलाई से अयोध्या रामायण प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जिसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। 7 प्रतियोगिताएँ होंगी, जिनमें नौजवान और मंदिर की मंडलियाँ भाग ले सकती हैं। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान अगले साल के हिंदू कैलेंडर की तैयारियों पर भी जानकारियां दी गई, जो अगले 3 महीनों में तैयार हो जाएगा। गंगा तलाव में स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के लिए MSDGF द्वारा विशेष निर्देशों की एक सूची भी बनाई जा रही है। विदेश की खबरों में US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिससे ईरान में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चलाने से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके। फरवरी में शुरू हुई इस युद्ध के खिलाफ खड़े होने की 3 नाकामयाब कोशिशों के बाद अब आखिरकार 208 के मुकाबले 215 वोटों के साथ ये बिल पारित हो चुका है। फिर भी इसके अमल में लाए जाने पर अभी भी आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, back with the music. स्वागत आप सभी का. जी हम तो बस इंतजार में रहते हैं कि कब आपसे मिलने का मौका मिल जाए. कोई है आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए. 9:10 and 4th of June already. Thursday का दिन. आज मौसम थोड़ा ठीक ठाक था ना. बस ऐसा मौसम मिलता है तो सुबह वो एनर्जी वापस लौट कर आती है और यही कहती है कि आज का दिन भी कुछ स्पेशल करने के लिए है ही. सो निकल पड़ो, चल पड़ो अपनी मंजिल की तरफ. जो भी चैलेंजेस हैं टेक देम फेस ऑन. और बाकी आपको बताइए, स्पोर्ट्स की बात हो, म्यूजिक की बात हो, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात हो, सब कुछ है यहाँ पर. जाना है कहाँ, ये संगीत का जहाँ.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Starting with some Mithun Das style. Sun rahe ho, oh, oh, oh.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

भाई सुबह सुबह कोई ऑप्शन नहीं होती जब कोई पूछता है कि बेटा उठ जाओ, नहीं आई एम फीलिंग टू लेजी, आर यू क्रेजी, नहीं तो जाना तो है ही ना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो अंदर का जो इंटरनल स्टैमिना है वो बाहर निकाल कर आना ही पड़ता है।

0: ले
1: जाने
0: चल जाने थे सितारों की चाल और शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
0: भाई आज का दिन सिखाएगा कि रिश्तों को संभालने में शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। एक मुस्कान और शांत जो आपका स्वभाव है घर के माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है। काम में जल्दबाजी या लापरवाही करने से आपकी मन में जो उलझने हैं वो ही बढ़ने वाली हैं, इसलिए आराम से हर कदम सोच समझ कर ही लें, जरूरी है। वैसे आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होता नजर आ रहा है।
2: टॉरस वृषभ राशि,
0: अपने पैसों और फैसलों दोनों पर खास नजर रखने की जरूरत है। निवेश करने से पहले हर पहलू को अच्छे से समझ लें क्योंकि छोटी सी गलती आगे परेशानी पैदा कर सकती है। प्रॉपर्टी या लोन से जुड़े मामले में पॉजिटिव खबर मिल सकती है। किसी कानूनी मामले में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिख रही हैं।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज परिवार और अपनों का साथ आपको मानसिक सुकून देगा। लंबे समय से मन में चल रही कोई इच्छा पूरी हो सकती है जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। घर की बात करें तो मेहमान की आवाजाही से माहौल काफी खुशनुमा रहने वाला है। जीवन साथी हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे, लेकिन जो पर्सनल बातें हैं वो हर किसी के साथ शेयर ना करें।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: आज आपको बेवजह के विवाद और बहस से दूरी बनाकर रखनी होगी। सरकारी काम में फायदा मिलने के योग हैं, इसे जरूरी कागजात और योजनाओं पर ध्यान दें। यात्रा या किसी से मुलाकात के दौरान ऐसी जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।
2: लियो सिंह राशि,
0: लियो जो भी काम मिले उसको समय रहते कर दियो। वैसे तो आर्थिक मामले में राहत और खुशी दोनों मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ के अवसर बने हुए हैं और रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। गुड न्यूज, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर मन हल्का महसूस करेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात दिल को खुश कर सकती है। हालांकि संतान की पढ़ाई या भविष्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बन सकती है।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: मन दूसरों की मदद करने और अच्छे कार्य में लगेगा। समाज में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी सराहना करेंगे। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद होगा। और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें, खाने पर पूरा कंट्रोल।
2: लीब्रा तुला राशि,
0: आपके जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो सबको प्रभावित करेंगी। प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ेगी और साथ ही आपका रिश्ता भरपूर निभाने वाले हैं। किसी रुके हुए काम में देरी होने से थोड़ी सी निराशा हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: धैर्य और समझदारी आपके सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा वरना बजट बिगड़ सकता है। परिवार में खुशखबरी या किसी नए सदस्य के आने से माहौल उत्साहित रहने वाला है और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है।
2: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज का दिन उत्साह और नई योजनाओं से भरा हुआ है। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और भविष्य को लेकर कोई इम्पोर्टेंट बातचीत हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से लंबे समय से रुका हुआ कोई काम पूरा होने की संभावना है। भाई काम के अंदर थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। नहीं, काम चलता रहेगा लेकिन कुछ उत्साह एक्साइटमेंट भी बनी रहेगी।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आपको हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देने से बचें। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा रहेगी और अपने काम को तेजी से पूरा भी कर लेंगे। नई प्रॉपर्टी, वाहन या जमीन खरीदने के लिए दिन शुभ माना जा रहा है।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज भाई बहनों और करीबी दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर सकती हैं। बिजनेस और नौकरी में किसी अनजान व्यक्ति की सलाह मानने से बचें। स्टूडेंट के लिए खास दिन रहेगा, विशेषकर जो विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं। बस अपना जो पाथ है वो बना लो और मेहनत को काम लो।
2: पाइसेस मीन राशि,
0: आज का दिन खुशी और राहत से भरा रहेगा। परिवार में यदि किसी समय से तनाव चल रहा है तो बातचीत के जरिए स्थितियां सुधर सकती हैं। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए अवसर लेकर आ सकती हैं। सरकारी काम में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अब ऐसा है कि काम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और सारी प्लानिंग सही से चल रही है, चाहे वो काम की बात हो या फिर कहीं बाहर जाने की प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और जाने क्या क्या। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कई चीज़ें आ जाती हैं एकदम से बिना बताए, फिर चाहे कोई मीटिंग हो या फिर कोइंसाइड कर रही हो आपके किसी प्लान के साथ। अब करें तो क्या करें। वैसे कई लोग बहुत ही डिप्लोमेटिकली इस बात को संभाल लेते हैं कि नहीं देखो ऐसा है कि फिर से मिलेंगे, अभी देखो मना नहीं करना चाहता, आपको बुरा नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन क्या करें। लेकिन ज़रूरी है आपको अपनी प्रायोरिटी रखनी, खाली इसलिए नहीं कि आप प्रेशर में आ गए इसलिए आपने किसी को हाँ कर दी। ज़रूरी है कि आप कल को पछताएंगे अगर काम में पूरी तरह से 100% हासिल नहीं कर पाएंगे। इसे ज़रूरी है टू कीप योर फीलिंग्स, योर डेडिकेशन एंड डिवोशन 100%। यानी कि काम करते हुए किसी दूसरे की इंगेजमेंट ना लें और ये सोच लें कि आप बाकी के दिन कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर और कोई इन्वॉल्व है तो उसकी प्लानिंग भी खराब करना ठीक नहीं होगा, है ना। राइट, अभी के लिए प्लानिंग आपकी क्या चल रही है, चले जा रहे थे। गुड मॉर्निंग जी सारा बानो और अब्दुल के लिए लगाना और साथ में नासिया हमारे साथ दे रही है। ओके नासिया, नमीर के लिए भी अगला गाना। गुड मॉर्निंग आपको भी, एंड कहते हैं प्लीज एक प्यार सा गाना स्पेशली फॉर देवानंद, सोफी है उनका बर्थडे है, सो विशिंग फ्रॉम ऑल द सिस्टर एंड फैमिली अ वेरी वेरी गुड डे हेड।

अच्छा कुछ ना पहले बात करते हैं कि कैसे अपनी दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, काम की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं, बॉडी को कितना असर पड़ता है, क्या कर सकते हैं, चले जाने के थोड़ी देर में। अरे एक नया दिन ही तो है और वहीं पर चैलेंजेस भी आएंगे और चैलेंजेस को पूरा करने के बाद आगे निकल भी जाएंगे।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: हाँ, बात करते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और कुछ लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में दोस्तों और बाकी कलीग्स के साथ होने वाली छोटी छोटी बातों पर लंबे समय तक गुस्सा रहते हैं। कोई नॉर्मल सी बात हो या कमेंट हो, मजाक भी, लोगों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया हो। ऐसे व्यक्ति के मन में शक बढ़ जाता है, लगता है जैसे एक साजिश हो रही है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर सामने वाले व्यक्ति आपके साथ हल्के मूड में बात करें तो उनकी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को थोड़ा कंडीशन करने की, दिमाग को थोड़ा कंडीशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक एटमोसफेयर में बहुत स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपको फिर टारगेट किया जाएगा। अगर आप हल्के में लेते हैं और अगर दिल पे कोई बात आती है तो उसे बात कर सकते हैं सीधा, ये ज़रूरी है। वैसे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन से जूझते हैं और काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। अब फोकस ना कर पाना, हमेशा किसी पर भरोसा ना कर पाना, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान लेना, नेगेटिव थॉट्स आनी, बड़ा मुश्किल पैदा हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ऐसे लक्षण बार बार महसूस हो रहे हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने लगते हैं और तुरंत एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो ज़रूरी है कि आपने पूरे दिन को ख़राब ना करें या फिर आप काम ही नहीं कर पा रहे, अगर तो फ़ायदा क्या है। अगर इस का इलाज सही समय पर हो जाए तो फिर नॉर्मल रहती है ज़िंदगी, नहीं तो मुश्किलें पैदा होती जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई आपके अगेंस्ट है। इसलिए अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझाइए कि ये नॉर्मल सी बात है। आजकल के ज़माने में किसी को टीज़ कर देना, कुछ कह देना, एक ग्रुप में हर कोई अपने अपने स्टाइल में जीता है ना। लेकिन ज़्यादा सीरियसली अगर सोचेंगे तो लगेगा कि ये ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मैं तो जाना चाहता हूँ कहीं, ये पता नहीं कहाँ भाग के ले जा रही है।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

चलिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है कि अभी इस घंटे के अंदर एक और गाना चले, उसके बाद सीधा मिलते हैं 10 बजे के समाचारों की ओर। बट डोंट फॉरगेट आरएम टू आपके साथ हमेशा, जहां भी जाएंगे, जो भी सफर हो, जो भी जर्नी, म्यूजिक साथ तो कोई फिक्र नहीं। जल्दी वापस इस मॉर्निंग शो

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
4: Feel the Musty.
5: Well, good morning, time check. Exactly 10 a.m. सुनिए मैं आशनों से मिलते हैं जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार
6: सभी सुनने वालों को. नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार. स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये खबर, देश में एमपॉक्स के इस संदिग्ध मामले का पता चला है. मरीज को एसएसआरएन अस्पताल में आइसोलेशन पर रखा गया है. 64 साल का ये मरीज विदेशी है. सैंपल्स लिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी में टेस्ट के बाद पता चल पाएगा कि एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी पाई जा रही है या नहीं. स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फासिल कुदाबक्कस के अनुसार आज दोपहर बाद तक नतीजे मिल जाएंगे. करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर 3 और पेपर 12 दोबारा देने होंगे. ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर बाद 1:30 बजे उनके अपनी कॉलेज में आयोजित की जाएंगी. इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दे दी थी. हालांकि बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्रों के लीक होने की घोषणा की. एमईएस की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को इस के बारे में पूर्व सूचना दे दी गई है. एमईएस के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इन परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा. फिर भी पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं होगी. इस प्रश्न पत्र के लिए सीआईई ने बताया कि संबंधित उम्मीदवारों को असेस्ड मार्क्स प्रदान किए जाएंगे. मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन द्वारा कल एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया. कई घोषणाएं की गई. 21 जून को सुबह 9:30 बजे सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजा की जाएगी. इसके अलावा 29 जुलाई से अयोध्या रामायण प्रतियोगिता शुरू हो रही है जिसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है. 7 प्रतियोगिताएं होंगी जिनमें नौजवान और मंदिर की मंडलियां भाग लेंगी. इस प्रेस सम्मेलन के दौरान अगले साल के हिंदू कैलेंडर की तैयारियों पर जानकारियां दी गईं जो अगले 3 महीनों में तैयार हो जाएगा. गंगा तालाब में स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के लिए एमएससीटीएफ द्वारा विशेष निर्देशों की एक सूची भी बनाई जा रही है.

0: विदेश की खबरों में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिससे ईरान में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चलाने से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके। फरवरी में शुरू इस युद्ध के खिलाफ आखिरकार 208 के मुकाबले 215 वोटों के साथ ये बिल पारित हो पा रहा है। फिर भी इसके अमल में लाए जाने पर अभी भी आशंका जताई जा रही है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शुमे रोजलीन कासिमे 73 साल की 73 years old की श्रीमती विद्वंती हरिचंद पैदाशी नाम मोंगा और जो शोभा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी हरिचंद के मकान उनके पति सुभाष हरिचंद के मकान शुमे रोजलीन काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन काशी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। रामनारायण रोड कोतेज में 75 साल की 75 years old की श्रीमती बसंती रामचंद पैदाशी नाम चमन और जो सुनीति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे रामनारायण रोड को तेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:11 AM। रारो रोसपेल में 55 साल के 55 years old के श्री प्रदुमन सिंह सिवलाल जो विकास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान रॉयल रोड रोसपेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: वेलकम टू सेकंड आवर 10 बजकर 8 मिनट रेडियो मस्ती पर मस्त मॉर्निंग शो कमाल का मिक्स ऑफ म्यूजिक एंड गेट्स यू इन द मूड। चलिए इस घंटे में भी हम कहीं जाएंगे बाहर और जानेंगे क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी वीक के अंदर, वहीं पर वहां जानेंगे कि क्या हो रहा है आपके साइड पर भी ऑन 5491294 आपके मैसेजेस और साथ में कुछ हाउस होल्ड डेको टिप्स। साथ रहिए क्योंकि चलता है प्रोग्राम टिल 12।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: बॉलीवुड में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, कभी कॉन्ट्रोवर्सीज और कभी लिंकअप, कभी ब्रेकअप। सुनने में आ रहा है कि आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ शादी करने की फुली पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। वहीं पर सुनने में आ रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बड़ी, 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने एक ना सुनी, चलेगा मुकदमा। और वहीं पर रणवीर सिंह को राहत की सांस, लगता है अब वो काम कर पाएंगे और अब एसोसिएशन बात करेगी, किसी का कोई भी हर्जाना नहीं भुगतना होगा या फिर किसी को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। थिंग्स शुड बी फाइनली सेटल, आराम से प्यार मोहब्बत से बैठकर आराम से, क्यों नहीं। वहीं पर मुकेश अंबानी ने की 3000 करोड़ धुरंधर की तारीफ, कहते हैं कमाल कर दिया, वाह क्या बात है। बड़े बड़े दिग्गज पूरी प्लानिंग के साथ आ चुके हैं। चलिए हम बात करेंगे, रणवीर सिंह पर लगा बैन, अब डॉन 3 का विवाद और साथ साथ में अब क्या होने वाला है व्हेन इट कम्स टू द कमिंग मूवीज, अपकमिंग मूवीज, ये सब होगा थोड़ी देर में। अभी के साथ जुड़े रहिए। बढ़िया, ऐसे अगर बात करें हैं जवानी तो इश्क होना है, हम बात कर रहे हैं वरुण धवन, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि बस वो डांस कर रहे हैं, गोविंदा का स्टाइल अपना रहे, लेकिन कुछ नया अभी आना अभी बाकी है। आप क्या कहते हैं? 549-1294 पर।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: Oi, MC. Where's the band?

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जिंदगी बहुत ही स्पीड में आ चुकी है, तेज रफ्तार की जिंदगी और तनाव स्ट्रेस एक नॉर्मल सी सिचुएशन बन चुकी है हर किसी के लिए। नौकरी का दबाव हो या फिर फाइनेंशियल कोई परेशानी हो, पारिवारिक जिम्मेदारी या फिर सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव मानसिक शांति को प्रभावित इफेक्ट करता ही है। थोड़े समय का तनाव कभी कभी हो जाता है, लेकिन लगातार बना रहे तो बहुत सारी मुश्किलें, गंभीर इशूज पैदा कर सकता है। जैसे कहते हैं कि शुरुआत में एंजाइटी या चिड़चिड़ापन के रूप में दिखता है, उसके बाद डिप्रेशन, नींद की समस्या और ध्यान अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कठिनाइयां सामने आने लगती हैं। डिसीजन लेना या फिर अपने आप को फोकस रखना बहुत ही मुश्किल होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती। वैसे आपको बताएं कि अगर स्ट्रेस लेंगे तो फिर हार्ट पर भी असर पड़ता है, घबराहट महसूस हो सकती है, इस दौरान हार्ट तेजी से पंप होने लगता है जो हार्ट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। अब सोचिए, हम खुद ही पैदा कर रहे हैं ये जितना स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर हम ही पैदा करते जा रहे हैं और अपने आप को इतना डैमेज पहुंचाते जा रहे हैं। मांसपेशियों में तनाव और दर्द भी हो सकता है जी, अगर लंबे समय तक स्ट्रेस रहे तो ऐसा हो सकता है। डाइजेशन पर असर पड़ता है, वजन बढ़ सकता है, इसलिए आप स्ट्रेस में खाना पीना शुरू करते हैं, उसके बाद पता ही नहीं कितना खा गए, क्या हो गया। लेकिन अगर आराम से सोचें, ठंडे दिमाग से, कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में और कुछ नहीं। अगर एक रिजल्ट तक पहुंच चुकी है उसको एक्सेप्ट कर लेना वो ठीक है, अगर कुछ कर सकते हैं तो करते रहिए, लेकिन अपने आप को इतना अफेक्ट मत कीजिए। और वहीं पर कोई तो होना चाहिए जो आपको बता पाए कि सिचुएशन ऐसी है, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, कोई एक्सपर्ट एडवाइस या फिर कोई ऐसा जो कि आपको थोड़ा गाइड कर सके, क्यों नहीं। लेकिन सब कुछ कूल, ठंडे दिमाग से। आप परेशान होंगे तो मत भूलिए, आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे। मुस्कुराइए, जिंदगी मुस्कुराएगी, वापस लौट कर इसी तरह आएगी।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: माय गॉड, व्हाट अ लवली गाना. घड़ी मिलाते चलिए 10:30 बज चुके हैं. अभी के लिए आपको ले चलती कहां, स्टूडियो से बाहर. यस, एट अ कड्डो. आज सुनो, अभी लग रहा है द साइंस वीक 2026 एंड हमारी प्यारी सी पूनम वहां पर पहुंच चुकी है. सो मोर अपडेट्स आपके साथ पूनम. विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग.
1: वेरी गुड मॉर्निंग नीतू, कैसे हो भाई?
0: आई एम डूइंग गुड. बताए वहां पर, आप तो रोज जा रही है वहां पर, तो लेट मी नो हमारे जितने भी अभी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं वहां पर, और क्या अपडेट्स आप पहुंचा सकते हैं उन तक.
1: बिल्कुल, बहुत सारे अपडेट्स मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुद्दूर से. और यहाँ पे नेशनल साइंस वीक 2026 चल रहा है, और सच कह रही हूँ नीतू, यहाँ पर जो घूमते हुए हमें एक एक कदम पर ना बहुत कुछ देखने को मिल रहा है. और यहाँ पर जब अभी कल से यहाँ पे इन्होंने ब्लड प्रेशर चेकिंग कर रहे हैं, डायबिटीज चेक कर रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ब्लड डोनेशन भी अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रखना है वो बता रहे हैं. साथ में मैं अगर थोड़ा सा आगे चलती हूँ ना, तो बता रहे हैं कि अगर इमरजेंसी घर में हो जाए, ओल्ड पेरेंट्स होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं, हमारी हेल्थ थोड़ी सी अगर अप एंड डाउन होती है, तो आपको CPR की ट्रेनिंग कैसे देनी है, ये आपको इमरजेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. अगर वहाँ छोटा बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि नाक में बच्चे कुछ डाल लेते हैं या कान में कुछ डाल लेते हैं या अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं, वो लोग भी बता रहे हैं कि इमरजेंसी में आपको क्या क्या करना चाहिए. और साथ में फायर सर्विसेज कह लो या पुलिस फोर्स कह लो, उसके साथ में यहाँ पर हेलीकॉप्टर के भी जो लोग हैं यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर आप सी में जाते हैं, अगर स्विमिंग कर रहे होते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई वेल आ जाए या किसी भी तरह की कोई भी घटना घट जाती है, तो आपको कैसे बाहर निकाला जाता है, आपको कैसे बाहर उस सिचुएशन में बाहर आना है. और आपको सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं. चाहे आपको लिफ्ट कैसे करना है बॉडी, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ बच्चे हैं या कुछ भी तरह की सिचुएशन घट जाती है,

0: आती है, तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि साइंस पहले हमारे दिमाग में हमेशा होता था कि साइंस वाला ही जो बच्चा है जिसने पढ़ी है बायो फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो वो ही साइंस में आगे ग्रो कर सकता है या MBBS कर सकता है, यहाँ डॉक्टर बन सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर किसी चीज़ में, हर एक फील्ड के अंदर साइंस इन्वॉल्व हो चुकी है। मतलब आने वाला जो फ्यूचर है ना नीतू, वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड, मतलब आपको चाहे ना चाहे, बट वो इतने प्यार से समझा रहे हैं कि एग्जीबिटर्स इतने प्यार से समझा रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई साइंस पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जो साइंस का मैथ होता है, ये मैंने बड़ा एक प्यारा सा वर्ड सीखा कि जो साइंस का मैथ होता है, अगर वो समझ आ जाए तो आपको साइंस और मैथ में इंटरेस्ट आ जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़, बहुत प्यारी चीज़ समझने में आई, क्योंकि हमें बताया जाता है भाई साइंस अलग है मैथ्स अलग है, बट यहाँ पर बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। उसके साथ में आपको, अगर आपको अपनी बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन में अगर आपको मटेरियल थोड़ा सा, मतलब अच्छा सॉलिड बट थोड़ा सा और रीजनेबल प्राइस में चाहिए, और आपको कंस्ट्रक्शन सीखनी है या किसी की बिल्डिंग बनानी है, बिजनेस में जाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। लेबोरेटरी तक सीमित साइंस नहीं रह गया, वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। चाहे आप घर के, आप माइक्रोवेव्स ले लें, आप फ्रिज ले लें, मोबाइल्स ले लें, लैपटॉप्स ले लें, तो कहाँ पर आप साइंस छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं साइंस इन्वॉल्व हो रही है, बच्चे इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आप छोटे से बच्चे को देखो, 3 साल के 2 साल के बच्चे को, उसको आराम से कोई भी एप्लीकेशन चलानी आसानी से आ जाती है। क्यों? क्योंकि शायद हमारे ब्रेन्स के अंदर साइंस काम कर चुका है, और हमारे एंसेस्टर्स ने शायद हमें सिखाया है कि भाई पढ़ाई करो, नॉलेज लो, और जब ये आप नॉलेज लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने लगती है। उसके साथ में यहाँ पर मेट्रो सेक्शन है, वहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो लिफ्ट होते हैं, जो इसके अंदर आयरन डलता है, रॉड्स डलती हैं, या किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप मेट्रो में जब जा रहे हैं तो कौन सी तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वो भी सिखाई जा रही हैं। और साथ में बता रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का चीज़ यूज़ करनी है, कोई इमरजेंसी तो है ही है, बट अगर आपको एग्रो डिपार्टमेंट से वेजिटेबल्स उगाने हैं, कोई प्लांट्स उगाने हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो किस तरीके के खाने खाने चाहिए। अगर आपको कैंसर, किसी किसी को मुश्किल आ जाती है कैंसर, तो एंटीडॉट्स भी बन रही है, जैसे मशरूम्स उगा रहे हैं, कुछ स्पेशल मशरूम्स हैं, वो सिखा रहे हैं कि आप इन चीज़ों को ले। साथ में यहाँ पे आपको अगर कोई कोर्सेज करने हैं, MBBS करना है, IT करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस यहाँ पे है, और बहुत सारे सेक्टर्स, यूनिवर्सिटी के CEOs, डीन्स और सभी फैकल्टीज यहाँ पर आई हुई हैं, और आपको बता रही हैं कि आप ये चीज़ें करो जिससे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपका फ्यूचर भी अच्छा हो, और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर बन सके। तो मैं तो यही कहूँगी कि सारों को जो भी घर पर अभी हमें सुन रहे हैं, वो घर पर ना रहें, आप यहाँ आएँ, बच्चे जैसे जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर भी एक मुझे नीतू एक लड़की, एक पेरेंट मिला, और वो कहते हैं कि मुझे था कि मैं कभी MBBS करूं, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं था, बट मैं ये चाहता हूं, आज मैं स्पेशली इसलिए आया हूं कि मेरी बेटी आगे MBBS डॉक्टर बन सके, और मेरे पास आज पैसा है। तो मैं यही सोचती हूं कि कईयों के ड्रीम्स खुद के होते हैं और वो अब अपने बच्चों में देखते हैं, और मैं यही चाहती हूं कि हर पेरेंट को इसी तरीके से अपने बच्चों का फ्यूचर सोचना चाहिए नीतू। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस समय हमारे बीच में MBC प्ले जो है बहुत ही अच्छा रोल निभा रहा है, क्योंकि हम अगर हमारे कोई प्रोग्राम्स मिस कोई कर देता है, चाहे TV पे हो चाहे रेडियो पे हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, प्ले स्टोर पे जाना है, या आपका जो भी ऐप स्टोर होता है उस पे जाना है, आपको उसमें 1.0 डाउनलोड करना है, MBC का जो हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, उसमें आप जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं, कुछ भी मिस नहीं होगा। और नीतू, मैं कहती हूँ दो में आइए, इंजॉय कीजिए और थोड़ी सी नॉलेज और गेन कीजिए। थैंक यू नीतू, आपकी तरफ।
1: थैंक यू सो मच पूनम। सो नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, देखा साइंस आजकल हमारी पूरी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में वेल प्रेजेंट है। चाहे जो भी फील्ड में आप कार्यरत हो, साइंस इज एवरीवेयर, साइंस इज लाइक ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। सो डू नॉट फॉरगेट, एट कोडो आप जा सकते हैं, वो द साइंस वीक 2026 है। थैंक यू सो मच पूनम।
2: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.
3: कुछ लोग समझते हैं जब फैशन की बात होती है तो जो दूसरे लोग पहनते हैं वो ही फैशन है. हाँ वो भी है, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल, आप अपने जो वेयर्स हैं, जो आप कपड़े पहनते हो, उसको कैसे, किस तरह से आप कैरी करते हो, किस तरह से पहनकर उसमें आप अलग से लगते हो, अलग आई मीन कंफर्टेबल, इजी फील करते हो, जो लोग आपको देखकर प्रेरित हो जाए, दैट्स ऑल्सो फैशन. देखो अभी सर्दी का मौसम है, हाँ आप अपने विंटर को एलिवेट कर सकते हैं, अपने विंटर वार्डरोब को, वो भी छोटे बजट में. इज ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर एग्जिस्टिंग लेयर्स, जो आपके कपड़े हैं, आप अपने जो स्ट्रक्चरल सिल्वेट्स हैं उनको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उनको आप स्मार्ट बना सकते हैं विद इनएक्सपेंसिव जो स्वैप्स होते हैं. तो अगर आप इन सब टैक्टिक्स को मास्टर कर जाएंगे देन यू कैन अचीव अ पॉलिश्ड हाई एंड लुक, वो भी बिना ओवर स्पेंड किए हुए. यस फैशन का मतलब ये नहीं कि बस खरीदते जाओ, लेकिन जितने भी बजट आपके हैं उसमें आप सेटिस्फाइड हो जाओ. एंड अभी के लिए हम बात करते हैं अबाउट मोनोक्रोमैटिक लुक. ये कहानी तो वेल, अगर आप एक सिंपल कलर पैलेट लाइक सब कुछ ब्लैक हो, क्रीम्स हो, बेज हो या फिर चॉकोल्स वाले जो कलर पैलेट्स हैं, ये क्रिएट करते हैं एक सीमलेस एलोंगेटेड सिल्वेट. और हमेशा कहते हैं ना कि ब्लैक जो है इसमें आप जैसे भी आपकी साइज हो उसमें आप थिन लगते हो, स्लिम लगते हो. एंड इसको आप एक जो लुक है इनक्रेडिबली आप इंटेंशनल और लग्जरियस भी बना सकते हो. जब आपकी आउटफिट जो है इट फ्लोज इन वन कलर फैमिली तो ऐसा लगता है थॉटफुली क्रिएटेड होते हैं, इवन इफ ऑल योर पीसेज आर फ्रॉम फर्स्ट फैशन. तो ये जो बातें होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, बस थोड़े से क्रिएटिविटी आपको चाहिए जो आप अपने वार्डरोब को, अपने लाइफस्टाइल में बदल सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग केयर, इस सर्दी के मौसम में कुछ मेंटेनेंस भी बहुत ही जरूरी है. द सीक्रेट टू लुकिंग एक्सपेंसिव इज लाइक आप अपने गार्मेंट्स को टॉप शेप में बना सकते हैं, शो कर सकते हैं. जो स्वेटर्स होते हैं जैसे कहते हैं ना बुलबुल हो गए हैं, तो आप इनको डी बबल कर सकते हैं एक फैब्रिक शेवर को करते हुए. जो पिलिंग एंड फर्स होते हैं जो पुराने निटवेयर्स में होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं. आप अपने कपड़ों को स्टीम कर सकते हैं सो दे होल्ड देयर क्लीन लाइंस, और फिर एंश्योर कीजिएगा कि जो डार्कर कलर्स हैं आर फ्री फ्रॉम पेट हेयर एंड डस्ट.
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरि फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
2: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हमारी तो मॉर्निंग्स एकदम मजेदार बनती ही है, लेकिन जब हमारे अपने हमारे साथ हमारे पास आ जाते हैं, जो हमेशा हमको देखते रहते हैं टीवी पर कहते हैं या फिर सुनते रहते हैं रेडियो पर, लेकिन जब सामने आते हैं तो अलग ही मजा होता है, अलग ही मस्ती होती है। और आज हमारे साथ है बॉम्बू से सेंट सोवियर सीनियर सिटीजन एसोसिएशन। सबको नमस्ते। क्या बात है, यहाँ पर मिले जुले लोग हैं। कहते ना कि हमारा जो छोटा सा मॉरिशस है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है यहाँ पर, और आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे साथ आए हैं, हमारे पास आए हैं रेडियो मस्ती की स्टूडियो में, तो हमारे साथ है मिस्टर चांद काली। मिस्टर काली नमस्ते, कैसे हैं आप? आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमेशा कहती हूँ, उम्र भले ही बचपन की हो, लेकिन दिल हमेशा बचपन का होना चाहिए। और आप सब के चेहरे को देखकर इतना अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे पर मुस्कान है। सो थैंक यू सो मच। आप हमें बताएं, जो एसोसिएशन से आप लोग आए हुए हैं, पहली बार MBC आए हैं? पहली बार हो। आप लोगों को अच्छा लगा? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप, जैसे हमने कहा, आप लोग हमें देखते रहते हैं टीवी पर, सुनते रहते हैं, लेकिन लाइव अभी बात कर रहे हैं। शायद आपके परिवार वाले, जितने भी लोग आपको जानते हैं, बॉम्बू के रहने वाले, आज कह रहे हैं हमारे लोग आए हुए हैं, क्या बात है। तो जितने भी लोग आपको अभी सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
3: मौका मिले तो बीसी को आइए।
2: जी जी जी।
3: लेकिन क्योंकि मैं हमारे ग्रुप सेंस ऑफ वेयर सीनियर सिटीजन, मैं प्रेसिडेंट, यहाँ आया है, बहुत खुश है।
2: बहुत खुश है आप आए हैं, हमको बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आप लोग हमें सुनते, अगर आप लोग ना हो तो हम भी नहीं रहेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू अ गुड डे अहेड। बंजोने आप सभी को, थैंक यू सो मच। नमस्ते।
3: विश यू।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: 10:57, 11 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार.

0: Musty.
1: Radio Musty.
0: North, South.
1: 103.5.
0: East, West.
1: 96.4.
0: Center.
1: 99.4.
2: RM2.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musty.
2: Feel the Musty.
3: दिन के 11 बजे हैं। देश विदेश की खबरें एक बार फिर आपसे आशना, नमस्कार आपको।
4: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये खबर, देश में एमपॉक्स के एक संदिग्ध मामले का पता चला है। मरीज को ससियो सागर रामगुलाम नेशनल अस्पताल में आइसोलेशन पर रखा गया है। 64 साल का ये मरीज विदेशी है। सैंपल्स लिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी में टेस्ट के बाद पता चल पाएगा कि एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर गुताबकस के अनुसार आज दोपहर बाद तक नतीजे मिल जाएंगे। अब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए ये खबर, करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर फ्री और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित यानी मैथमेटिक्स के 3 प्रश्न पत्रों के लीक होने की घोषणा की है। इस बीच मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को इस पुनर्परीक्षा के बारे में पोस्ट और मीडिया के जरिए सूचित किया गया है। एमईएस के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इन परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि उसकी परीक्षा प्रणाली की अखंडता बनी रहे और उसकी योग्यताओं को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में मान्यता मिलती रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन में लगातार अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी संदर्भ में कल लर्न एआई प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण लगा, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को तकनीक के माध्यम से नवीन समाधान विकसित करने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के अंत में ग्रेड 10 की कैटेगरी में सुडनाक SSS ने अपने स्मार्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट के साथ जीत हासिल की, जबकि ग्रेड 12 की कैटेगरी में लंदन कॉलेज ने अपनी पब्लिक सर्विस एफिशिएंसी परियोजना के साथ विशेष पहचान बनाई। विदेश में इसराइल और लिबनान एक नाजुक युद्ध विराम संधि को रिन्यू करने पर सहमत हुए। इसके तहत लिबनान के कई इलाकों में सुरक्षा स्थल कायम किए जाएंगे जहां हिजबुल्ला की सभी गतिविधियां वर्जित होंगी। दक्षिणी लिबनान पर इसराइली हमलों में 9 लोगों की मौत के बाद ये तय किया गया। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। Avenue Perruche, Mosselman-le-Maye, Meyburg में पचासी साल की 85 years old की श्रीमती सावित्री देवी पैदाशी नाम दुखी और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान Avenue Perruche, Mosselman-le-Maye, Meyburg से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो Meyburg की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM।

0: शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
5: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
3: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

प्यार है तो लाइफ है, लाइफ है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो मोहब्बत है। आपके अपने आपके डियर वंस हैं रेडियो मस्ती आपके साथ। थैंक यू सो मच। दिन के 11:10 होने वाली है। वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती। इट्स योर मॉर्निंग बीट ऑफ कोर्स, मस्ती मॉर्निंग ऑफ कोर्स आई मीन। एंड दिन के 12 बजे तक ऐसे ही साथ निभाते चलिएगा। आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294। इधर आज विजल प्यारी सी शातू बेनागस की प्यारी सी ज्योति है, आप हमारे साथ जुड़े हैं फैमिली के साथ, आशनी रेखा सुरेखा मधु परिवार एंड हमारे लिए थैंक यू। थोड़ी देर में वापस फॉर मोर अपडेट्स आपको ले चलेंगे। टिक दो

0: Welcome to RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: अभी सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय हो जाए या फिर कॉफी मिल जाए, आहा मूड बदल जाता है। लेकिन अगर कॉफी के साथ आप अपने चेहरे को एकदम ब्राइटन करना चाहते हैं, एकदम सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, हेल्दी ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, देन व्हाई नॉट, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। कॉफी पी ले सकते हो और कॉफी ट्राई भी सकते हो अपने चेहरे पर। आई मीन एक

फेस मास्क आप बना सकते हो। क्या करना है आपको, आपको चाहिए एक टीस्पून कॉफी पाउडर, जी हाँ एक टीस्पून कॉफी पाउडर, एंड टेक वन टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक, हल्दी यहाँ पर थोड़ा सा उनको आप भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिएगा तवे पर एक पैन में, सूखा है पानी बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आप रोस्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, देन कॉफ़ी के साथ मिला दीजिएगा। इसमें आप ऐड करेंगे 1 teaspoon ऑफ हनी शहद एंड 2 teaspoons ऑफ रो मिल्क कच्चा दूध। सो वंस अगेन आपको चाहिए एक फेस मास्क बनाने के लिए 1 teaspoon कॉफ़ी पाउडर, 1 tablespoon रोस्टेड हल्दी, 1 छोटी चम्मच हनी एंड 2 छोटी चम्मच रो मिल्क कच्चा मिल्क। कैसे बनाना है, एक स्मॉल बाउल में आप हल्दी और कॉफ़ी को मिक्स कर दीजिएगा, धीरे धीरे ऐड हनी शहद, देन धीरे धीरे जो रो मिल्क है कच्चा दूध है उसको आप स्लोली ऐड करते चले, आप स्टर करते चले अनटिल इट बिकम्स अ स्मूथ क्रीमी पेस्ट ना हो जाए। आप अपने चेहरे को सबसे पहले साफ कर दीजिएगा, अप्लाई इट ऑन ए क्लीन फेस, अपनी आँखों को अपने लिप्स को अवॉइड करते हुए अच्छे से आप अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट के लिए यू लीव इट ऑन, ओके रहने दीजिए। फिर आप मसाज कीजिएगा सर्कुलर मोशंस, हमेशा मैं कहती थी जब आप मसाज कर रहे हो, जब आपने जो पेस्ट है लगा लिए हैं, थोड़े से आप उंगलियों को वेट करके देन रिंस कीजिएगा, धीरे धीरे माय मसाज कीजिएगा सर्कुलर मोशंस में, पैट ड्राई एंड फिर आप मॉइस्चर कीजिएगा। ये जो पेस्ट है, जो फेस मास्क है, ट्वाइस अ वीक हफ्ते में 2 बार आप ट्राई करेंगे, यूज़ करेंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट ग्लोइंग बन जाएंगी। एंड ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट फर्स्ट अगर आप किसी प्रोडक्ट से एलर्जिक है तो, एंड डेफिनेटली पानी पीना, प्लेंटी ऑफ फूड्स वेजिटेबल्स, जो विटामिंस एंड न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब जरूरी है, एंड एक्सरसाइज इज अ मस्ट।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए साहब, अब बाहर का रुख अपनाते हैं, कहीं बाहर होके आते हैं, क्या कहते हो?
3: चलिए साहब, हम चल रहे हैं सीधे जाने को दो की तरफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां पर चल रहा है नेशनल साइंस वीक और उपस्थित हैं पूनम, जो कि सारी जानकारी देने वाली हैं, ऑर्गेनाइज बाय राजीव गांधी साइंस सेंटर। तो चलिए जानते हैं क्या हो रही हलचल है और क्या अपडेट्स है वहीं से। हेलो एक बार फिर से, गुड मॉर्निंग पूनम।
4: गुड मॉर्निंग विकास भाई, हम यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त हलचल में आपको क्या बताएं। यहाँ पर बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि आपने जैसे बताया नेशनल साइंस वीक 2026 चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सब बच्चों के साथ में विजिटर्स बहुत सारे आ चुके हैं और पेरेंट्स भी आ रहे हैं। एक्साइटमेंट तो उनकी इसलिए है क्योंकि उनको कईयों को बिजनेस सीखना है, कईयों को IT सेक्टर को देखना है, कईयों को बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी है अपने ही बच्चों के बारे में कि भाई काश वो आगे फ्यूचर उनका में हो सके, या तो उनका मतलब लगाव साइंस के साथ जुड़ सके, क्योंकि मुझे लगता है और सभी को लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर सभी

0: के लिए साइंस से रिलेटेड होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे हम बहुत सारे एक एक करके एग्जिबिटर्स के पास जा रहे हैं, काउंटर्स को देख रहे हैं, वहाँ पर जो है ना अभी जो इस टाइम हुआ तो वहाँ पे ओरल हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स दे रहे हैं कि आपको, जिससे मतलब बहुत ही छोटी चीज़ है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको टीथ कैसे ब्रश करना है, कैसे उसको दो बार मुँह को धोना है, दो बार ब्रश रात को, सुबह भी करना है और रात को भी करना है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं पर ये भी कहते हैं कि साइंस से ही रिलेटेड होती हैं, क्योंकि आपको जो अपने टीथ के लिए जो चीज़ें देखनी चाहिए, जो सिक्योर करनी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ में आयुर्वेदा के लिए भी इन्होंने बहुत प्यारा सा एक काउंटर लगाया है जहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं आयुर्वेदा में, क्योंकि बहुत लोगों को हर्बल मेडिसिन और हर्बल चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि हमें दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी है तो कुछ हर्बल बताया जाए। तो इन्होंने काउंटर लगाया हुआ है यहाँ पर, आप अपने आप को सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बना सकते, स्कॉलरशिप लेकर भी डॉक्टर्स बन सकते हैं और आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने समझाई और वो कह रहे हैं कि आप आइए, घर में मत बैठिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। एक एज में आके आप दूसरे मेडिकेशंस नहीं ले पाते तो हर्बल आपको बहुत ही सहायता देता है। उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे ईटिंग हैबिट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही कंसर्नड हैं स्टूडेंट्स और न्यू फ्यूचर के जनरेशन के बच्चों के लिए, क्योंकि UTM ने एक काउंटर लगाया और वो कह रहे हैं कि जो शुगर है कितनी हार्मफुल हो सकती है, उसके अंदर उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं। आप मतलब एक अगर आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उसके अंदर कितना कितना ग्राम चलता है शुगर, तो अगर वो ना लेके आप कुछ और लेते हैं तो उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है बच्चों को भी, ओल्ड लोगों को भी। और कई बार कई चीज़ें होती है, जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं बट हम कुछ इतनी शुगर ले लेते हैं अपनी बॉडी में सॉफ्ट ड्रिंक्स के थ्रू या किसी और चीज़ों के, तो हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ही हार्मफुल पड़ता है। तो उस चीज़ को भी वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि आप ये चीज़ें मत कीजिए। इसके साथ में यहाँ पर वो लोग, एक लेडी आई, वो कहती है कि मैं बहुत सालों से घर पर रही हूँ और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब मुझे जॉब करनी है क्योंकि मुझे अब अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा एक कोर्स बताया है। वो बता रहे हैं कि आपको सिर्फ घर में बैठकर ही ये, अगर आपको व्हाट्सअप के थ्रू या आपको यहाँ पर आके एक कोर्स कर सकते हैं 8 वीक्स का, उसमें आपको IT फंडामेंटल्स दे सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम सीख सकते हैं, जॉब अगर आपको चाहिए तो वो उसके बारे में भी बता सकते हैं। और साथ में ये जो 8 वीक्स का कोर्स है वो सिर्फ 1100 में है, मतलब सबसे चीप एंड बेस्ट। और वो बोल रहे हैं कि हम आपको 8 वीक्स में परफेक्ट कर देंगे आपके IT सेक्टर से रिलेटेड, क्या बात है। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं, उनके पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो बच्चों ने बनाई है, उसमें आप फ़ोन के पास अपनी एक्सरसाइज कीजिए और आपको वो एप्लीकेशन बता देगी कि आपने राइट की है या रॉन्ग किया और राइट वे क्या है और रॉन्ग आप क्या कर रहे हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, आप बिल्कुल घर में मत बैठिए। जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं इस टाइम, आप यहाँ पर आए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बच्चों के साथ में बच्चा बनने का भी मौका मिलेगा। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि सारे ही मिनिस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस और यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं सभी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं आप सब कहना चाहती हूँ कि हमारे जो विकास, जो ये हमारा जो MBC का जो सबसे प्यारा सा एक हमने एप्लीकेशन बनाया है, उसको आपको डाउनलोड करना है। हमारे लिसनर्स को अपने फ़ोन पे, अपने प्ले स्टोर पे जाइए, अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसका MBC प्ले 1.0 है और उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको रेडियो और TV के सभी प्रोग्राम्स आपको देखने और सुनने को मिलेंगे किसी भी टाइम किसी भी जगह पर। तो इन्जॉय कीजिए विकास आपके साथ। यस,
1: हे, थैंक यू सो मच पूनम, काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है। और इनको बिल्कुल सही कहा कि MBC प्ले 1.0 आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनी अदर ऑप्शन कि आप सारे वर्ल्ड कप के मैचेस देख पाए, रेडियो को लाइव सुन पाए और बहुत कुछ है, तो जाकर उसको डाउनलोड कीजिए। भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का आना जाना है, लेकिन उसके बारे में हमको भी बताना है कि चल रहा है नेशनल साइंस वीक राजीव गांधी साइंस सेंटर द्वारा एट कोदो।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: वैसे बता दें कि यू हैव ऑल द रीजंस टू बी देयर. हम जाने वाले हैं ब्लू बे पब्लिक बीच पर और वहां पर फुल ऑन मस्ती होने वाली. चलिए जान लेते हैं कि हो क्या रहा है.
1: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन
0: लेकर आ रहे हैं आपके लिए
2: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल. This Saturday, 6th of June, from 1 p.m. to 4 p.m. at Blue Bay Public Beach.
0: Music, games, gifts, full-on musti, full-on entertainment.
2: Live performances, music, games, gifts, aur bahut kuch.
0: So save the date.
3: Milie hamari artist ke saath aur saath mein hamari artist Kunal Hirilal. Warren Perman.
4: Dum dum diga diga.
3: और साथ होंगे डांस इन द सिटी.
2: फुल ऑन मस्ती एंड मनोरंजन दिस सैटरडे 6th ऑफ जून फ्रॉम 1 p.m. टू 4 p.m. एट ब्लू बे पब्लिक बीच.

0: बिल्कुल सॉन्ग और अभी नाम पुकारने का वक्त हो चुका है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे ही फिल्मी एटमॉस्फेयर के अंदर अपने फेवरेट सॉन्ग्स के साथ जुड़ जाएं, और कैसा फील हो रहा है हमें जरूर बताएं। और अभी फोरसाइट बॉयज से आ गए हैं प्रेमा, साथ में है भामिनी, विराज एंड ओजस्वी। गानों का मजा लेते लेते और काम करते करते, टाइम फॉर ब्रेक, एंजॉय गाइस।
1: Oh my god, devine qui est retour chez McDonald's.
2: Hé, hey, calme-toi un peu, on connaît qui chez McDonald's?
1: Le spicy paneer burger. Tu te rappelles comment il était spicy?
2: Ah oui, je me rappelle, j'en pleure encore.
1: Mais là, il est revenu, mais en édition limitée et avec une nouvelle sauce tandoori 100% végétarien. Faut qu'on aille goûter maintenant.
2: Le spicy paneer burger est de retour chez McDonald's, avec un twist qui va vous surprendre. À tester avant qu'il ne disparaisse. McDonald's, pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
3: RM2 Radio Musty.

देखिए ये आ गई बहुत ही पास, अब जा रहा है विकास क्योंकि अब फिर से वापस लौट कर आना ही है। एंड अप नेक्स्ट इज गोना बी रेट्रो रिदम, यानी कि कुछ कमाल के गाने, कहीं प्यारी ना हो जाए।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: Time check, it's noon.
3: RM2 Radio Musti.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
4: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2
0: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
6: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
8: मरीज को शिव सागर राम गुलाम नेशनल अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है. 64 साल का मरीज विदेशी है. सैंपल्स लिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी में टेस्ट के बाद पता चल पाएगा कि एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी पाई जा रही है या नहीं. स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फाजिल कुतुबकस के अनुसार आज दोपहर बाद तक नतीजे प्राप्त होंगे. अब विद्यार्थियों के लिए ये खबर. करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर थ्री और पेपर 12 दोबारा देने होंगे. ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून के लिए दोपहर 1:30 बजे उनके अपने कॉलेज में आयोजित की जाएंगी. इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएँ 29 अप्रैल और 15 मई को दी थी. हालांकि बाद में कैम्ब्रिज नेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्र के लीक होने की घोषणा की. पेपर 5 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा नहीं होगी. इस प्रश्न पत्र के लिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने बताया कि संबंधित उम्मीदवारों को असेस्ड मार्क्स प्रदान किए जाएंगे. भरी हुई वेटिंग रूम्स, दबाव में काम करते नर्सिंग स्टाफ और कभी कभी ऐसे मरीज जो खफा और नाराज हैं, ये दृश्य आज स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती का उजागर करते हैं. नर्सिंग एसोसिएशन के अनुसार नर्स की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक है. एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ की कमी सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल को प्रभावित करती है और अस्पताल में प्रतीक्षा समय बढ़ा देती है. उनके अनुसार इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भी कमी है. वे स्वास्थ्य मंत्रालय से ठोस कदम उठाने की अपील कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यस्थिति में सुधार हो सके और मरीजों को बेहतर सेवाएं भी मिले. विदेश की खबरों में ईरान और हिजबुल्ला को लेकर ये खबर सामने आई है. इसराइल और लिबनान एक नाजुक युद्ध विराम संधि को रिन्यू करने के लिए सहमत हुए हैं. इसके तहत लिबनान के कई इलाकों में सुरक्षा स्थल कायम किए जाएंगे जहां हिजबुल्ला की सभी गतिविधियां वर्जित होंगी. दक्षिणी लिबनान पर इसराइली हमलों में 9 लोगों की मौत के बाद ये तय किया गया. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. रारोड रुस्पेल में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्डर के श्री प्रदुमन सिंह सिवलाल जो विकास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान रारोड रुस्पेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुडे 2 PM नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल में 77 साल की 77

0: 7 years old की श्रीमती धनवंती रामचरण, श्रीमती धनवंती रामचरण पैराशी नाम पैम और जो रेखा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रजनीश और अविनाश रामचरण के मकान नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। Avenue Perruchemont seulement Le Maï Mayberg में Avenue Perruchemont seulement Le Maï Mayberg में 85 साल की 85 years old की श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती सावित्री देवी पैदाशी नाम दुखी और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान एवेन्यू पेरुचेमोंट सेलमोंट ले माई मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रिविया डे क्रेओल मेबर्ग में, रिविया डे क्रेओल मेबर्ग में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री बिसुनदत्त रामसन, श्री बिसुनदत्त रामसन जो कोलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान, उनके रिश्तेदार के मकान शांति रामसन के मकान रिविया डे क्रेओल मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musty.

Retro Rhythm. My dear lovely listeners, check your time studio ki ghari mein exactly 12:13 ho chuke hain. Yes, Ganesh on the mic saath dene ke liye in your retro rhythm. Thursday, 4th of June 2026. Jihan dosto. So, a very good afternoon to all of you. Namaskar aur hamara pranam. Swikar kar lijiye. Jihan, ekdam dil se swagat hai aap sabhi logon ka on Radio Masti ke sabse nostalgic aur evergreen musical safar mein jiska naam hai your retro rhythm. और अगले एक एक्चुअली दो घंटे ही चलेंगे ही आपको भी लेके जाएंगे उन हसीन वादियों की गलियों में जहां हर धुन में मोहब्बत थी, हर लफ्ज में जज्बात और हर गाना दिल को छू जाता था दोस्त. तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त म्यूजिकल जर्नी के लिए जहां बजेंगे 70s, 80s और 90s के सुपरहिट बॉलीवुड क्लासिक्स. वो गीत जो आज भी हर जनरेशन के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए है. कहीं होगा किशोरदा का जादू तो कहीं लता जी की मधुर आवाज, कहीं रफी साहब के नगमे और कहीं आशा जी की मस्त अदाएं. बिल्कुल जी, हर गाना लेकर आएगा एक नई याद, एक नया एहसास और ढेर सारी मुस्कुराहटें. तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और लंच टाइम है. इफ यू हैविंग योर लंच देन बोन अपेटाइट. खाना खाते खाते हमारा साथ बस यूं ही देते रहना ऑन रेडियो मस्ती का ये स्पेशल शो योर रेट्रो रिदम, जहां हर सुर है गोल्डन और हर पल मेमोरेबल. 5499124 पर स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस.

0: Retro Rhythm.
1: That was such a beautiful and mesmerizing track, especially for you, my dear and lovely listeners on RNT Radio Mastijia. Lata Mangeshkar aur Manna Deki ki aawazon mein. Ji haan, filhal ke liye chaliye ji. Let's check it out. Your dedications, kisne kisko yaad kiya hai? And well, I've got lovely, lovely messages. Aur abhi ke liye agla gana jo hai, hum dedicate karna chahenge for you, Abdul ji and Saira Banu ji. Ji haan, aap log saath de rahe ho. Hamara bhi pyar bhara salam aapta dono ko. And keep on enjoying the show. So the next one aapke liye hum dedicate karenge. And agla gana Bobu ke Dhaneshwar ji ke liye, unki pyari patni Sunita, Rekha, Sanjeev. We do have Nisha and Dave bhi saath de rahe hai. Aur saath mein Meena, Rishi from Devdos and Sanichar family. And thank you ji, aap log saath de rahe hai. Aapka bahut bahut shukriya. Hey my sister, haan ji, bahut hi pyara selections hai. Aur badwag bidesi ji tayak se, koi bhi romantic gana agar ho jaye, unki स्वीटहार्ट यानी मीठा दिल अनुषा के लिए जो मौताबा की रहने वाली हैं एंड ललिता जी टंजी लंच टाइम है राइट नाउ सो आप खाना खा रहे हो सो बोना पिची आई डोंट नो अभी ये घर पे हो काम पे हो कहाँ से आप हमारा साथ दे रहे हो तो बस अगला गाना आपके लिए और सभी सुनने वालों के नाम 5499912 94 यस 5499124 पर आप इस नंबर पर अपने मैसेजेस अपने डेडिकेशन हमें लिख के भेज सकते हो थोड़ी देर बाद द शो इज गोइंग टू बी लाइव ऑन टिकटॉक और एंटू रेडियो मस्ती अगर अब तक फॉलो नहीं किया हमारे इस पेज को तो डू फॉलो इट एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी नोटिफाइड जैसे हम लाइव आएंगे
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती

0: सलीमा रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन
1: लेकर आ रहे हैं आपके लिए
2: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल This Saturday, 6th of June, from 1 p.m. to 4 p.m. at Blue Bay Public Beach.
1: Music, games, gifts, full-on musti, full-on entertainment.
2: Live performances, music, games, gifts, aur bahut kuch.
1: So save the date.
3: Milie hamari aajis ke saath aur saath mein hamari artist Kunal Hirilal. Wagan pe amal.
4: Dum dum diga diga.
3: और साथ होंगे डांस इन द सिटी
2: फुल ऑन मस्ती एंड मनोरंजन दिस सैटरडे 6th ऑफ जून फ्रॉम 1 p.m. टू 4 p.m. एट ब्लू बे पब्लिक बीच

Retro Rhythm. खूबसूरत लवली लवली गाने लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए माइटी एंड लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं. जस्ट टू रिमाइंड यू द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक और ऑन टू रेडियो मस्ती वेयर यू कैन वॉच द रियल मस्ती एंड यू कैन वॉच द शो लाइव. है जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे गिने चुने ये गाने हम लेकर आए हैं, ऐसे ही सुपरहिट और दिल को छू लेने वाले गाने लेकर हम लगातार आपके साथ हैं रेट्रो रिदम में. वैसे अगर आप भी किसी खास गाने को सुनकर अपनी पुरानी यादों में खो गई हैं तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अभी तो म्यूजिकल सफर शुरू हुआ है और जारी रहेगा 2 बजे तक. अगला गाना भी बॉलीवुड के उन सुनहरे दौरों से हैं जब मेलोडी सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, महसूस किए जाते थे. तो लीजिए एंजॉय कीजिए एक और एवरग्रीन क्लासिक और सिर्फ रेडियो मस्ती पर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एवरी आफ्टरनून इन योर रेट्रो रिदम, जहां यादें भी गाती हैं और आपके दिल भी. तो अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू माय डियर करू. आप फोन करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ ऑन व्हाट्सएप, लेकिन अगला गाना आपके नाम. एंड चलिए जी, ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली किसी ने लिखा है, यानी कि चेतन मानसुक जो बाबू के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता है, कभी कभी छोड़ देना भी होता है. जब सामने वाले की खुशी हो अपना दर्द भी छुपाना होता है. एंड आकाश आई डू अग्री विद यू, सो द नेक्स्ट वन गोज़ आउट टू यू. कमला फ्रॉम Catrabone, एक गाना हो जाए स्पेशली तनवीर तेजल एंड वी डू हैव आयशा के लिए, रायन रैना और वनीशा एंड वी हैव एज वेल वर्षा एंड अनिष्ठा नवीन अश्विन तारश गंगा बिसुन फैमिली के लिए ये अगला गाना. And to all those who are watching us live on TikTok, we have Yale Sham, Mohini and Shard Lucknow Taji, Yaglaganakili, Ali Maduman, Avina.

0: You're listening to Radio Masti Retro Rhythm.
1: अनुराधापुर वारा और बबला मेहता की आवाज़ों में, जी हाँ, तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है, टेकन फ्रॉम द मूवी दिल है कि मानता नहीं। एक्चुअली इस मूवी के हर गाने बहुत ही अच्छे हैं और वैसे दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी ये गाना स्पेशली। और तू प्यार है किसी और का, प्यार, जुदाई और दिल की जज्बातों को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर किया गया था इस गाने के जरिए। एंड इसमें कुमार सानू की आवाज़ भी थे एंड अनुराधापुर वार। एंड वैसे ऐसे जब हम गाने लेकर रहते हैं ना तो ऐसे इमोशनल वाले मैसेजेस आप लोग भेजने लग जाते हैं, क्या हुआ अगर आप किसी को मिस कर रहे हो और ये गाना बज गया ना ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती, तो वो तो बोलते हैं ना कि आप बोलेंगे कि गिन्नी ने तो हमारे जख्म पे नमक छिड़क दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोचते हो, हम तो एक्चुअली अच्छे अच्छे गाने लेकर आए अकॉर्डिंग टू ऑल चॉइसेस एंड उम्मीद करते हैं दैट यू गाइस आर रियली लविंग एंड एंजॉइंग द शो। और फिलहाल के लिए 12:51 हो चुके हैं एंड वी कैन टेक यू आउटसाइड द स्टूडियो, स्टूडियो के बाहर लेके जाएंगे हम। आजी पूनम से मिलेंगे अभी, शी इज एट कुडो फॉर द नेशनल साइंस वीक 2026 व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय राजीव गांधी साइंस सेंटर। तो आइए जानते हैं वहां पे क्या चल रहा है। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू पूनम।
2: वेरी गुड आफ्टरनून गिनीशा, कैसे हो भाई?
1: बिल्कुल बढ़िया जी, आप सुनाइए।
2: सब बढ़िया यहाँ पर, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि जो नेशनल साइंस वीक 2026 चल रहा है जो कि राजीव गांधी साइंस सेंटर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे बच्चों की जो एक्साइटमेंट है और विजिटर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आराम से चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं और जो कहते हैं पेरेंट्स हैं, वो लोग भी आए हैं और यहाँ पर बच्चों का उत्साह देख रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को, तो क्योंकि कहते हैं ना कि एज के अकॉर्डिंगली बच्चों का एक्साइटमेंट होता है, तो कभी छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं तो वो इंसेक्ट्स देखना पसंद करते हैं, थोड़ी सी गेम्स ना पसंद करते हैं, रोबोट्स देखना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर रोबोट्स बहुत तरीके के हैं कि वो कैसे चलता है, आसमान में कैसे जाता है, ये सारी चीज़ों की उनका एक्साइटमेंट हो रही है। और जब थोड़े से बड़े लोग हो जाते हैं, उनको अपना फ्यूचर बस देखना होता है और समझना होता है कि भाई कहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, मैंने अपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे कौन से कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी ही यूनिवर्सिटीज़ जो कि मॉरिशस की हैं वो यहाँ पर हैं और सभी के अपने अपने एग्जिबिटर्स यहाँ पर हैं और काउंटर्स लगे हुए हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू आपकी जो आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी साइंस और टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है, उन्होंने बताया है कि भाई कैसे कैसे दिन कैसे बदलते हैं और कैसे अगर कोई बारिश आती है तो कैसा मौसम वेदर हो जाता है, तो उसके बारे में भी वो पूरी डिटेल्स बच्चों को दे रहे हैं, विजिटर्स को दे रहे हैं, और एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई भी ऐसे ही बैठ गया हो और कहीं से भी किसी को लेकर आए, नो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें हर एक चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ की डिटेल्स पता है और वो बता रहे हैं आपको कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर अभी मैंने देखा कि सोलर एनर्जी के भी एक काउंटर लगा हुआ है जहाँ पर सोलर पैनल्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपको अगर अपनी बचत करनी है अपने बिल्स के अंदर, तो अगर आपको पैनल लगाना है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सीबी की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग। मतलब यहाँ पर हर चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ बताई नहीं जाती, हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं जितना हम बता सकते हैं, बट जब खुद आप एक्सपीरियंस करते हैं देखते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। साथ में आपको यहाँ पर मैं गिनीशा बता दूँ, यहाँ आयुर्वेदिक सेंटर्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप कोर्सेज भी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप छोटे छोटे से बिज़नेस खोलना चाहते हैं, आपको अपने इस बिजनेस वर्ल्ड में आकर आपको कहीं जगह स्टैंड करना है तो आप आ सकते हैं। और पुलिस फोर्स हो, एंटी ड्रग्स स्मगलिंग यूनिट हो या फायर की हमारी यूनिट है यहाँ पर, वो सब बच्चों को एक्सप्लेन करिए, बड़ों को भी एक्सप्लेन करिए कि किसी भी तरीके के इमरजेंसी अगर आपको ज़िंदगी में फेस करनी पड़ जाती है तो आपको उस समय उस मोमेंट में कैसे बाहर निकलना है। और मैं कहती हूँ यहाँ पर ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है जो कि प्लास्टिक को मना कर रहा है कि भाई प्लास्टिक को आप मत यूज़ कीजिए, वो पॉल्यूशन को कैसे ख़राब करता है और ये हमारे सभी के लिए किस तरीके से डेंजरस हो सकता है, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि फ्यूचर स्टडीज़ और टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, बिजनेसेस और नॉलेज सभी एक ही छत के नीचे आपको मिल रहे हैं, तो बस आइए मस्ती कीजिए, साथ में सीखिए, फ्यूचर बनाइए और कॉन्फिडेंट बनिए, क्योंकि नेशनल साइंस वीक सिर्फ साइंस नहीं सिखाता, आपको ऐसी नॉलेज देता है जिससे आपकी बेस लाइन क्लियर हो जाती है, करेक्ट हो जाती है और आपका फ्यूचर जो है 70-80 साल का बहुत ही सुंदर और प्यारा बन सकता है। साइंस एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको एक ही दिन में चीज़ समझ नहीं आती, इसके लिए थोड़ा सा बचपन से ही चलना पड़ता है। अगर आप वहाँ पर करेक्ट हो गए तो आपकी पूरी लाइफ बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि MBC Play 1.0 आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या आपको किसी भी एप्लीकेशन स्टोर से, क्योंकि ये आप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव टीवी देख सकते हैं, लाइव रेडियो सुन सकते हैं और जितने भी आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स हैं जो आप मिस कर जाते हैं कि कहीं आपको जाना है और आप नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए, तो आप वहाँ जाइए, आपको सुनने का मौका मिलेगा। कहीं पर भी हम आपके साथ रहेंगे, जिस भी सिचुएशन में होंगे, तो मैं खुद दोस्त से हूँ आपके साथ गिनीशा, और मैं कहती हूँ कि आप भी आइए। जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अभी हमारे पास एक दिन और पड़ा है, आप बिल्कुल घर में मत बैठिए, लेजीनेस को भगाइए और यहाँ पर चले आइए। यस गिनीशा,
1: थैंक यू सो मच पूनम इतने सारे डिटेल्स देने के लिए। और साथ में हम याद दिलाते हैं, अगर आप चेक करना चाहेंगे पिक्चर्स के जरिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो पूनम ने बहुत सारे पिक्चर्स भेजे हैं जो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर लिया ऑन फेसबुक का जो पेज है RN2 रेडियो मस्ती ऑन फेसबुक, यू कैन चेक इट लाइव, राइट पूनम?
2: थैंक यू।
0: रेट्रो रिदम RM2

0: ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला तो बस चलता ही रहेगा कि और हमारे बीच में ऑन एंड टू रेडियो मस्ती फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम इट्स ऑलरेडी 1 PM
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
1: RM2
3: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: आइए सुनते समाचार आस्था के साथ नमस्कार
4: नमस्कार 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का आशा गुस्स मुद्दे को लेकर ओलिविए बोंकुल की लंदन यात्रा पर एक नए विवाद के केंद्र में ये आ गई है उनके प्रतिनिधि मंडल द्वारा जारी एक बयान में दावा किया गया है कि ब्रिटिश संसद परिसर में उनके साथ डराने धमकाने जैसी घटनाएं पेश आई हैं साथ ही कुछ तस्वीरों और वीडियो के जरिए ओलिविए बोंकुल की भूमिका को लेकर भ्रामक संदेश फैलाने की कोशिश का आरोप भी है हालांकि ये सभी दावे फिलहाल डेलीगेशन के बयान पर आधारित होगा वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट 19 जून को प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला है इस बीच वित्त मंत्रालय में बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज हो गई हैं आर्थिक विकास को गति देने और निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कदमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है करीब 450 मर्शन छात्रों को कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की दो परीक्षाएं दोबारा देनी होगी पेपर 3 और पेपर 12 की पुनर्परीक्षा 8 और 9 जून को संबंधित कॉलेजों में आयोजित की जाने वाली है इससे पहले ये परीक्षाएं अप्रैल और मई में हुई थी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना के बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने यह फैसला लिया मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना और कैम्ब्रिज योग्यता की वैश्विक मान्यता सुनिश्चित करना है हालांकि पेपर 5 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए पुनर्परीक्षा नहीं होगी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इस प्रश्न पत्र के लिए संबंधित छात्रों को एसएस मार्क्स देने का फैसला लिया है गंगा तालाब की आध्यात्मिक गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने 26 प्रस्ताव पेश किए हैं इनमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को याद दिलाने पर जोर दिया गया है कि ये इलाका धूम्रपान मुक्त है तथा यहाँ शराब का सेवन प्रतिबंधित है फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन ने कल प्रेस से मुलाकात की स्वास्थ्य संबंधी खबर एसएसआरएन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एम्पॉक्स का एक संदिग्ध मामला पेश आया है मरीज 64 वर्षीय विदेशी नागरिक है आवश्यक सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी परीक्षण में ये किया जा रहा है रिपोर्ट आज दोपहर बाद मिलने की उम्मीद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में ईरान में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पहली बार एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग की गई है उल्लेखनीय बात यह है कि 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सदस्यों का समर्थन किया जिससे प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 मतों से पारित हुआ हालांकि ये भी प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है और इसे प्रभावी होने के लिए सेनेट की मंजूरी भी लेनी होगी इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर रिविया डे क्रियोल मेबर्ग में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्री बिसुंदत रामसन की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल शुक्रवार 5 जून को सुबह के 11 बजे उन्हें के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमान्यों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM एवेन्यू पेरुश मोसलमों लुमाई मेबर्ग में 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री देवी की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम दुखी लोग उन्हें साबित के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।

to Radio Masti Retro Rhythm. What a beautiful song मुकेश दा और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में. मेरा प्यार भी तो है. जी हाँ, ये बाहर भी आप लोग ही हैं, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं. वैसे दोस्तों, देखा जाए ऐसे ही सुपरहिट और दिल को छू लेने वाले गीत लेकर हम लगातार आपके साथ दे रहे हैं इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है योर रेट्रो रिदम. वैसे अगर आप भी किसी खास गाने को सुनकर अपनी पुरानी यादों में खो गए हो तो आप बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहे, क्योंकि अभी तो म्यूजिकल सफ़र बाकी है. जी हाँ, रोज़ 2 बजे तक आई एम गोइंग टू बी हियर साथ देने के लिए. और अगला गाना भी बॉलीवुड के उन जो सुनहरे दौर हैं उनको हम फिर से जिंदा कर लेते हैं. जी हाँ, जैसे कि हमने कहा कि 70s, 80s और 90s के अनमोल नगमे नॉनस्टॉप चलता ही रहता है इस 2 घंटे की सफ़र में आपके और हमारे बीच में. और 5499-1294 पर वैसे भी आप अपने दिल की बात लिख के हमें भेज सकते हो. कोई ऐसा गाना है जो दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, कोई ऐसा गाना है जिसके बहुत ही ज़ोरों की याद दिलाती है, कुछ ऐसे यादें जो दिल के कोने में आपने दबा के रखा है. गुस्ताखी माफ़, हमेशा की तरह हम कहते हैं कि मीठी मीठी यादें जो आपने सजा के रखे हैं उसको छेड़ने के लिए हमें आप माफ़ कर दीजिए. लेकिन कभी कभी यादों को दोबारा अगर आप जी सकते हो इन खूबसूरत नगमों के ज़रिए तो इसमें बात ही क्या होगी. तो चलिए, अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे खासकर उन तमाम सुनने वालों के नाम जो जब मूवी गुप्त रिलीज हुई थी आप उनके सारे गाने के दीवाने थे. सो हियर वी गो, दिस वन गोज़ आउट टू यू.

0: avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui est disponible au MBC Play à partir de 5 ans pour 300 roupies. Et coupez pour sa package là, 6 cents c'est le fois. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
1: Retro Rhythm.
2: I really hope that you guys are really loving and enjoying this beautiful and mesmerizing गाने जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए. 1:36 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में अंदर. It's me कि निशान तो माइक साथ देने के लिए. To all those जो अभी काम पे हैं, कोहाश to you my dear. To all those जो घर के कामकाज करके आराम फरमा रहे हैं. So my yeah, lovely people, my lovely listeners, music lovers out there, thank you so so much साथ निभाने के लिए. And retro rhythm में चलिए जी, I've got your dedications और अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे सलीम के लिए. कविनन लीला नरवेश जो एबन में काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठे बैठे ये रेट्रो रिदम का आप मजा ले रहे हैं. थैंक यू सो मच सलीम, कवीन एंड लीला नरेश. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल आप लोगों के लिए. और 5499-1294 पर आई हैव गॉट योर डेडिकेशंस. मेरी बेटी क्रीटी की उनका जन्मदिन है. हे क्रीटी, हाउ आर यू, हैप्पी बर्थडे. सो बेस्ट विशेस टू यू माय डियर. एंड मनीषा हैं लस्कला से जिन्होंने भेजा है ये प्यारा सा मैसेज आपके लिए. आशा जानू फ्रॉम कॉटेज एंजॉयिंग एवरी गाने. सुपर वेदर और सुपर गाने भी चल रहे हैं. विशिंग एवरीवन अ ग्रेट डे. एंड आकी मामा कुमारी नेफ्यूज शुभम ऋषभ दीदी आरती जीजू राज और ऑल जानू परिवार के लिए. एंड जय सिया राम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गाने के लिए. थैंक यू सो मच, आप एंजॉय कर रहे हो. कृष्णी फ्रॉम कॉफोखो से बिल्कुल जी. और अगला गाना वी डू हैव रेशमा राम की सुनने भेजा है. एक गाने की मांग की है स्वीट डॉटर्स मिश्ती हिमाक्षी और हस्बैंड आशीष के लिए. एंड दैट्स रेशमा फ्रॉम सल्फेरिनो वाक्वा से. एंड चलिए जी वी हैव अनीता जी फ्रॉम फिकॉन फ्लैक वो भी ये डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना उनकी जो बहनें हैं शोभा अनुराधा लक्ष्मी के लिए, सभी रेडियो मस्त टीम के लिए और सभी लोगों को विश करना चाहेंगे हैप्पी थर्सडे आपको भी माय डियर. एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन स्पेशली डेडिकेट करना चाहेंगे प्रिया ऑफ क्यूपिप के लिए फ्रॉम आपके फ्रेंड सचिन की तरफ से. तो चलिए 1995 से लिया गया ये खूबसूरत सा गाना हम लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में. टेकन फ्रॉम द मूवी बरसात. बिल्कुल जी, सच अ लवली सॉन्ग. और इस मूवी से बॉबी डियोल ने अपना डेब्यू भी किया था विद ट्विंकल खन्ना एज एन एडल्ट रोल. बॉबी डियोल ने यह काम किया था इस मूवी में सुपरहिट रोमांस मूवी बरसात जिनसे उनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू. तो चलिए जी, अगर आप बॉबी डियोल के बहुत ही बड़े फैन हैं सो आई गेस यू गोना लव दिस वन. एंजॉय कीजिए हमारी तरफ से. यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन
3: RM2 रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन
1: लेकर आ रहे हैं आपके लिए
2: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल This Saturday, 6th of June, from 1 p.m. to 4 p.m. at Blue Bay Public Beach.
1: Music, games, gifts, full-on musti, full-on entertainment.
2: Live performances, music, games, gifts, aur bahut kuch.
1: So save the date.
3: Milie hamari artist ke saath aur saath mein hamari artist Kunal Hirilal.

0: amar sangue. Warren Perman. Dam dam diga diga, mosam diga diga, dam dam diga diga. Aur saath honge Dance in the City. Full on musti and manoranjan this Saturday, 6th of June, from 1 p.m. to 4 p.m. at Blue Bay Public Beach.
1: Retro Rhythm.
0: भूलिएगा मत टू सेव द डेट दिस सैटरडे बिल्कुल एट ब्लू बे पब्लिक बीच आप हम सबसे मिल सकते हो दैट इज गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ गेम्स एंड यू कैन बी लकी विनर्स एंड विन सो मेनी गिफ्ट्स सो प्लीज इट्स एन ओकेजन नॉट टू मिस एंड डू कम एंड मीट अस राइट देयर विल बी वेटिंग फॉर यू एट ब्लू बे दिस सैटरडे और मदर्स डे तो वैसे ही देखा जाए हम रोज तो सेलिब्रेट करते हैं वी डू सेलिब्रेट विव मॉमी एवरी डे सो इट्स गोना बी अ स्पेशल डे विव ऑल योर मॉमीज आप उनको लेकर आइएगा जरूर और मम्मा को बहुत सारे गिफ्ट भी मिल सकते on this Saturday. तो चलिए जी 5491294 पर I've got your dedications. 1:51 हो चुके हैं गिनेश ऑन द माइक और मिस्टर डे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव ही इज ऑलवेज ट्यून्ड. थैंक यू सो मच मिस्टर डे फ्रॉम पेरिस. ये अगला गाना जो है आपकी वाइफ के लिए आप डेडिकेट करना पसंद करोगे. थैंक यू सो मच. हे गार्डनिंग दिस मॉर्निंग नाउ ऑन रेस्ट. ओके थक गए हो ना पता है लेकिन जब गाने ऐसे बजते हैं ना ऑन रेडियो मस्ती तो सारी थकावट दूर भाग जाती है और यही कहते हैं रिटायर होने का मजा ले लो. यस मिस्टर सतीश फ्रॉम रॉसबेल थैंक यू सो मच. एक्चुअली अभी तो आप जवान हो गए हो. यू आर हैविंग सो मच टाइम टू स्पेंड विद योरसेल्फ. अभी किसने बोला है कि आप रिटायर हो गए हो और ओल्ड हो गए हो. नहीं जी अभी तो आपके बोलते हैं ना एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 60. सो अभी तो आप जवान हो मेरी जान. हे थर्सडे ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू. सिलेक्शन एकदम झुकास है. प्रकाशवती हे कैसे हो आप फ्रॉम बेल्जियम. थैंक यू सो मच सात समुंदर पार से आप हमेशा साथ देते रहते हो. और किसी ने लिखा है जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए मुझे तुम्हें तुम्हारी याद आ गई. बेस्ट विशेस कमला रीता वीना ब्रिंदा शारदा रेखा भाई जो है मुकेश प्रदीप सूरज राज एंड दुबा फैमिली के लिए ये अगला गाना. मनीष अमर राजा बानी जिसिक फैमिली वाव कुबलाल फैमिली एंड यू गाइस आर फ्रॉम रिविया जोहप एंड टू ऑल दोस हु आर वर्किंग राइट नाउ कुराज टू यू एंड आई हैव गॉट योर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप स्पेशली टेकन फ्रॉम द मूवी बॉम्बे जो 1994 में रिलीज हुई थी. तो चलिए बस इतना कहूंगी सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वन.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती रेडियो मस्ती
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से आपको नमस्कार
6: नमस्कार 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का करीब 450 मोशन छात्रों को कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की दो परीक्षाएं दोबारा देनी होगी पेपर 3 और पेपर 12 की पुनर्परीक्षा 8 और 9 जून को संबंधित कॉलेजों में आयोजित की जाने वाली है इससे पहले ये परीक्षाएं अप्रैल और मई में हुई थी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना के बाद कैम्ब्रिज इंटरनल एजुकेशन ने यह फैसला लिया मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना और कैम्ब्रिज योग्यता की वैश्विक मान्यता सुनिश्चित करना है गंगा तालाब की आध्यात्मिक गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन ने 26 सिफारिशों का प्रस्ताव रखा है इनमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ये याद दिलाने पर जोर दिया गया है कि ये इलाका धूम्रपान मुक्त है तथा यहाँ शराब का सेवन प्रतिबंधित है फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबीन ने कल आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में इन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया अब स्वास्थ्य की खबर एसएसआरएन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एमपॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आया है मरीज 64 वर्षीय विदेशी नागरिक है आवश्यक सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लेबोरेटरी में परीक्षण किया जाएगा रिपोर्ट आज दोपहर बाद तक मिलने की उम्मीद है स्वास्थ्य सेक्टर में नर्सों की कमी एक बार फिर चर्चा में है नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की देखभाल और सेवाओं की किस्म प्रभावित हो रही है संगठन के अनुसार इस स्थिति से प्रतीक्षा समय बढ़ रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों की कमी का भी उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय से ठोस कदम उठाने की अपील की गई है इसराइल और लेबानन ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता दौर के बाद अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों की मौजूदगी पर रोक होगी और नियंत्रण केवल लेबनीज आर्म फोर्सेस के पास रहेगा ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब हिजबुल्ला सभी हमले पूरी तरह बंद करने और सीमा क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाए इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ती हैं शुभ समाचारों की ओर 14A सर हिलारी ब्लड रोड कैट्रोबोन में 103 साल की 103 ईयर्स ओल्ड की सुनमत दसोई की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम गोकुल लोग उन्हें सुगिन के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी शनिवार को 12:30 बजे उन्हीं के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थौमा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन ऑन सैटरडे 6 जून एट 12:30 नून रामगुलाम रोड गोकुला में 37 साल की 37 ईयर्स ओल्ड के दीपक गुलाम की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें ऑनल के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे उन्हीं के मकान गोकुला से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: More music in the mix.
7: Aaj Azadi hai.
8: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Mustis.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: तो वेल फ्रेंड्स, हमने तो क्या किया, हम तो बस आपका साथ निभाने आए हैं और ऐसे कुछ प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं. आफ्टर रेट्रो रिदम इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. अब कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आपके नाम, कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ करेंगे आपका एंटरटेनमेंट अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक. मैं हूं परी आपके साथ. और जैसे कि आप जानते हैं दैट मंडे टू फ्राइडे बी टाउन की खबरें आप तक हम पहुँचाते हैं हमारे इस शो में जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज. सो बातें होंगी बम्बई नगरिया की और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज की, लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे गर्मा गर्म खबरें. आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, व्हाई नॉट, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294. सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM. और वेल, जो नेक्स्ट गाना है, आजकल तो हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पुराने गाने हैं वो एक नए अंदाज में पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो फिल्म है इसमें नया अंदाज भी नहीं है, वही पुराना गाना है और बिल्कुल वही पुराना गाना आपके लिए हम पेश कर रहे हैं. भाई आजकल का ट्रेंड ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं. वेल, एंजॉय दिस वन.
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.
4: तूने क्या समझा है मुझे, आज न छोडूंगा तुझे.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: Whoa, whoa.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, यहां पर फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले रणवीर सिंह ने इस फिल्म से किनारा कर लिया, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने एक्टर पर बैन लगा दिया। हालांकि रणवीर सिंह के लीगल नोटिस भेजने के बाद FWIC ने यह बैन हटा दिया और इस मामले में रणवीर सिंह को कई सेलेब्स का सपोर्ट मिला। बीते दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने धुरंधर एक्टर का समर्थन किया। अब FWIC के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित का कंगना पर गुस्सा फूटा है और चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। एक बातचीत के दौरान अशोक पंडित ने कहा कि इंडस्ट्री के कई लोग मामले को पूरी तरह समझे बिना उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और उन्होंने कहा इंडस्ट्री के कई लोगों ने हमें गाली देना शुरू कर दिया है। कल कंगना ने भी कुछ कहा, लोग पूरे मामले को नहीं समझ पा रहे हैं और लोग बस टिप्पणी कर रहे हैं। कंगना ने भी ये कहा कि मुझे भी इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है और जो भी है वो एकदम फेक बात कर रही है, वो बिल्कुल गलत बात कर रही है और कहती है कि जो भी कंगना ने कहा बिना सोचे समझे बोलना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो मामला है उसका जो डिटेल्स, उसकी जो डिटेल्स है वो उन्हें नहीं पता है। लेकिन कंगना ये तो अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जानी जाती है और जो उनके मन में आता है वो हमेशा बात करती रहती है और इसी की वजह से कई सारे विवादों में वो फंस जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रणवीर सिंह को बहुत सारे स्टार्स का सपोर्ट मिल रहा है इस मामले में और ये तो हम जानते हैं दैट ये जो प्रॉब्लम हुआ था वो फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच हुआ, जहां पर कुछ बातचीत चल भी रही थी। लेकिन उस बीच में यहां पर ये फेडरेशन बीच में आया FWIC और आते ही उन्होंने सीधा बैन लगा दिया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और इस पर रणवीर सिंह की लीगल टीम ने उन्हें नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद ये जो बैन है उसे हटा दिया गया है, लेकिन लीगल कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है। सो लेट्स सी कि अब ये जो मामला है वो कितने आगे तक जाता है। लेकिन ये हम जानते हैं दैट अभी के लिए तो फिल्म डॉन 3 को काफी हाइप मिल गई है और अब हम ये नहीं जानते हैं कि इस फिल्म में कौन से एक्टर नजर आएंगे, बिकॉज फरहान अख्तर ने तो ये कह दिया है दैट वो अब कभी भी रणवीर सिंह के साथ फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि डॉन 3 क्या ये बनेगी और अगर ये बनेगी तो किस एक्टर के साथ बनेगी।
3: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
0: आज आजादी है। Bombay Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, इट्स 2:38। बात करने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, जो सबसे अमीर एक्टर्स में से एक है। 35 साल के अपने बॉलीवुड करियर में अक्षय कुमार ने खूब शोहरत के साथ साथ तगड़ी कमाई भी की है और कई लग्जरी प्रॉपर्टीज भी बनाई है। अक्षय कुमार के पास मुंबई में ही कई प्रॉपर्टीज है और अब इनमें से दो उन्होंने बेची है और इसमें उन्हें अच्छा खासा फायदा भी हुआ है। तो ये जो सौदा है वो बिल्कुल फायदे का सौदा हुआ, जहां पर हाल ही में अक्षय कुमार ने अपने बोरीवली स्थित दो फ्लैट्स को बेचकर डबल मुनाफा कमाया है। अक्षय कुमार ने जिन फ्लैट्स का सौदा किया वो मुंबई के बोरीवली स्थित है और अक्षय कुमार ने फ्लैट सुवर्णा रुपेश कुमार सफल को बेचे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ी कुमार की ये जो फ्लैट्स है वो बोरीवली ईस्ट के स्काई सिटी नाम के बिल्डिंग में है और ये 35th मंजिल पर सिचुएटेड है। फ्लैट नंबर 350 अच्छी खासी डील मिल गई है। और बता दिया दैट ये जो फ्लैट्स हैं वो अक्षय कुमार ने 2017 में खरीदे थे और उस टाइम पे इनकी जो टोटल कीमत थी वो करीब 7 करोड़ रुपए थी, करीब 3 करोड़ रुपए थी। और 3 करोड़ के बाद अब जो उन्होंने ये फ्लैट्स बेचे हैं 2026, तो ये फ्लैट्स उनके बिके हैं करीबन 7 करोड़ रुपए में। सो अच्छा खासा मुनाफा उन्होंने कमाया, जहां पर 3 करोड़ के जो उनके फ्लैट्स थे वो अब बिक गए हैं 7 करोड़ रुपए में। सो फिल्मों के साथ साथ यहां पर प्रॉपर्टी में भी अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं। दैट्स खिलाड़ी कुमार आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि भाई दौलत शोहरत अगर किसी के पास है तो वो बस बॉलीवुड स्टार्स है, क्योंकि इसमें मेहनत तो है लेकिन मेहनत के साथ साथ पैसे भी काफ़ी कमाते हैं। साथ ही आपको बता दें दैट अक्षय कुमार जो है वो एक फिल्म के लिए करीबन 90 करोड़ रुपीज़ की फ़ीस चार्ज करते हैं और उनका टोटल नेटवर्थ 2500 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। वो मुंबई के जुहू में 80 करोड़ रुपए की कीमत के बंगले में परिवार के साथ रहते हैं और उनके घर जो है वो कई जगहों पर है, जहां पर गोवा, कनाडा एंड इवन इन मॉरिशस। अक्षय कुमार का घर यहाँ भी है, ये तो मुझे आज पता चला। ओहो, पता लगाना पड़ेगा मॉरिशस में उनका घर है कहाँ, लेकिन ये तो है भाई अच्छा खासा।

डील उन्हें मिल रही है और बहुत ही जल्द उनकी फिल्म वेलकम टू दी जंगल लाने वाली है सो उनके फैंस कर रहे हैं इस फिल्म का इंतजार And this one goes out for all the fans of Akshay Kumar. साथ दे रहे हैं आप, so not to forget, that's your Bombay Talkies. मैं हूं परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा till 4 p.m. right here on Radio Masti.

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: Well, this one's the latest one in the voice of Arijit Singh, Sunidhi Chauhan, from the upcoming film Cocktail 2. एक हार्ट टचिंग सॉन्ग आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. सो वेल फ्रेंड्स, ये है आपका अपना बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ. दिन के 4 बजे तक रहेगा आपका और मेरा साथ. अभी के लिए अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सोलफुल सॉन्ग आप सभी के नाम, द लेटेस्ट ऑन द ब्लॉक जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. इफ यू हैव लव्ड समवन, सो दैट्स अ स्पेशल डेडिकेशन आपके उस खास इंसान के नाम. एंड स्पेशली हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती. एंजॉय दिस वन.

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: So well friends, it's 2:55 और थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. साथ दे रहे हैं भगवत विदेशी. कहते हैं एक ब्यूटीफुल गाना हो जाए अनुषा उनके नाम. बिल्कुल जी एंड विजया जी साथ दे रही हैं आप. वेलकम आपका ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. गाना होगा आपके नाम. डेविसन लाल माची से हमारा साथ दे रहे हैं. कहते हैं बरसाती मौसम एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच डेविसन. साथ देने के लिए शुक्रिया एंड एवरीवन हु इज कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ. तो चलिए हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सॉन्ग के साथ समाचारों की ओर. उसके बाद लौट कर आएंगे. एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी. कहीं मत जाइए. स्टे वेल ट्यून्ड. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.
0: You're listening

0: Welcome to Radio Mustang.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार, सुपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित कुशराज लचिगादू मामले में अदालत का फैसला अब बाद में सुनाया जाएगा. साइजेस अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने मामले पर अपना फैसला स्थगित कर दिया. ये मामला 2018

0: कहें जब कुसराज लचीगादू पर लगभग 33 मिलियन रुपए मूल्य के 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स वाले एक पार्सल प्राप्त करने का आरोप लगा था। वर्ष 2024 में दो नए वाहनों गवाहों के सामने आने के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अब अदालत का फैसला एक दूसरी तारीख को सुनाया जाएगा। वैदिक ज्ञान सत्य की खोज और समाज सुधार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आर्यसभा मॉरिशस ने जून महीने को सत्यार्थ प्रकाश को समर्पित किया है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए पूरे महीने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और आज पोटली स्थित आर्य भवन में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की गई कि पहली से 5 जुलाई तक मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। साथ ही स्वामी दयानंद के प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश सत्य का प्रकाश की प्रतियां भी वितरित की जाएंगी। आज हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुकी है, लेकिन मॉरिशस के आसमान में पहली बार किसी विमान ने कब उड़ान भरी थी इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1922 में वाकवा के जिमखाना क्लब मैदान से एक विमान ने पहली बार मॉरिशस के आसमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 104 वर्ष बाद एनजीओ SOS पैट्रिमोन उस भूले बिसरे अध्याय को फिर से जीवित करने और देश विरासत का हिस्सा बनी इस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में कथित ठगी के मामले में आज एक नया घटनाक्रम सामने आया है। मुख्य संदिग्ध 64 वर्षीय हेमराज मोहनौ को पोटली अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत का विरोध किया गया। इसके बाद उसे दोबारा पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में संदिग्ध धन के लेन देन से जुड़े आरोपों को लेकर एक अन्य व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। FCC के अनुसार अब तक 11 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि करीब 40 अन्य मामलों की जांच जारी है। इस कथित ठगी से हुए नुकसान का आंकड़ा 30 मिलियन रुपए से अधिक हो सकता है। विदेश स्तर पर इजराइल और लेबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुए वार्ता दौर के बाद अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे, जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों को मौजूदगी पर रोक होगी और नियंत्रित करने के लिए जो ताकतों के पास उनके पास रहेगा। ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब हिजबुल्ला सभी हमले पूरी तरह बंद करे और सीमा क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मुसलमान सेंट ओरी सेंट यूबेमी 27 साल की कृष्णा चकोरी 27 ईयर्स ओल्ड की कृष्णा चकोरी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनकी दादी सुकन दमयंती के मकान सेंचुबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM स्वराज भवन लेन लालमाची में 89 ईयर्स ओल्ड की कलावती मंगो पैदाइश लखन, लोग उन्हें विद्यापति के नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे के बेटे मनीष मंगो के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंडेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप शायद पहली ही बार सुन रहे होते हैं, लेकिन लगता है कि ओ माय गॉड, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अभी के लिए ये गाना कुछ ऐसा ही है. दैट्स अ ब्यूटीफुल इंडी पॉप आपके लिए. एंड दैट्स हसीन फॉर ऑल द हसीनाज जो हमारा साथ दे रही हैं. गुजार फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऑन रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. एंजॉय दिस वन.

0: in the mix. Radio Musty in the mix.
1: You're listening to

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, बैक विद सम बॉलीवुड अपडेट्स। मिर्जापुर द मूवी की रिलीज इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं अली फैजल की नई रिलीज राख भी दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है। और आइए जानते हैं कि इसी बीच एक्टर ने अपनी पत्नी ऋचा चड्ढा के साथ अपनी क्रिएटिव पार्टनरशिप को लेकर क्या बात कही है। अली फैजल ने बताया कि दोनों कभी भी किसी खास इमेज में फिट होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनका फोकस हमेशा मजबूत और चुनौतीपूर्ण किरदारों पर रहता है। उनकी इस सोच को फैंस ने खूब पसंद किया है और दोनों की ईमानदार एक्टिंग की भी जमकर सराहना की है। अली फैजल, ऋचा चड्ढा दोनों ही अपने अलग अलग फिल्मों में चुनौतीपूर्ण किरदारों के लिए जाने जाते हैं। अली फैजल ने बताया कि ऋचा और मैं हमेशा ऐसे किरदार की तरफ आकर्षित होते हैं जहां पर हमें कुछ चुनौती लगती है और दर्शकों के दिल में जगह बनाने की हमें थोड़ी सी अब आदत सी हो गई है, जहां पर हमारे जो किरदार है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कुछ ऐसे किरदार जिसमें ग्लैमर तो नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी इमेज होती है जो दर्शकों के सीधा दिल तक पहुंच जाती है। ये तो उन्होंने बिल्कुल सच बात कही, क्योंकि ऋचा चड्ढा एंड अली फैजल दोनों ने ही कुछ कम फिल्में की है, लेकिन दोनों के किरदार ऐसे रहे हैं कि दोनों ही अब उनके फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है। सो अभी के लिए तो बस यही कहना था अली फैजल का, जो आजकल अपनी जो लेटेस्ट रिलीज है राख उसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। और वहां पर उनकी वाइफ ऋचा चड्ढा ने भी इसको लेकर खास पोस्ट शेयर किया है, जहां पर स्टारकास्ट की तारीफ की है, फिल्म की तारीफ की है और बताया है कि दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, जिस तरह का कास्ट इस फिल्म को मिला है, इस प्रोजेक्ट को मिला है, दैट्स आउटस्टैंडिंग एंड दैट्स एन ड्रीम प्रोजेक्ट जो वो भी शायद करना चाहती। लेकिन अभी के लिए तो उनके

0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti.
2: So well friends, Thursday afternoon है, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So not to forget आपके messages, आपके dedications 54991294 पर. For now, तानिया सिंह की आवाज़ and we have this beautiful song. कह सकते हैं कैसा गाना जो हमेशा से रहा है so popular, हमेशा से रहा है हमारे सबके दिल के बहुत ज़्यादा करीब. लेकिन एक different अंदाज़ में आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. So waiting for your text messages on 54991294. परी का साथ है on RM2 Radio Masti. You are listening to Bombay Talkies.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, that was in the voice of Shahid Malia. That was a beautiful song. आपके लिए student of the year film का ये गाना था हमारे सभी listeners के नाम. और चलिए दोस्तों, it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते यहाँ पर माला जी dedicate करी हैं गाना for All Sukram and Bhim family. So गाना आपके नाम. Thank you so much. और well कहते हैं thank you for the beautiful songs. Dedicating अगला गाना ये होगा सभी listeners के नाम. Thank you so much. हमारी प्यारी सी रोशनी साथ दे रही हैं आप. So गाना आपके नाम and sending loads of love to you. कहते हैं कि तुम देखना जो आने वाला है वो तुम्हारी दुआओं से भी ज्यादा खूबसूरत होगा. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम ललिता जीतन. डेडिकेट कर रही है गाना अपने सभी दोस्तों के नाम. पारुषी, सिमी, सिनिका, निर्मा, आनी एंड माही, सोनिया, दिशिता, रीमा, ललिता जीतन हमारा साथ दे रही हैं आप. एंड डेडिकेटिंग गाना फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पोर्टलो स्कूल. उनके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. साथ ही कहते हैं दैट गाना हो जाए फॉर अंजलि. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम काव्या. उनके लिए भेजा है प्यार. और सभी बुलजो परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लेन दे पपाय से, उनके नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन स्पेशली गोज आउट फॉर अनिता, राकेश एंड सिद्धिता को मिस कर रहे हैं आप. सो गाना आपके नाम, सभी अपनों के नाम. एंड साथ ही यहाँ पर सारिका हमारा साथ दे रही हैं आप. अपना सारिका और विश्वमित अपनी 31st एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं. उनके लिए स्पेशल विशेज. सो विशेज लेकर आए हैं सर्वेशी, दानिश एंड कमलन, राम, सुवेंद्र, पूनम, विमा और जानी. सभी की ओर से प्यार एंड स्पेशल विशेज टू दिस वंडरफुल कपल. 31 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस. और चलिए दोस्तों, अगला गाना आप सभी के नाम.

0: सी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुडबाय। मेरे बाद आ रही है रिया लेकर कुछ और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम इन योर अवतार वाइब, सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड टू RM2 रेडियो मस्ती।
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti. Radio Musti.

0: time to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: अपने घड़ी मिलाते चलिए, शाम की ठीक 4 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको आस्था।
6: नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बैंक की अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस पूरे महाद्वीप में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिक मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने में सफल रहा है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र की आगे की वृद्धि के लिए कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। सेदेक के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारी का एक संघ, उसने अपने पेंशन से कम पेंशन योजना में बदलाव की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि इस मुद्दे से करीब 310 कर्मचारी प्रभावित। मॉरिशस लेबर कांग्रेस से जुड़े इस संघ ने आज प्रेस वार्ता के दौरान अपनी मांगे सामने रखी। साथ ही उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन में शिकायत दर्ज कराने का भी फैसला किया। जब कोई कंपनी रिसीवरशिप के तहत आती है तो कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। ये कहना है FTU यानी फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष आत्मा शांतो का।

0: आज पोटली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने रिसीवरशिप के तहत चल रही चार कंपनियों की स्थिति पर चिंता जताई। सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच और तटीय इलाकों में प्रस्तावित होटल परियोजनाओं का मुद्दा आज फोरम सिटोयन लिब्रे की प्रेस वार्ता में प्रमुखता से उठाया गया। बेल विलेज में आयोजित इस प्रेस बैठक के दौरान रोज आयान ने होटल परियोजनाओं को दी गई जो मंजूरियां हैं और उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल खड़े किए। विदेश स्तर पर अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें ईरान के खिलाफ युद्ध में अमरीकी सैन्य भागीदारी समाप्त करने की मांग की गई है। हालांकि इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रस्ताव को कुछ रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन मिला है जबकि इस सप्ताह सेनेट में भी इस पर चर्चा और मतदान होने की संभावना है। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि युद्ध जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में कांग्रेस की भूमिका को बनाए रखना आवश्यक है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2
1: रेडियो मस्ती

0: हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपकी रिया, एंड आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ. दैट इज रफ्तार वाइब्स शुरू हो चुका है यहां पर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. शाम की 4:09 हो रहे हैं और बाहर का माहौल बिल्कुल बदल रहा है. ऑफिस से लोग निकलना शुरू हो चुके हैं और गाड़ियों की इंजिन स्टार्ट हो रही है और हर कोई अपने घर की तरफ सफर शुरू कर रहा है. वह कुछ लोग ऑलरेडी स्टीयरिंग व्हील के पीछे है, कुछ बस या मेट्रो में है और कुछ बेचारे अभी भी ऑफिस की कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं. लेकिन एक बात सबके चेहरे पर कॉमन है कि वीकेंड अब दूर नहीं है. जी हाँ, थर्सडे का मतलब है वीकेंड की खुशबू हवा में आनी शुरू हो गई है. बस एक और देर और फिर आराम, फैमिली टाइम और अपने पसंद की चीज़ें. एंड आज रफ्तार वाइब्स में होंगे फील गुड गाने, एज यूजुअल पॉजिटिव वाइब्स और आपकी हमारी बातें. जी हाँ, आज मैं जानना चाहती हूँ कि आज आप घर पहुंचकर सबसे पहले क्या करेंगे? फैमिली के साथ बैठेंगे थोड़ी देर, बच्चों के साथ थोड़ी मौज मस्ती, या फिर सिर्फ चाय का एक सुकून भरा कप? और लेट मी टेल यू दैट आज के इस शो में बहुत कुछ होने वाला है. वी हैव गॉट बहुत कुछ, बहुत अच्छे अच्छे गाने, ये तो हम हमेशा लेकर ही आते हैं आपके नाम. सो आपसे कहेंगे कि सीट बेल्ट आप बांधिए, मूड को फ्रेश रखिए और चलिए शुरू करते हैं रफ्तार वाइब्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर. आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
1: रेडियो मस्ती.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: अजी इस थर्सडे शाम का अपना ही चार्म होता है। फ्राइडे के बिल्कुल करीब पहुंच कर लगता है कि हफ्ते का सबसे मुश्किल हिस्सा पीछे छूट गया और दिल वीकेंड के प्लान्स बनाना शुरू कर देता है। पर क्या आपने वीकेंड के जो प्लान्स है ये ऑलरेडी सोच लिए हैं? फैमिली आउटिंग, शॉपिंग, मूवी नाइट, क्या कुछ आपने शायद सोच रखा है, या फिर आप बस घर पर ही आराम करने वाली है? कभी कभी बेस्ट प्लान्स वही होते हैं जहाँ कोई प्लान ही नहीं होता है, बस अपने लोगों के साथ समय बिताना और कुछ देर के लिए दुनिया की भाग दौड़ को भूल जाना। तो सोचे और बताए हमें कि आपने वीकेंड प्लान क्या बनाए, और जरूर हमें बता सकते हैं 5499-1294। वी आर हियर इन योर रफ्तार वाइब्स विद द गुड म्यूजिक। यहाँ पर रिया के साथ है रफ्तार वाइब्स में ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती। एंड द नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है। यस यस, वी हैव आपके डेडिकेशन, आपके मैसेजेस। तो चलिए एक दो हम देख लेते हैं। संगत जी है फ्रांस से जुड़े हुए, एंड आपका स्वागत है। साथ ही वी हैव धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति एंड द होल आग परिवार जो है मोदाल बेसी हमारे साथ कनेक्टेड है। कैसे हैं आप? नेक्स्ट गाना तो ब्यूटीफुल वन आप सभी के नाम जाता है। एंड श्याम दबिचरण जी हमारे साथ है, कनेक्टेड है, एंजॉय कर रहे हैं ये गाने। तो चलिए आपके नाम, आपके दोस्तों के नाम, कलीग्स के नाम गाना हम जरूर चलाएंगे। जीना हमारे साथ है, कनेक्टेड है। हेलो जीना, हाउ आर यू? चलिए आपके नाम भी नेक्स्ट ट्रैक। और डारेन, स्वीटा, रवीश, प्रीशा, लवीशा, एना भाजू परिवार है रोशनवा से, कह रहे हैं कि उनके यहाँ बारिश हो रही है। वेल, शायद कुछ जगहों में पर्यटन जोरदार बारिश हो रही है, एंड यहाँ पर आई थिंक मौसम ठीक ठाक है, पर हम जरूर बाहर जाकर देखेंगे, चक्कर मार कर आएंगे। तब तक आप ये गाना सुनिए।
1: RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: अपने घर में लाते चलिए, 4:48 हो चला है और अभी हम सुनेंगे कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में हो क्या रहा है। सुनते हैं अरविंद को। वेरी गुड आफ्टरनून आपको अरविंद।
5: गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून लिसनर्स। रिया, आज तारीख क्या है?
4: आज 4 जून है।
5: ओके, आपका मैथ्स ठीक है?
4: थोड़ा बहुत।
5: ओके, 11th तक जाने के लिए कितना दिन हो अभी है? आज से 11th तक जाने के लिए
4: 7 दिन
5: मींस 1 वीक। वन वीक में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है।
4: exactly,
5: यही नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक इस दिन रात को तो होगा मेक्सिको में, इट्स 11 बजे रात को मेक्सिको में पहला मैच खेला जाएगा और वी हैव बीन वेटिंग फॉर 4 ईयर्स। अब देखिए बस एक सप्ताह रह गया है और एज यूजुअल वी आर टेकिंग यू देयर, वी आवर रोड टू वर्ल्ड कप अभी थोड़ी देर बाद आप लोग सुनेंगे। मॉरिशस में इन दिनों टू डेली सिक्लिस्ट चल रहा है और आज का जो स्टेज था उसमें अरबी हुबी की जीत हुई, बुद्याक का नया लीडर बन गया है। सो फ्रांस का एंटोन हुबी 7-11 टीम वो आज जीत गया। इसमें खासतौर पर ओवरऑल रैंकिंग में भी चेंजेस हुए हैं। यूक्रेन का अनातोली बुद्याक जो मादा प्रो साइक्लिंग से है वो ले गया है येलो जर्सी। राइट, फुटबॉल फ्रेंडली मैच काफ़ी खेले जा रहे हैं तैयारी के रूप में फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। इसमें आज के जो फ्रेंडली मैच है उस एक नज़र डालते हैं फ्रेंडली मैचों पर। फिक्स्चर्स वी हैव, पनामा ने आज डोमिनिकन रिपब्लिक को 4-2 से हराया। साउथ कोरिया की जीत हुई एल साल्वाडोर पर। जो बाकी मैच हैं, लेसोथो केन्या, नॉर्दर्न आयरलैंड गिनिया, स्लोवेनिया, साइप्रस, ईरान, माली, स्वीडन, ग्रीस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। स्पेन इराक, फ्रांस का मुकाबला आइवोरी कोस्ट से, ये भी इंटरेस्टिंग मैच है फ्रांस और आइवोरी कोस्ट के बीच। फिर अंदोहा लिएश्टेनस्टाइन। इधर UEFA अंडर 17 चैंपियनशिप के मैच भी खेले जा रहे हैं और कल भी काफ़ी मैच खेले जाएंगे जिनमें इटली का मुकाबला सर्बिया से होगा। इटली जो वर्ल्ड कप में नहीं है, डेनमार्क स्वीडन तो ये हैं ही, और चेक रिपब्लिक अल्बेनिया, ये सब कुछ मैच हैं जो कल खेले जाएंगे प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। मैनचेस्टर सिटी अभी नाराज़ है क्योंकि रियल मैड्रिड का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उसने प्रॉमिस किया है कि अगर वो इलेक्ट हो जाएगा तो वो अर्लिंग हालैंड को साइन करेगा। इससे मैं मैनचेस्टर सिटी कंसीडर लीगल एक्शन ओवर रियल्स कैंडिडेट प्रॉमिस टू साइन अर्लिंग हालैंड, एक तरह से बोलने के लिए कि हम साइन करेंगे हालैंड को तो वोट हमें दो, ऐसा करना चाहते हैं लेकिन इसको ये लोग इलीगल मान रहे हैं। टेनिस का अभी लगभग पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल खेले जाएंगे और आज के जो मैच हैं ईरान डबल्स आज पूरे हुए, ईरानी और बाबासोरी की जीत हुई दाब्रोस्की और किंग पर। फिर आज का जो सिंगल्स वीमेन सिंगल सेमीफाइनल है कोश्चुक अंद्रीवा और दूसरा सेमीफाइनल श्नाइडर वर्सेस श्वालिंस्का। श्वालिंस्का जो एक क्वालिफायर है वो यहाँ तक पहुँच गया है और कल के मैच, कल डबल्स भी होंगे। सिंगल्स में मैन सिंगल सेमीफाइनल मैनसिच वेरेव और नाल्दी का मुकाबला कोबोली से होगा, ये कल के मैच है फॉर दी फ्रेंच ओपन रोलां गारोस में जो चल रही हैं। सो लेटेस्ट अभी थोड़ी देर बाद विल बी बैक विद दी वर्ल्ड कप लेटेस्ट न्यूज।
4: थैंक यू सो मच अरविंद।
5: वेलकम।
0: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
3: Get ready for the biggest World Cup ever.
2: 2026 FIFA World Cup.
3: पहली बार होंगी 48 टीम्स, 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
3: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
4: चलो वर्ल्ड कप की ओर। आज जून 4 यानी अगले हफ्ते सेम डे मेक्सिको में वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी और पहला मैच ये होगा मेक्सिको, होस्ट नेशन मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच। सो ओनली 1 week लेफ्ट, इंतजार करेंगे। वैसे ये भी बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया डायरेक्ट नहीं खेल रहा है, लेकिन इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग देशों की नेशनल टीम से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें है सरप्रीत सिंह, न्यूजीलैंड के लिए खेलता है, ये एक अटैकिंग मिडफील्डर है और वेलिंगटन फिनिक्स के लिए खेलता है। उसके पेरेंट्स जलंधर पंजाब से हैं। सरप्रीत न्यूजीलैंड से पहले साउथ एशियन प्लेयर बनेंगे जो वर्ल्ड कप स्टेज पर खेलेंगे। फिर है तहसीन मोहम्मद जमशेद जो कतर के लिए खेलता है, ये 19 साल का विंगर कतर की टीम को रिप्रेजेंट करेगा। उनके पेरेंट्स कनूर केरला से बिलोंग करते हैं, वो अल दुहाल क्लब के लिए खेलता है। निशांत वेलुपिले ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में है, मेलबोर्न विक्ट्री के ये डायनामिक 25-year-old विंगर ऑस्ट्रेलिया की 26 खिलाड़ियों की लिस्ट में है, उनका परिवार तमिलनाडु मूल के हैं। फिर है सैमुअल मुटुसामी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के लिए खेलता है, ये मिडफील्डर है जो कोंगो की नेशनल टीम से वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया है। फिर कतर में ही है नियाल मेसन, इंग्लैंड में पढ़े हुए इस डिफेंडर की माँ इंडियन है, उन्हें कतर की प्रिलिमिनरी टीम में जगह मिली है। सो इतने हैं, तो भारतीय टीम कभी तो कभी जाएगी, दे आर गेटिंग रेडी, और खबरें आपको देते रहेंगे। इस बीच कल इस ऑफिशियल स्क्वाड लिस्ट लॉक कर ली गई है, इनमें मैसिव लाइनअप अनाउंसमेंट, इंजरी कंसर्न केवल 7 दिन रह चुके हैं। सो 1248 खिलाड़ी लॉक्ड इन, फीफा ने ऑफिशियली अनाउंस किया 48 नेशन फॉर्मेट। हिस्टोरिक 6 कैंपेन है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गुयमो ओचुआ के लिए, वे लोग अपनी अपनी टीम में खेलेंगे। रोनाल्डो कैंप में आया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर चुका है और कैप्टन फिटनेस क्राइसिस है आइवरी कोस्ट के कप्तान फ्रांक केसी, उसके साथ साथ कालिदू कुलीबाली, अशराफ हकीमी और मोहम्मद सलाह भी फुल फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं। सो सब कुछ सेटअप है ओपनिंग मैच सेट के लिए और ये मेक्सिको साउथ अफ्रीका के बीच मैच होगा स्टाडियो अस्तेका मेक्सिको सिटी में। सो गेट रेडी, ओनली 1 week लेफ्ट फॉर द ग्रैंड मेला ऑफ फुटबॉल, द फीफा वर्ल्ड कप 2026।
3: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: to Radio
1: Mesti. Traffic update. Traffic update.
2: राइट अभी समय हो गया है का छोटे से ट्रैफिक अपडेट का. अभी अभी हमारी बात हुई है सेरागु से और अच्छी खबर ये है कि इस समय किसी भी मेजर एक्सीडेंट या मेजर रोड एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है. सड़कें आम दिनों की तरह व्यस्त है लेकिन कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है. हाँ, कुछ जगहों पर यूजुअल स्लो डाउन देखने को मिल रहे हैं. अगर आप सुबह की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए. कैथोबोन से सैन जॉन के बीच भी ट्रैफिक धीमा ही चल रहा है और इसी तरह वैक्वा एरिया से निकलने वाले मोटरिस्ट को भी स्लो मूविंग ट्रैफिक मिल सकता है. और हाईलैंड से कॉन्फुको की तरफ भी गाड़ियों की रफ्तार कुछ कम ही है. सबसे ज्यादा स्लो डाउन इस समय सेंटर से नोव की तरफ रिपोर्ट किया गया है. तो अगर आप उस रूट पर है तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर ही चलिए. बाकी दोस्तों कोई मेजर कंसर्न नहीं है. आराम से ड्राइव कीजिए, सेफ डिस्टेंस रखिए, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते रहिए और रेडियो मस्ती को अपना सफर साथी बनाते रहिए. मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया एंड दिस वाज योर लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट ऑन रफ्तार वाइब्स. अब चलिए हम मूड को थोड़ा सा फ्रेश रखते हैं और एक जबरदस्त सा गाना सुनते हैं.
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.
3: That's right. Pump it up.

0: Once again, आप सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है रफ्तार वाइब्स के दूसरे घंटे में। और ये शुरू हो चुका है एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया। और अब शाम धीरे धीरे अपने रंग में बदल रही है, दिन की भागदौड़ थोड़ी सी शांत हो रही है और मूड भी अब थोड़ा सा बदल रहा है। पहले घंटे में हमने एनर्जी और फील गुड वाइब्स के साथ सफर किया, लेकिन अब समय है थोड़ा सा सुकून महसूस करने का। वेल, अगले एक घंटे में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्यार भरे, दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गाने। और मुझे तो लगता है कि हमारे कई सारे लिसनर्स अभी तक तो घर पहुंच भी गए होंगे, शायद चाय का कप हाथ में हो या फैमिली के साथ बैठकर थोड़ी बातें हो रही होंगी। और जो दोस्त हमारे अभी तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक ही बात कि आप फिक्र मत कीजिए, घर पहुंच ही जाएंगे। मंजिल तो वही है, बस सफ़र आज थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो टेंशन को थोड़ा आप साइड पर रखिए, दिल को हल्का रखिए और इस खूबसूरत शाम में हम आपको भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार, पॉजिटिविटी और अच्छी वाइब्स। और ये कैसे? इन गानों के जरिए।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन लेकर आ रहे हैं आपके लिए
1: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल This Saturday, 6th of June, from 1 p.m. to 4 p.m. at Blue Bay Public Beach.
0: Music, games, gifts, full-on musti, full-on entertainment.
1: Live performances, music, games, gifts, aur bahut kuch.
0: So, save the date.
2: Milie hamari artist ke saath, aur saath mein hamari artist, Kunal Hirilal. Wahan pe aman.
3: Dum dum diga diga.
2: और साथ होंगे डांस इन द
3: सिटी
1: फुल ऑन मस्ती एंड मनोरंजन दिस सैटरडे 6th ऑफ जून फ्रॉम 1 p.m. टू 4 p.m. एट ब्लू बे पब्लिक बीच
4: रेडियो मस्ती

वेल हम अक्सर मंजिल तक पहुंचने की इतने जल्दी में होते हैं कि सफर को एंजॉय करना भूल ही जाते हैं अक्सर। एंड आज अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कि ट्रैफिक थोड़ा धीमा चल रहा है, तो शायद जिंदगी आपको थोड़ा धीरे चलने का मौका दे रही है। खिड़की के बाहर आप देखिए, आसमान का रंग बदल रहा है, शहर की जो रोशनियाँ हैं ये चलने लगी है, और हमारे जो गाने हैं ये यहाँ पर हम लेकर ही आते हैं आपके मनोरंजन के लिए, और आप ही के पसंदीदा गाने ही लेकर आते हैं। वल कहते हैं ना कि कभी कभी सफ़र भी उतना ही खूबसूरत होता है जितनी कि मंजिल। सो हम कहेंगे आपसे कि आप ये सफ़र एंजॉय करते रहिए जल्दी, कि कोई बात नहीं है, आप घर पहुँच जाएंगे, पहुँचने ही वाले हैं, और इस शाम को हम यादगार बनाते चलेंगे हमारे इस खूबसूरत गानों के साथ है, जैसे कि ये नेक्स्ट गाना।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
1: चलिए जी, आज का फैशन टिप उन सब के लिए जो स्टाइल और कंफर्ट दोनों को साथ लेकर चलना पसंद करती है। जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, अपने वार्डरोब में आप सॉफ्ट लेयर्स को जगह दीजिए। एक सिंपल टॉप या शर्ट के साथ आप लाइट वेट जैकेट, कार्डिगन या स्टाइलिश स्कार्फ पहन सकते हो, और ये न सिर्फ आपको कंफर्टेबल रखेगा बल्कि आपके लुक में भी एक एलिगेंट टच ऐड कर देगा। और याद रखिए कि फैशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ब्रांडेड कपड़े नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस है। जो पहनिए उसे मुस्कुराहट और यकीन के साथ पहनिए, वही आपका बेस्ट लुक बन जाता है। ये था आज का फैशन टिप ऑफ द डे, ब्रॉट टू यू बाय अल्कोवी फैशन, जहां हर आउटफिट सिर्फ पहना नहीं जाता, स्टाइल के साथ कैरी किया भी जाता है।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय अल्कोवी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

हर शाम का एक अलग ही एहसास होता है, कहीं कोई घर पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है। माँ शायद सोच रही होती है कि बेटा कब घर आएगा या बेटी कब घर आएगी। बच्चे दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं और कभी कभी कोई खास इंसान बस एक मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों हो ना जाए, किसी का इंतजार होना और किसी के पास लौटना, ये दोनों बहुत ही खूबसूरत एहसास है। आज अगर आप घर जा रहे हैं तो एक मैसेज आप ज़रूर भेज सकते हैं। बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, बस इतना ही आप भेज देना। यकीन मानिए किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और शायद आपने मैसेज भेजा और यहाँ पर आपके लिए चाय उबाली जा रही है, पता नहीं, बट कुछ भी हो सकता है, या शायद खाना भी पकना शुरू हो जाए। वेल

आप हमारे साथ कनेक्टेड है तो वी आर हियर विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स ऑन रफ्तार वाइब्स रिया के साथ एंड यस आपकी डेडिकेशंस की ओर हम जरूर थोड़ी देर में बढ़ेंगे और अगर इस आवर पॉसिबल नहीं होगा तो हम नेक्स्ट आवर लेकर आएंगे आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस. सो यस द नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है जो कब से साथ दे रहे हैं और घर पहुँच कर भी साथ निभा रही है. ऑल्सो कुछ लोग हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं तो आपको हम मुंगो आज कहते हैं काम करते रहिए और गाने एंड्रॉय करते रहिए.

0: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन लेकर आ रहे हैं आपके लिए
1: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल This Saturday, 6th of June, from 1 p.m. to 4 p.m. at Blue Bay Public Beach.
0: Music, games, gifts, full-on musti, full-on entertainment.
1: Live performances, music, games, gifts, aur bahut kuch.
0: So save the date.
2: Milie hamari aajis ke saath aur saath mein hamari artist Kunal Hirilal. Wagan pe aman.
3: Dum dum diga diga.
2: और साथ होंगे डांस इन द सिटी
1: फुल ऑन मस्ती एंड मनोरंजन दिस सैटरडे 6th ऑफ जून फ्रॉम 1 p.m. टू 4 p.m. एट ब्लू बे पब्लिक बीच
4: RM2 रेडियो मस्ती The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti. Feels a Musti.
6: RM2 Radio Musti.
0: The time is brought to you by
7: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik. Gel Air Freshener. Freshness. Anytime, anywhere.
5: North. South.
6: 103.5.
5: East. West.
6: 96.4.
5: Center.
6: 99.4.
4: RM2.
6: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
8: A very good evening, आप सभी को घड़ी मिलाते चलिए शाम की ठीक 6 बज रही है

शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर डालती है। पुतोदो में नई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन, करीब 3,400 घरों को मिलेगी बिजली, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम। मॉरिशस में कई बिलियन रुपए के नए निवेश की संभावना है, ईडीबी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दी मंजूरी, निवेश बढ़ाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। मॉरिशस में एमपॉक्स के स्थानीय संक्रमण का पहला मामला दर्ज, 64 वर्षीय व्यक्ति आइसोलेशन में है, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया संपर्क खोज अभियान। कुसराज लचगादू मामले में अदालत का फैसला बाद में सुनाया जाएगा, सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मॉरिशस में पहली हवाई उड़ान के 104 वर्ष, 1922 की ऐतिहासिक घटना को फिर जीवंत करने की पहल। विदेश स्तर पर इजराइल और लिबनान युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत, दक्षिणी लेबानन में विशेष सुरक्षा क्षेत्रों की योजना, लेकिन सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मॉरिशस में रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। पुतोदो में आज एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया, जो लगभग 3,400 घरों को बिजली देने में सक्षम होगी। एमसीबी ओमनिकेन और कलिसे इंटरनेशनल के सहयोग से तैयार इस परियोजना पर 250 मिलियन रुपये का निवेश किया गया है। खास बात ये है कि यहाँ बिजली उत्पादन के साथ कृषि गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, बिजली उत्पादन में अक्षत ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% तक पहुँचाना और 2035 तक कोयले के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करना है। मॉरिशस में आने वाले समय में कई

0: बिलियन रुपए के नए निजी निवेश देखने को मिल सकते हैं। निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार प्रदान करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड यानी ईडीबी ने अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल को और अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही देश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए और अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से कई नई पहलों की घोषणा की गई है। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस पूरे महाद्वीप में पांचवें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिक मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने में सफल रहा है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र की आगे की वृद्धि के लिए कई चुनौतियां भी मौजूद है। करुणा लालू।
1: अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेक्स 2025 में मॉरिशस पांचवें स्थान पर है, यानी मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और ट्यूनिशिया के पीछे। ये वर्गीकरण देशों की विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मूल्यवर्धित उत्पादन विकसित करने की योग्यता के आधार पर हैं। रिपोर्ट में मॉरिशस की कई विशेषताओं को उभारा गया, जिनमें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा, अनुकूल व्यवसाय वातावरण और अर्थव्यवस्था का विविधीकरण शामिल हैं। रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि मॉरिशस उच्च मूल्यवर्धित विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर दृष्टि सिंह रामदेनी कहते हैं, हम रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुकूल हैं, खासकर डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण को लेकर। अनेक सेक्टरों में टेक्सटाइल से परे फूड एंड बेवरेजेस को लेकर भी, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में है।
2: फूड एंड बेवरेजेस au-delà de tout ce qui est traditionnel textile ainsi de suite।
1: हालांकि मॉरिशस महाद्वीप की सबसे अधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट कई चुनौतियों की ओर भी संकेत करती है। अंतर अफ्रीकी व्यापार बहुत कम है, धीरे धीरे प्रगति हो रही है, एक संभावना के तौर पर देखना है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह एक सतत मंच की जरूरत है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 2010 में 14.2% से घटकर 2024 में 10.8% हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है।
2: Tout ce qui est l'espace fiscal, l'espace de support financier, l'infrastructure.
1: Fiscal or vittiya samarthan, mool dhancha aadi par phir se gaur karna chahiye, SME ko kendra mein rakhna chahiye, nivesh ko lekar unhe aage badhna chahiye, vishesh aarthik zone se judna chahiye.
2: Au niveau banque zone économique spéciale.
1: अब चुनौती ये होगी कि बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच इस सकारात्मक गति को कैसे बनाए रखा जाए।
0: मॉरिशस में एमपॉक्स के स्थानीय संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 64 वर्षीय विदेशी मूल के एक व्यक्ति में इस वायरस की पुष्टि हुई है। उसे पॉपलमुस स्थित सर श्री सागर राम गुलाम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत संपर्क खोज अभियान शुरू कर दिया है, ताकि संक्रमण के स्रोत और संभावित संपर्कों का पता लगाया जा सके। अशिता रघु।
3: ये स्थानीय स्तर पर एमपॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है। पूर्व में दो आयातित मामले थे। व्यक्ति एक निजी क्लिनिक में त्वचा पर समस्या की शिकायत के साथ आया था, जहां वहां के डॉक्टर ने उसे एक त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट के यहां भेजा और डर्मेटोलॉजिस्ट को संदेह हुआ कि ये एमपॉक्स हो सकता है, जिसके बाद तुरंत मरीज को SSRN अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। वहां भी उसे डर्मेटोलॉजिस्ट ने जांचा और उसके खून का एक सैंपल कॉन्डस अस्पताल भेजा गया। 2 बजे के करीब नतीजे प्राप्त हुए, जिससे ये पुष्टि हुई कि ये एमपॉक्स का मामला है।
4: Dermatologue également, et il nous fait une frottine, un échantillon de peau qui nous envoie au laboratoire de Candos. Et là, les résultats sont tombés vers 2h, c'est confirmé MPOX. Monsieur en question, il habite à Maurice pendant presque une année. Donc...
3: Sankramit vyakti, pichle 20 salon se Mauritius mein reh raha hai. Ye ek sthaniya mamla hai. Hum sakriya roop se pata lagane ki koshish kar rahe hain ki kaise ye MPOX se sankramit hua hai, kyunki ye nazdeek ke sampark se hi phailta hai.
4: pustules, la croûte, ça c'est un problème qui nous commence à gagner dans la mer et nous

0: bien ça au visage, mais aussi dans ma partie privée.
1: सिम्टम्स में त्वचा की समस्या जैसे पुटिका, सूखे व उखरे दाने होने लगते हैं जो हाथ, चेहरे व अंतरंग में हो सकते हैं।
2: सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित कुसराज लच्छिगादू मामले में अदालत का फैसला अब बाद में सुनाया जाएगा। असाइजेस कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने मामले पर अपना निर्णय स्थगित कर दिया। ये मामला 2018 का है जब कुसराज लच्छिगादू पर लगभग 33 मिलियन रुपए मूल्य की 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स वाले एक पार्सल प्राप्त करने का आरोप लगा था। वर्ष 2024 में दो नए गवाहों के सामने आने के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। सुनिए,
3: पिछले मंगलवार को असाइज़ेस कोर्ट में न्यायाधीश लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने कुसराज लच्छिगादू के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अपना फैसला नहीं सुनाया। ये मामला 27 फरवरी 2018 का है जब कुसराज लच्छिगादू ने 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स का एक पार्सल अपने कब्जे में लिया था जिसकी कीमत का अनुमान 33 मिलियन रुपये का लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने थ्रियोले स्थित कुसराज लच्छिगादू के कथित गुप्त ड्रग प्रयोगशाला पर छापा मारा। हालांकि फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री की जांच में कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला। कुसराज लच्छिगादू 23 अप्रैल 2018 को उस समय चर्चा में आया जब वो बाकवा डिटेंशन सेंटर से कुछ पुलिसकर्मियों की मदद से फरार हो गया था। उसके खिलाफ चल रहा मुकदमा मार्च 2022 में समाप्त हो गया था और अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था। 2024 में ये मामला फिर से खोला गया जब दो गवाह सामने आए। उन्होंने कथित रूप से दावा किया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने कुसराज लच्छिगादू को गलत तरीके से फंसाया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अदालत अपना फैसला ऐसी स्थिति पर सुनाएगी जिसकी सूचना संबंधित पक्षों को परिपत्र के माध्यम से दी जाएगी।
2: आज हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुकी है, लेकिन मॉरिशस के आसमान में पहली बार किसी विमान ने कब उड़ान भरी थी इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1922 में वकवा के जिमखाना क्लब मैदान से एक विमान ने पहली बार मॉरिशस के आसमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 104 वर्ष बाद एनजीओ SOS पैट्रिमोन उस भूले बिसरे अध्याय को फिर से जीवित करने और देश की विरासत का हिस्सा बनी इस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सुनिए ये विशेष रिपोर्ट।
3: बाकवा में जिमखाना क्लब के इस मैदान से पहली बार मॉरिशस से एक विमान ने उड़ान भरी थी। ये घटना 1922 की है। दक्षिण अफ्रीका के मेजर हुनेट ने इस विमान का संचालन किया था। उन्होंने इस विमान बायप्लेन को इंग्लैंड से समुद्री मार्ग के जरिए मॉरिशस तक पहुंचाया था। उस समय जिमखाना क्लब बरतानी सैन्य मुख्यालय का हिस्सा हुआ करता था। जिमखाना क्लब के अध्यक्ष रवीन बिनेश्री सिंह ने कहा, ये क्लब अंग्रेजों का था जो गोल्फ खेलना पसंद करते थे, इसीलिए साफ जमीन की जरूरत थी। विमान ने इस क्लब की जमीन का इस्तेमाल किया। 2 जून को सफल परीक्षण उड़ान के बाद इस विमान ने 4 जून को आसपास में कई चक्कर लगाए। 6 जून के रिसेनिय समाचार पत्र के संस्करण में उल्लेख किया गया कि विमान ने भीड़ की जोरदार तालियों और उत्साहपूर्ण स्वागत के बीच बड़ी सुंदरता से उड़ान भरी। आज इस ऐतिहासिक क्षण का कोई भौतिक चिन्ह बाकी नहीं। इसी स्थिति को बदलने के लिए गैर सरकारी संगठन SOS पैट्रिमोन ने पहल की है। क्रिस्टोफ लेहू ने कहा, प्रेजेंस में एक ऐसा विमान है जिसके मालिक के मॉरिशस आने के बाद देहांत हो गया। विमान हवाई अड्डे पर है, विमान को लेकर यहाँ लाना चाहते हैं पुलिस की निगरानी में ताकि भावी पीढ़ी के लिए स्मृति की रक्षा की जा सके। ये स्मृति संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है ताकि मॉरिशस के विमानन इतिहास का ये अहम अध्याय समय के साथ भुलाया न जाए।
2: वैदिक विचारों, सत्य की खोज और समाज सुधार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आर्य सभा मॉरिशस इस पूरे जून महीने में सत्यार्थ प्रकाश से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रही है। आज पोर्टवी स्थित आर्य भवन में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान बताया गया कि सत्यार्थ प्रकाश जयंती 12 जून को मनाई जाएगी। पहली जून से शुरू हुई प्रवचन और विचार गोष्ठियों की श्रृंखला 5 जुलाई तक आर्य समाज के विभिन्न शाखाओं में जारी रहेगी। साथ ही स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश अर्थात सत्य का प्रकाश ग्रंथ की प्रतियां भी वितरित की जाएंगी। पूजा सुकालू की रिपोर्ट पेश है।
4: आर्य समाज के संस्थापक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन और शिक्षाओं को इस पूरे महीने विशेष रूप से उजागर किया जाएगा। इस अवसर पर देश भर में आर्य समाज की विभिन्न शाखाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक प्रेस सम्मेलन में इस पूरे महीने के दौरान आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी गई।
5: सत्यार्थ प्रकाश इसी ग्रंथ के माध्यम से मॉरिशस में प्रकाश फैला है। अंधविश्वासों की जड़ को काटने का पूरा पूरा प्रयास किया गया और विद्या का जो प्रकाश है वो घर घर तक पहुंचाने का हमने प्रकाश प्रयत्न किया हमारे पूर्वजों ने, और इस समय वर्षों से आर्य सभा यह कार्य कर रही है।
4: इस विशेष अवसर पर भारत से आचार्य धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी आध्यात्मिक सभाओं और विचार विमर्श सत्रों में प्रवचन देंगे।
6: सत्यार्थ प्रकाश वह कालजयी ग्रंथ है जिसने न केवल भारत में अपितु विश्व के तमाम देशों के अंदर एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति की स्थापना की है। और स्वामी जी को इस ग्रंथ के लिखने में लगभग 3-3.5 मास का समय लगा।
4: ये कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य के प्रकाश पर केंद्रित है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती की एक महत्वपूर्ण कृति है। इस अवसर पर सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियां भी देश भर में वितरित की जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वामी दयानंद के विचारों और उनके संदेश से परिचित हो सकें।
2: सर्दियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम में अभी तक उसकी ठंडक पूरी तरह महसूस नहीं हो रही है। मॉरिशस में तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम का ये बदला हुआ रुख जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों की ओर संकेत करता है, जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों की तरह अब हमारे इलाके में भी साफ दिखाई देने लगा है। सदक के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारियों के कायिक संघ अपने सिकोम पेंशन योजना में बदलाव की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि इस मुद्दे से करीब 300 जस कर्मचारी प्रभावित है। मॉरिशस लेबर कांग्रेस से जुड़े इस संघ ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी मांगे सामने रखी। साथ ही उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन में शिकायत दर्ज कराने का भी निर्णय लिया। जब कोई कंपनी रिसीवरशिप के तहत जाती है तो कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। ये कहना है एफटीयू यानी फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष आत्मा शांतो का। आज पोर्टली में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने रिसीवरशिप के तहत चल रही 4 कंपनियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच और तटीय इलाकों में प्रस्तावित होटल परियोजनाओं का मुद्दा आज फोरम सिटोयन लिब्र की प्रेस वार्ता में प्रमुखता के साथ उठाया गया। बेलविलेज में आयोजित इस बैठक के दौरान रोज आयान ने होटल परियोजनाओं को दी गई मंजूरियों और उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल खड़े किए। और अब बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी सैन्य भागीदारी समाप्त करने की मांग की गई है। हालांकि इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रस्ताव को कुछ रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन मिला है, जबकि इस सप्ताह सीनेट में भी इस पर चर्चा और मतदान होने की संभावना है। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है युद्ध जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में कांग्रेस की भूमिका को बनाए रखना आवश्यक है। इजराइल और लिबानन ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों की मौजूदगी पर रोक होगी और नियंत्रण केवल लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस के पास होगा। ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब हिजबुल्ला सभी हमले पूरी तरह बंद करे और सीमा क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाए।

चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान है कि आज रात को सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर कुछ बरसात हो सकती है। देर रात को और कल सुबह के दौरान मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे। कल दोपहर बाद देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर और सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बरसात होगी और कभी कभी जो काफ़ी तेज भी हो सकती है। रात को हल्की हवा बहेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहर उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं जाएं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 19 से 16 से 18 और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:47 पर, सूर्योदय 6:39 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। ब्लैकबर्न रोड कोंगोमा में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड के दिवानन रामरिचा जिन्हें लोग लुलो के नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके भाई मंगल रामरिचा के मकान कोंगोमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। Mancellement Prud'homme, Rivière des Anguilles, 86 साल की, 83 years old की, जयमुंती लखन, पैदाइश नाम लक्ष्मण, लोग उन्हें जामुन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे सुरेश लखन के मकान Rivière des Anguilles से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। कलपुलेन मैडम लुलू रोजबेल में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री धनंजय लाला की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिरानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। 14A सर हिलारी ब्लड एवेन्यू कटरोबोन में 103 वर्ष की 103 ईयर्स ओल्ड की सुनमती दसोई की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गोकुल, लोग उन्हें सुगिन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के बल्कि शनिवार 6 जून को दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान काठरोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 6 June एट 9:30 PM। जिल्फा लेन सेंट जूलियन दुतमो में 109 साल की 109 ईयर्स ओल्ड धनमतिया सुको पैदाइश नाम रतन, लोग उन्हें मुना के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दोपहर बाद 1 बजे उनकी बेटी अनिता सुको के मकान सेंट जूलियन दुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौतूहल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। बाउंड्री रोड रोजिल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती देवी रामचंद की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पेम, लोग उन्हें रेखा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। स्वराज भवन लेन लालमाची में 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कलावती मंगर पैदाइश नाम लखन, लोग उन्हें विद्यापति के नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे मनीष मंगर के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौदेमास की शमशान भूमि ले

0: Le JIG cremation tomorrow at 11 a.m. Mont-Selman, Saint-Henri, Saint-Hubert, 27 साल के 27 years old के कृष्णा चकोरी की मृत्यु हो गई है. कृष्णा चकोरी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी दादी के मकान Saint-Hubert से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 एएम. मेबर्ग में रू दे क्रियोल मेबर्ग में 55 साल की 55 years old के श्री बिसुंदत रामसन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें कोलो के नाम से अधिक जानती थी. उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी मां शांति रामसन की मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम. ला रू लोरिलियर वेडर में पोस्ट ऑफिस के करीब 87 साल के 87 years old के भगवत प्रसाद झुमक की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें दयानंद के नाम से ज्यादा जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान वेदों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम. एवेन्यू पेरुश मोसलमान ले माई मेबर्ग में 85 years old के 85 साल की सावित्री देवी की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम दुखी. लोग उन्हें साबित के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान एवेन्यू पेरुश मोसलमान ले माई मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम. रामनारायण रोड कोटेज में 75 साल की 75 years old की बसंती रामचंद की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम चमन. लोग उन्हें सुनीति के नाम से ज्यादा जानती थी. उनके अर्थी कल दिन की 11 बजे उन्हीं के मकान कोटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोटेज की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम. बेक्सले हीफ कैंट यूके में 74 साल के 74 years old के जयराज जीवन की मृत्यु इंग्लैंड में हो गई है. लोग उन्हें अनिल के नाम से ज्यादा जानते थे और वे मॉरिशस में पहले टैगोर रोड फोंचिसा के रहने वाले थे. उनकी अर्थी कल यूके के समयानुसार वहीं पर सुपहर 3 बजे उठाई जाएगी. रॉयल रोड ग्रैंड रिट्रेट में 72 साल की 72 years old की अंजलि रुकमेन की मृत्यु हो गई है. अंजलि रुकमेन की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम दमरी. लोग उन्हें रजनी के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन की डेढ़ बजे उनके बेटे उदय रुकमेन के मकान ग्रैंड रिट्रेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Radio Musty. Feels a Musty.

वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, नमस्कार। रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स का तीसरा घंटा और ये आपका फाइनल घंटा भी, एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी ही अपनी रिया। आज के इस तीसरे घंटे में रफ्तार वाइब्स का नाम तो वही है, लेकिन मूड हम थोड़ा सा बदलने आए हैं। बाहर अब अंधेरा पूरी तरह छा चुका है, हवा में थोड़ी सी ठंडक है और थर्सडे की शाम अब धीरे धीरे रात की तरफ बढ़ रही है। शायद आप में से बहुत लोग घर पहुंच चुके हैं, कुछ डिनर की तैयारी में होंगे, कुछ चाय के साथ आराम कर रहे होंगे और कुछ अभी भी सफर में होंगे। वैसे कुछ लोग अभी तक काम ही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप हो इस घंटे में कोई जल्दी नहीं, कोई रफ्तार नहीं, बस सुकून। और इसी सुकून भरे सफर की शुरुआत हमने की एक दिन तेरी राहों में इस गाने के साथ। क्या खूबसूरत गाना है, एक ऐसी धुन जो शाम को और भी नरम और हसीन बना देती है। तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, दिल को हल्का रखिए और अगले एक घंटे तक ये सॉफ्ट रोमांटिक गाने का साथ आप निभाते चलिए। वी आर हियर विद यू और बहुत ही खूबसूरत गाने हम लेकर आए हैं, जैसे कि नेक्स्ट गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम है।

कभी सोचा है कि हम दिन भर कितनी आवाजों के बीच रहते हैं, फोन की घंटी, मीटिंग्स, ट्रैफिक, लोगों की बातें, और फिर आती है शाम, एक ऐसी शाम जब धीरे धीरे शोर कम होने लगता है और खामोशी अपनी जगह बना लेती है। और सच कहूँ, कभी कभी ये खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। इस समय हम अपने दिन के बारे में सोचते हैं, कुछ बातें याद करते हैं और कुछ लोग याद आ जाते हैं। और जब बैकग्राउंड में कोई प्यारा सा गाना चल रहा हो तो लगता है जैसे हर एहसास को एक धुन मिल गई हो। तो आज की इस ठंडी और सुकून भरी शाम में अपने आप को आप कुछ पल दे दीजिए। कोई जल्दी नहीं, कोई भागना नहीं है, बस इस लम्हे को आप महसूस कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही इन गानों को आप एंजॉय करते रहिए। वी आर हियर विद द रफ्तार वाइब्स प्लेइंग सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती। चलिए, अभी शेष है बस 15 मिनट, तो हमारे साथ आप ये ब्यूटीफुल गाने एंजॉय करते रहिए और रिया के साथ भरपूर देते रहिए।

चलिए जी, इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का साथ और आशा करती हूँ कि हमारा साथ भी आपको उतना ही अच्छा लगा। चलिए अब भी आपको हम दिव्या के हवाले छोड़ जाते हैं जहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत गाने एंजॉय कर पाएंगी। सो बाय, टेक केयर एंड हैप्पी थर्सडे आप सभी को।

प्यार में कुछ ऐसे सिचुएशन ही पनप जाते हैं जहां पर आप कहते हैं कि तेरी शर्ट दा मैं बटन सोनी है एंड बालों का तेरे हाई क्लिप हो गया, कितना खूबसूरत गाना है। बस अगर आपको लगता है कि इस गाने में आपका सिचुएशन एकदम परफेक्टली फिट होता है तो ज़रूर हमें बताइएगा कि आजकल प्यार वाला सिचुएशन कैसा है। वैसे रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी प्यार के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ लोग अच्छे के लिए बदल जाते हैं, कुछ लोग फॉर द बेस्ट बदल जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ लोग प्यार की वजह से बुरे बन जाते हैं, क्योंकि प्यार कभी भी नेगेटिव चेंज किसी इंसान में लेकर आ ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप हमें कहें कि प्यार से आपको ये तकलीफें हुई है तो मतलब ये प्यार ही नहीं था। चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द आपको अपनी ज़िंदगी में आपको सच्चा प्यार मिले और इतना बेशुमार बेइम्तिहान प्यार मिले कि आप दुनिया ही भूल जाए। लेकिन हाँ, प्यार के चक्कर में आपको खुद को नहीं भुलाना है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि प्यार में वी डोंट लूज़ आवर सेल्फ, वी फाइंड आवर सेल्फ। और जिस

0: दिन आप खुद के बारे में सोचेंगे दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टवर्ड्स सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर विच इज नॉट सेल्फिश. इसलिए दूसरों से प्यार करने से पहले डोंट फॉरगेट, ये तो हमेशा हम कहते रहते हैं, खुद से भी प्यार करें और खुद के बारे में सोचें. चलिए, इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग और सब लोग कल इवनिंग की तैयारी में लगे हुए हैं एंड सब लोग राहत की सांस ले रहे हैं नोइंग दैट टुमारो इज़ फ्राइडे. बिल्कुल, हम तो कल भी मिलने आ रहेंगे आप लोगों से सेम टाइम बट विद अ डिफरेंट मूड. लेकिन अभी के लिए तो इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. एंड आपके मैसेजेस का भी इंतजार रहेगा ऑन द मैच नंबर दैट इज 5499 1294. और साथ में आपके फोन कॉल्स का हम इंतजार करेंगे ऑन 4028035 402 435 पर आप जरूर हमें फोन कर सकते हैं. लाइन खुली हुई है, आप जिस वक्त भी फोन करेंगे आपका हम वेलकम करेंगे और प्यार में बिल्कुल कुछ मीठी मीठी बातें आपसे जरूर करेंगे. सो डोंट फॉरगेट, इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर टिल 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: अफगान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: अजनबी शहर में कुछ लोग अपनों से भी भरकर मिल जाते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि प्यार में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो परिवार बन जाते हैं। शायद इसी वजह से कहते हैं कि खून के रिश्ते से भरकर दिल का रिश्ता होता है और इस रिश्ते को हमेशा आपको संजोकर ही रखना चाहिए। 7:26 टू ऑल दोस हैविंग द डिनर राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बिना पिछली शुभाहार। चलिए यहाँ पर गिरीश हल्लोल जी साथ दे रहे हैं और आपकी एक शिकायत आई है। Can you please play the song खता तो जब होके हम हाले दिल from the film दिल का क्या कसूर, और आप कहते हैं कि ट्यूसडे को आपने गाना तो चलाया ही नहीं। चलिए इस बार हम जरूर चलाएंगे और नेक्स्ट आपका ही गाना हम चलाएंगे। क्या है ना कि कभी कभी आपके रिक्वेस्ट के गाने इतने आ जाते हैं कि हम सबको खुश खुश कराने के चक्कर में कुछ गाने रह जाते हैं। तो चलिए वी हैव द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली फॉर यू गिरीश। हेलो दिव्या, थैंक्स फॉर दिस लवली सॉन्ग। मे आई रिक्वेस्ट द सॉन्ग मुस्कुराने की वजह तुम हो फ्रॉम द मूवी सिटी लाइट्स इफ पॉसिबल। चलिए अगर पॉसिबल हुआ तो आपका ये गाना हम चलाने की कोशिश करेंगे। एंड साथ में अनुषा फैसे से मिल फॉर अ साइट से नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर हस्बैंड विमल। बेटी हैं परी, दादी के पास हैं अभी, और आपके फ्रेंड्स हैं पूनम, चाचा अनिल, बॉस ऋषि वर्किंग एट सुपर मार्केट, और रेडियो मस्ती टीम के लिए भी आपने गाना मांगा है। सो थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट goes out specially to each and everyone connected with us, and don't forget agar aap humse baat karna chahte hain to line khuli hui hai on 402-8235-402-8235.
1: Evening Lounge,
2: RM2
1: Radio Musti.

0: दिल में बसा के पलकों में बिठा के लेकिन नजरों में कैद नहीं करना है, दिल में कैद करना है। और वैसे कैद के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू गिव फ्रीडम टू द वन यू लव। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ उसको बस जकड़ के रखना है, ऐसी बात नहीं है। जिनसे आप प्यार करते हैं वो कभी दूर नहीं जाएगा। एक्चुअली आप उनको जितना ढील देंगे ना, उतना ही आप वो धीरे धीरे करके आपकी ओर खींचा चला जाएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है टू नो दैट प्यार में आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्यार तो बस प्यार भरा एहसास होता है एंड इसमें बहते चले जाना है। वेल, एक और कॉलर है हमारे साथ और आपसे हम जरूर बात करेंगे। एंड आप हैं उर्वशी जी, नमस्ते आपको।
1: नमस्ते, कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
1: ठीक
0: ठीक है। इतनी प्यारी सी आवाज़, बहुत ही मधुर सुरीली आवाज़ है। ऐसा लगता है कि हमारे बदले आपको ही रेडियो में काम करना चाहिए था। कोई बात नहीं,
1: आपके लिए एक गीत मांगती हूँ।
0: आप मेरे लिए? ओह दैट्स रियली स्वीट। आज पता नहीं,
1: मुनाबाई एंड बीबी।
0: हाँ,
1: पल पल पल।
0: ओहो, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट। वैसे सुबह को जब मैं काम करती हूँ ना, ये गाना मुझे चलाना बहुत ही अच्छा लगता है।
1: आपकी अच्छा स्पीकिंग है।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू उर्वशी जी, आप बहुत ही स्वीट हैं। एंड ये गाना मैं नहीं पूछूंगी किसके नाम, क्योंकि आपने मेरे लिए डेडिकेट किया है, तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच उर्वशी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बाय बाय। तो ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फ़ोन करने के लिए लाइन खुली हुई है 1-402-8235। कत्सुंधिकाथवाथनसैंक पर आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपसे थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। और अगर कोई ख़ास गाना है जो आपको सुनना है, आपका गाना भी हम चला ही लेंगे।
2: Evening Lounge, Evening Lounge,
3: RM2,
2: Radio Masti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वेल 7:51 चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे फसाने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली हैं, हम उसके दीवाने हैं। शायद अभी इस लाइन पर हमारी प्यारी सी राधा जी मुस्कुरा रही होंगी, क्योंकि मे भी आपको इशारा मिल ही गया होगा कि यस वी आर एक्चुअली प्लेइंग योर सॉन्ग जो आपने बहुत ही प्यार से हमें हम तक पहुंचाए हैं और आपने इस गाने की रिक्वेस्ट की है फ्रॉम द मूवी कहूँ ना प्यार है। तो चलिए राधा जी, आप हैं ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड लविंग द प्लेलिस्ट। एंड आप कहती हैं कि इफ़ पॉसिबल प्लीज़ प्ले द सॉन्ग चांद सितारे फॉर माय फैमिली इन कनाडा मॉरिशस फॉर RM2 लिसनर्स। थैंक यू सो मच राधा जी, आपको भी हर हर महादेव। चलिए ये गाना गुजार स्पेशली आपके नाम।

0: प्यार में ऐसा ही होता है, जब दिल से आप किसी को पुकारो तो दिल की आवाज़ उन तक पहुंच ही जाती है। और हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो रिस्पेक्ट से भी बढ़कर है, क्योंकि प्यार में आपको इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सही इंसान आपसे प्यार करता है ना, आपके बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले बहुत कुछ सुन जाता है। चलिए, यहाँ पर एक कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे हम जरूर बात करेंगे। अनीता जी हैं ऑल द वे फ्रॉम फ्लिक ऑफ लक। नमस्ते अनीता जी।
1: नमस्ते आपको।
0: कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हम तो साथ साथ बात कर रहे हैं, क्या बात है। लगता है कि सोच विचार हाँ मिल रही है। बताइए, आपने डिनर ले लिया है?
1: जी हाँ, और आपने नहीं लिया?
0: मैंने नहीं लिया, अनलकीली। और अनीता जी बोल रही थी कि क्या हुआ, हमारी वजह से आपने नहीं

0: आपकी वजह से तो हमारा पेट भरता है। एक्चुअली ये बस फिल्मों में ही हमने सुना है कि प्यार से किसी का पेट नहीं भरता है, लेकिन हमारा तो भरता है, रोज भरता है। और इसके लिए थैंक यू सो मच,
1: हमने आपको याद किया। आज थोड़ी सी गर्मी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसको शायद क्लाइमेट चेंज करते कहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, समझ में नहीं आता है कि मौसम कैसा है आजकल, है ना?
1: इसीलिए सभी बीमार हो जा रही है।
0: ये आपने बिल्कुल सही कहा, सीजनल फ्लू हो रहा है सबको, इसलिए तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपको पानी पीना है ना, इसको बॉईल करके पीजिएगा, इट्स वेरी वेरी यूजफुल। और कहते हैं ना अनीता जी कि प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्यू, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्यू, तो जितना पॉसिबल हो सके आप अच्छी सेहत के लिए पानी बॉईल करेंगे तो बेहतर रहेगा।
1: यस, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है।
0: बिल्कुल अनीता जी, बताइए आज आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: फिल्म है हम दिल दे चुके सनम, नीमपुरा नीमपुरा
0: नीमपुरा। ओ माय गॉड, लगता है आपका मूड थोड़ा अलग है, आप फ्राइडे की तैयारी में लगे हुए हैं।
1: सभी फ्रेंड एंड परिवार के लिए, खासकर आपके लिए, आपके सभी टीम के लिए।
0: That's really sweet of you, अनीता जी, थैंक यू सो मच।
1: आपको मोकुगान,
0: थैंक यू सो मच अनीता जी। तो चलिए आपको बहुत बहुत सारा प्यार, थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: तो चलिए ये थी हमारी प्यारी सी अनीता जी, ऑल द वे फ्रॉम फ्लिकॉन फ्लैक, ऑलरेडी 8 PM। और चलिए अभी थोड़ी देर में हम कदम रखने जा रहे हैं इन द सेकेंड आवर ऑफ इवनिंग लाउंज।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
7: Radio Musti.
6: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
6: Feel the Musti.
8: Nous fin arrive qu'en finale, compétition des bas-climats. Bans élèves depuis 8 collèges qui finent sélectionnés, finent parer pour porter avec l'opinion le changement climatique. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr. François Gemène, spécialiste en environnement. Alors, pas oublier, suivre Débat climat, samedi 6 juin au MBCN et MBCSAT à partir de 8h30 à soir.
9: Evening Lounge.
10: Evening Lounge.
6: RM2.
7: Radio Musti.

कितना खूबसूरत गाना था। 8:08 हो चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग, 4 जून 2026। चलिए एक बार फिर से हमारा और आपका साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर थोड़ी और आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है टिल 9 PM। तो चलिए हर एक वक्त को हम खुशगवार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स वी ट्राई टू मेक इट मेमोरेबल एज वेल। तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। एंड आपके मैसेजेस भी हैं जो हमें पढ़ने हैं। आई नो आप लोग बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे, तो थोड़ा और पेशेंस। वैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, तो थोड़ी देर बाद आपके मैसेजेस डेडिकेशंस को पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। और साथ में अगर आप फिर से हमसे बात करना चाहते हैं

0: तो आपके हम फोन कॉल्स का इंतजार कर रही हैं ऑन 4028035 4285.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: तालीमा रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन
1: लेकर आ रहे हैं आपके लिए
2: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल दिस सैटरडे 6 ऑफ जून

0: बस ये गाने कभी कभी दिल को थोड़े से दीवाना बना ही देते हैं। और चलिए उम्मीद करते हैं कि इन गानों को सुनने के बाद आप थोड़ा और रिलैक्स कर रहे होंगे। कल फिर से काम पे जाना है, बट हैप्पीनेस इज़ नोइंग कि फ्राइडे इवनिंग को आपको अलार्म नहीं डालना है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ एंड यू हैविंग अ गुड गुड टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। चलिए यहाँ पर कोई है जो हमें फ़ोन कर रहा है और उनसे हम ज़रूर ऑन एयर बात करेंगे एंड आपको हम कहेंगे बहुत ही प्यार से नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी,
0: आपका नाम क्या है? थैंक यू सो मच। और आपका नाम?
1: दिस फिनोमेनन इज सो रेयर विद ऑडियंस। मुझे याद है गिनीशा कभी बात करती थी, तो मैं हूँ हरीश बोबासे से।
0: हरीश जी, आपका स्वागत है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच।
1: क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम है दिल की आवाज ना?
0: नहीं, ये इवनिंग लाउंज है।
1: ये गाना है, फिल्म है, आई थिंक इश्क विश।
0: हाँ जी।
1: चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा।
0: बहुत ही प्यारा सा गाना है ये।
1: अगर टाइम मिले तो चला देना सभी लिसनर के लिए।
0: ओके, हम अभी फौरन आपके नाम चलाएंगे। थैंक यू सो मच हरीश जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, बाय बाय। तो ये थे हरीश जी एंड चलिए उन्होंने गाना मांगा है चोट दिल पे लगी एंड आई जस्ट होप कि आपके दिल को कभी चोट ना पहुंचे। एंड वैसे कुछ कुछ लोगों के दिल टूटे हुए हैं और कभी सिचुएशन भी ऐसा हो जाता है कि हम क्या करें, बट इस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए वी हैव अ सोल्यूशन, दैट इज स्टेइंग कनेक्टेड टू गुड म्यूजिक। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गुड म्यूजिक ही मिल रहा है। तो चलिए हरीश जी की पसंद का गाना हम चलाएंगे आप लोगों के नाम भी।
2: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Musti.

Alright friends, 8:33 already and एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं that you're connected with Divya on the waves of Radio Masti जहां पर चल रहा है आपका Evening Lounge. तो चलिए एक

0: कॉलर हैं और उनसे हम बात करेंगे. रोज़ ही उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं और रोज़ रोज़ उनसे बात करना अच्छा लगता है. सुनीता जी आपको नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, नमस्ते सभी लोगों को, आपको भी नमस्ते.
0: नमस्ते जी, बताइए
1: आप
0: आपका. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. आज थर्सडे इवनिंग है, आपको कैसे महसूस हो रहा है? कल काम पे जाना है?
1: हाँ, कल काम पे जाना है. शनिवार रविवार को काम पर जाती हूँ.
0: ओह माय गॉड, इसीलिए तो वी हैव अ स्पेशल थॉट. जब भी हम सैटरडे को काम करने आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो रिलैक्स करते हैं, उसी तरफ कुछ और भी लोग होते हैं जो काम भी करते हैं आपकी तरह. बस कहते हैं ना कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है. आई जस्ट होप कि एक दिन आप जरूर ये कहानी अपने पोते पोतियों को जरूर सुनाएंगी.
1: हाँ, जरूर सुनाऊंगी. इंतजार करोगे तो उसका फल बहुत मीठा होता है,
0: बहुत ही मीठा होता है.
1: अगर जल्दी नहीं करोगे तब, जल्दी करोगे तो ठोकर लगेगा, गिर जाओगे,
0: वैसे
1: मुश्किल हो जाएगा.
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है. धीरे धीरे से काम करेंगे, इत्मीनान से काम करेंगे तो आपका काम और भी बेहतर होगा
1: और भी बेहतर होगा, और भी अच्छा होगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए सुनीता जी, आज कौन सा गाना मांगेंगी और किन किन के नाम?
1: मैं आज का गाना मांगूंगी रोटी कपड़ा मकान का गाना, जिसके बोल है मैं ना भूलूंगी.
0: बिल्कुल.
1: और ये गाना आप लोगों के लिए, आपके टीम के लिए.
0: थैंक यू सो मच.
1: मेरी तीन पोती हैं, कश्यना, पूरवी, तेजवी, और बहू है दो उजाला, और छोटी बहू है काजल, बड़ा बेटा है राहुल, दूसरा बेटा है अखिलेश, और सभी कौनाक परिवार के लिए, सभी कल्याचेती परिवार के लिए, सभी ओनाम परिवार के लिए, सभी सीदाम परिवार के लिए, सभी हामजिन परिवार के लिए. फैमिली तो बहुत बड़ा है, लेकिन सभी के लिए मांग रही हूँ. केवल परिवार के लिए अवश्य बजा देना.
0: बिल्कुल चलाएंगे. बिल्कुल सुनीता जी, चलिए यही तो खूबसूरती है जहाँ पर लोग साथ मिलकर रहते हैं. तो चलिए आप भी हमारा साथ देते रहिएगा, एंड आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सुनीता जी.
1: अच्छा लगता है. धन्यवाद.
0: धन्यवाद आपको भी. सो ये थी प्यारी सी सुनीता जी. हमेशा उनकी फोन कॉल्स आते हैं और हमेशा वो कहती हैं कि फोन के बिना उनका मन नहीं लगता है, और जब उनसे भी हम बात नहीं करते हैं ना तो ऐसा लगता है शो अधूरा रह गया है. थैंक यू सो मच सुनीता जी. एंड चलिए अगला गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के नाम.
2: Evening Lounge.
3: Evening Lounge.
4: RM2.
5: Radio Musti.

वेल फ्रेंड्स इट्स ऑलरेडी 8:54 एंड इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू यू ऑल. लेकिन आपके मैसेजेस को कैसे भूल सकते हैं. नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर अ स्पेशल फ्रेंड नीतू ऑफ पालमा का ट्रिबोन फॉर हर फैमिली विशिंग हर सेफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस फ्रॉम राजीव ऑफ सैंप के. एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना गुजार फॉर श्वेता हुकुम ऑफ बनाके फ्रॉम हबी रवि रोशन जस्ट वॉन्ट टू टेल हर आई लव हर सो मच थैंक यू सो मच. तो चलिए इसी के साथ वी विल डेफिनेटली लाइक टू डेडिकेट the next gana for Sangar of France. Thank you so much Sangar hamara saath dene ke liye. Next gana guzar for Sangeeta aur grandchildren Hashriya Aryan Neil of Motai Blanche. Thank you so much hamara saath dene ke liye. Jyoti ji aap chahte Benares se. Next gana guzar for Ashni Rekha Surekha Madhab family. Pooja connected hai hamare saath from Floreal and yahan par aap ne ek request gana bheja hai from

0: द मूवी सैनिक, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर तुलाहिदा हिबा रोज ननलोल ऑफ क्यूपिप। तो चलिए इसी के साथ आपसे हम विदा लेंगे। बहुत ही जल्द हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है, कल शाम के 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक, अलग मूड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय। शबा खैर, शुभ रात्रि।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
3: अरे सुन सुन।
4: यस मां।
3: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
4: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
3: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music. RM2, Radio Musti.
0: Hit music only.
5: Radio Musti, feel the musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: दिया।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
0: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
0: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हिट म्यूजिक ओनली
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.